कपटी मुनि ने राजा प्रताप भानु पर अपना प्रभाव पुष्ट होता देख उन्हें बताया कि ब्राह्मणों का शाप बड़ा भयानक होता है और मात्र उसी शाप से उनका नाश हो सकता है और किसी प्रकार नहीं। अतः राजा ने मुनि से ब्राह्मणों को वश में करने का उपाय पूछा। कपटी मुनि एक तनु ने कहा, उपाय तो बहुत हैं किंतु वे कष्ट साध्य हैं। राजा ने एक तनु के चरण पकड़ लिए। तपस्वी बोला, मैं तुम्हारा काम अवश्य करूंगा क्योंकि तुम पूरी निष्ठा से मेरे भक्त हो गए हो, किंतु योग युक्ति तप और मंत्रों का प्रभाव तभी होता है जब वे छिपा कर किए जाते हैं। यदि मैं भोजन बनाऊं तुम परोसो और कोई मुझे जानने ना पावे तो उस अन्न को जो भी खाएगा वह पूरी तरह तुम्हारा आज्ञाकारी बन जाएगा।

अमृतसर तों शब्द कीर्तन दा सिद्धा प्रसारण सरवण करोगे। शाम 5:30 बजे तुसीं सरवण करोगे साडा रोजाना प्रोग्राम गुरबाणी विचार। दिहाती प्रोग्राम शाम 6:30 बजे प्रसारित किया जाएगा, जिस विच कम दीआं गल्लां मंडियां दे भाअ दे नाल नाल डॉक्टर अनिरुद्ध ठाकुर आड़ू ते आलू बुखारे दी तोड़ाई ते मंडीकरण इस बारे जानकारी देणगे। अवतार सिंह बिलिंग दे नावल ते आधारित लड़ीवार होया देश पर आया इदा 5वां भाग सुनोगे। रात 7:40 ते विविधा प्रोग्राम च मेरी नई कहानी उनवान तहत हरदीप सबरवाल अपनी कहानी पेश करेंगे। रात 8 बजे सुनो फिल्मी गीतां दा प्रोग्राम जिंदगी हसीन है। रात 9:15 साढ़े दिल्ली केंद्र तो स्पॉटलाइट का प्रसारण किया जाएगा। रात 9:30 बजे तुहानू नाटक सुनावांगे। रात 10:02 ते कवि गोष्ठी का प्रसारण होएगा। रात 10:30 बजे तुसी मुख्तलिफ फनकारां दी आवाज़ च गज़लां समात फरमाओगे। देर रात 11:10 ते तुसी सुनोगे लाइव फोन इन फरमाइशी गीतां दा प्रोग्राम सौगात साडे DTH चैनल तो। यह प्रोग्राम देर रात 11:10 तो लैके देर रात 1 बजे तक प्रसारित किया जाएगा। परिचय तहत एसी साडे अज रात तक प्रसारित किए जाने वाले प्रोग्रामों का वेरवा ते उन्हां दा प्रसारण समां।

0: ਮੀਡੀਅਮ ਵੇਵ 343.6 ਮੀਟਰ ਯਾਨੀ 873 ਕਿਲੋ ਹਰਟਸ 'ਤੇ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦਾ ਇਹ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਹੈ। ਸਵੇਰ ਦੇ 6:55 ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਕੁਝ ਪਲਾਂ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਵਿੱਚ ਸਮਾਚਾਰ ਸੁਣੋਗੇ।
1: इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचिका ऋचा झा। अथ वार्ताः। असम पश्चिम बंगाल केरलम तमिलनाडु राज्येषु केन्द्र शासित प्रदेशे पुडुचेरी इत्यत्र विधानसभा निर्वाचनेभ्यः अद्य मतगणनायै सर्वाः सज्जताः जाताः। मतगणना प्रातः 8 प्रारप्स्यते। प्रैष्य मतपत्राणां गणना सर्वप्रथमं भविष्यति तथा वैद्युतिकी मतदान यन्त्राणां गणना प्रातः 8:30 प्रारप्स्यते। असमराज्ये 26+ केरलम राज्ये 44+ तमिलनाडुराज्ये 34+ आसनेभ्यः तथा पुडुचेरी इत्यत्र 30 विधानसभासनेभ्यः मतगणना भविष्यति। पश्चिमबंगाले 93+ आसनेभ्यः अद्य मतगणना भविष्यति। फाल्टा विधानसभायै पुनर्मतदानं मईमासस्य 21 भविष्यति। तत्रैव मतगणना च मईमासस्य 24 भविष्यति।
2: जनादेश 2026।
3: असम, केरलम, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और पुदुचेरी के चुनाव नतीजों पर विशेष कार्यक्रम आकाशवाणी के साथ
2: आज सुबह 8:30 से
3: मतगणना की पल पल की खबर,
2: हर सीट की सटीक जानकारी,
3: संवाददाताओं से ताजा हाल
2: और विशेषज्ञों द्वारा नतीजों का विश्लेषण
3: आकाशवाणी गोल्ड और अन्य फ्रीक्वेंसी पर सुनिए।
2: जनादेश 2026।
1: भारतीयांतरिक्ष नवाचारेण गैलेक्स आए इत्यनेन संयुक्त राज्य अमेरिकायाः कैलिफोर्निया इत्येतस्मात् स्थलात् स्पेस एक्स इत्येतस्य फाल्कन 9 रॉकेट इत्यनेन विश्वस्य प्रथमः ऑप्टोसार इति उपग्रहः मिशन दृष्टेः प्रक्षेपणम् कृतम्। 90+ किलोग्राम मिता मिशन दृष्टिः नैज भारतीय संस्था द्वारा निर्मितः बृहत्तमः पृथ्वी निरीक्षणोपग्रहः अस्ति। उपराष्ट्रपतिः सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी च मिशन दृष्टि उपग्रहस्य सफल प्रक्षेपणस्य प्रशंसां कृत्वा एतम् उपग्रहं भारतस्य अंतरिक्षस्य नवानवेषणस्य च यात्रायां

एक जरूरी सूचना। आकाशवाणी जलंधर दी खेतरी समाचार इकाई विच समाचार वाचक ते अनुवादक एनआरटी कैजुअल पंजाबी लई योग उम्मीदवारां तों अर्जियां दी मांग कीती जांदी है। उम्मीदवार ने अंग्रेजी विषय नाल ग्रेजुएशन कीती होवे ते पंजाबी भाषा ते कंप्यूटर च मुहारत होवे। उम्मीदवार दी उम्र 20 मई 2026 तक 21 साल तों 50 साल विचकार होनी चाहीदी है। तरजीही तौर ते उम्मीदवार जलंधर या इस दे नेड़ले इलाकें दा वसनीक होवे। चाहवान उम्मीदवार विद्यक योग्यता दे सर्टिफिकेट अते तजर्बे दियां तस्दीकशुदा कापियां नाल वीरवे सेहत बायोडाटा रंगदार पासपोर्ट साइज फोटो अर्जी नाल नथी करके भेजण। अर्जियां भेजण लई पता ए सहायक निदेशक खेतरी समाचार यूनिट आकाशवाणी केंद्र नेड़े BMC चौक जलंधर।

0: ਤੁਸੀਂ ਸੋਨੀ ਸਵੇਅਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ। ਮੀਡੀਅਮ ਵੇਵ 343.6 ਮੀਟਰ ਯਾਨੀ 873 ਕਿਲੋ ਹਰਟਸ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੀਓਜ਼ ਦੀ ਘੜੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਵੇਰ ਦੇ 8 ਵਜਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਕੁਝ ਪਲਾਂ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਚਾਰ ਪ੍ਰਭਾਤ ਸੁਣੋਗੇ।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। असम, पश्चिम बंगाल, केरलम, तमिलनाडु और पुदुचेरी विधानसभा चुनावों की मतगणना शुरू। 7 विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव की भी मतगणना जारी। भारत ने लिपुलेख दर्रे से कैलाश मानसरोवर यात्रा पर नेपाल की आपत्ति खारिज करते हुए इसे अनुचित बताया। मौसम विभाग ने हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सहित उत्तर भारत में आज गरज चमक के साथ वर्षा और ओले पड़ने का अनुमान जताया। अमरीका होर्मुज जल डमरू मध्य में फंसे जहाजों की सुरक्षित निकासी के लिए प्रोजेक्ट फ्रीडम शुरू करेगा। और आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस ने पंजाब किंग्स को 4 विकेट से हराया। असम, पश्चिम बंगाल, केरलम, तमिलनाडु और पुदुचेरी में विधानसभा चुनावों की मतगणना शुरू हो गई है। सबसे पहले डाक मतपत्र की गिनती की जाएगी। शुरुआती रुझान दोपहर तक मिलने का अनुमान है। पश्चिम बंगाल से हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य में सभी मतगणना केंद्रों पर सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए हैं।
2: कुछ घंटों में पश्चिम बंगाल की राजनीतिक किस्मत तय होगी। 2026 पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के मतगणना सुबह 8 बजे राज्य भर में कड़ी सुरक्षा के बीच शुरू हुई। 293 निर्वाचन क्षेत्रों के परिणाम दिन भर आने की उम्मीद है, जबकि फलता निर्वाचन क्षेत्र में इस महीने बाद में पुनः मतदान होगा। राज्य भर की 77 मतगणना केंद्रों पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। स्ट्रांग रूम और मतगणना हॉल में सीसीटीवी निगरानी और बहुस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था की गई है। चुनाव अभियान और रिकॉर्ड मतदाता भागीदारी के बाद अब सबकी निगाहें आज के फैसले पर है। संदीप अंदाज गुप्ता, आकाशवाणी न्यूज, कोलकाता।
1: तमिलनाडु में मतगणना से जुड़ी अधिक जानकारी के लिए चलते हैं चेन्नई में हमारे संवाददाता सुशील तिवारी के पास। सुशील, मतगणना के बीच राज्य में सुरक्षा के क्या प्रबंध किए गए हैं?
3: देखिए मुकेश, सुरक्षा के जबरदस्त इंतजाम है। 3 स्तरीय जो सुरक्षा व्यवस्था होती है वो पूरी तरह से चाक चौबंद है। बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात है और रूट को डाइवर्ट किया गया है। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कि तमिलनाडु जो है वो राजनीतिक रूप से बड़ा सक्रिय जो है प्रदेश है, तो बड़ी संख्या में जो राजनीतिक कार्यकर्ता है वो भी जो बाहरी दायरा है उसके आसपास खड़े नजर आ रहे हैं। उनकी उत्कंठा है, उनकी इच्छा है कि वो जल्दी से जल्दी जान सकें कि उनके राजनीतिक नेता, उनके नेताओं का क्या भविष्य हो रहा है। तो बड़ी संख्या में लोग भी पहुंचने लगे हैं। हम अभी थोड़ी देर पहले जो है चेन्नई में जो 3, वैसे तो पूरे राज्य में 62 मतगणना केंद्र बनाए गए हैं, लेकिन चेन्नई में 3 मतगणना केंद्र हैं, लॉयला कॉलेज, अन्ना यूनिवर्सिटी और क्वीन मैरीज कॉलेज। तो हम क्वीन मैरीज कॉलेज के पास थे, वहां जबरदस्त सुरक्षा के इंतजाम थे। लेकिन ये मरीना बीच के पास है, बड़ी संख्या में राजनीतिक कार्यकर्ता भी वहां पर पहुंच चुके हैं और लोगों में जबरदस्त उत्कंठा है।
1: जी सुशील, ये भी बताइए कि

0: आज जो मतगणना हो रही है उसमें किन किन प्रमुख उम्मीदवारों की साख दांव पर है?
1: देखिए मुकेश, अगर हम बात करें तो डीएमके का जो सेकुलर प्रोग्रेसिव अलायंस है एसपीए, उसके जो नेता हैं वो एमके स्टालिन, जो कि वर्तमान में मुख्यमंत्री भी, निवर्तमान मुख्यमंत्री जिन्हें कहा जाए, वो कोलाथुर सीट जो कि चेन्नई में ही है वहां से लड़ रहे हैं, तो उनके चुनाव परिणाम पर सबकी निगाहें होंगी। जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं ई पलानीसामी, वो इडापड्डी जो है सेलम डिस्ट्रिक्ट में है, सेलम जिले में है, वहां से लड़ रहे हैं। और केंद्रीय सूचना प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन जो है वो अविनाशी सीट से लड़ रहे हैं, जो कि तिरुपुर में है। इसके अलावा अगर अन्य प्रमुख उम्मीदवारों की बात करें जिनकी सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है, वो जोसेफ विजय जो है टीवीके पार्टी के, उनकी टीवीके पार्टी का, उनका तमिल वेत्र कड़गम जो पार्टी है, उनके नेता दो सीटों से लड़ रहे हैं, पेरम्बूर जो कि चेन्नई डिस्ट्रिक्ट में ही है और त्रिची जिले की त्रिची ईस्ट, त्रिची पूर्व की जो सीट है वहां से वो दो जगह से लड़ रहे हैं। जो डिप्टी सीएम है, उप मुख्यमंत्री है उदय निधि स्टालिन, वो चेपक सीट से लड़ रहे हैं। और एक अन्य महत्वपूर्ण नाम डॉक्टर तमिल ईसाई सौंदर राजन का है, जो कि मैलापुर जो चेन्नई की ही सीट है, ये वर्तमान ये पूर्व में तेलंगाना और पुडुचेरी की राज्यपाल रह चुकी हैं, तो वो भाजपा नेता है, वो इस बार चुनाव लड़ रही हैं मैलापुर जो चेन्नई की सीट है वहां से। तो ये महत्वपूर्ण लोग हैं जो इस बार चुनाव मैदान में हैं, जिनके नतीजों पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। मुकेश
0: जी, सुशील, आपका जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पुदुचेरी में विधानसभा चुनाव के लिए 6 केंद्रों पर मतगणना कड़ी सुरक्षा के बीच जारी है। केंद्र शासित प्रदेश में 294 उम्मीदवारों की राजनीतिक भाग्य का फैसला होना है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: पहले चरण में सभी 6 मतगणना केंद्रों पर 17 विधानसभा क्षेत्रों के मतों की गिनती की जाएगी। इनमें पुदुचेरी क्षेत्र के 12 निर्वाचन क्षेत्र, कराईकाल के 3 और माहे तथा यानम का एक एक निर्वाचन क्षेत्र शामिल है। शेष 13 निर्वाचन क्षेत्रों की गिनती दूसरे चरण में की जाएगी। शुरुआती रुझान सुबह लगभग 9:30 बजे तक आने की उम्मीद है। ईवीएम और वीवीपैट की गिनती के लिए कुल 166 टेबल और डाक मतपत्रों के लिए 35 टेबल स्थापित किए गए हैं। मतगणना केंद्रों में कड़ी सुरक्षा और प्रवेश नियंत्रण के उपाय लागू हैं। चुनाव अधिकारियों द्वारा जारी क्यूआर कोड आधारित पहचान पत्रों के सत्यापन के बाद ही प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। मतगणना केंद्रों पर मोबाइल फोन जमा करने की व्यवस्था भी की गई है। पुदुचेरी से विभिन्न एस नाथ की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
0: और असम में मतगणना से जुड़ी जानकारी के लिए रुख करते हैं गुवाहाटी में मौजूद हमारे संवाददाता राकेश डोले से। राकेश जी, राज्य में मतगणना के बीच क्या माहौल देखा जा रहा है?
3: जी, असम में विधानसभा चुनाव के मतगणना कुछ समय पहले कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच शुरू हो गई है। राज्य में इस बार 85.96% मतदान दर्ज किया है, जो पिछले विधानसभा चुनावों में सबसे अधिक है। राज्यभर में 40 मतगणना केंद्रों पर गिनती की जा रही है। अधिकांश जिलों में जिला मुख्यालय पर एक एक केंद्र है, जबकि कोकराझार, तिनसुकिया, जोरहाट में 2-2 तथा दोगांव में 3 मतगणना केंद्र है। पूरी प्रक्रिया पर 126 मतगणना प्रेक्षक कड़ी निगरानी रख रहे हैं, जिनकी सहायता के लिए लगभग 6000 मतगणना कर्मी और 2300 से अधिक माइक्रो ऑब्जर्वर्स तैनात किए गए हैं। 126 सदस्य असम विधानसभा के लिए कुल 722 उम्मीदवार मैदान में हैं। सरकार बनाने के लिए बहुमत का आंकड़ा 64 है। जी
0: राकेश जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उधर केरल में भी कड़ी सुरक्षा के बीच मतगणना जारी है। पश्चिम बंगाल में आज 293 सीटों की मतगणना हो रही है।
4: जनादेश 2026।
0: असम, केरलम, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और पुदुचेरी के चुनाव नतीजों पर विशेष कार्यक्रम आकाशवाणी के साथ
4: आज सुबह 8:30 बजे से
0: मतगणना की पल पल की खबर,
4: हर सीट की सटीक जानकारी,
0: संवाददाताओं से ताजा हाल
4: और विशेषज्ञों द्वारा नतीजों का विश्लेषण,
0: आकाशवाणी गोल्ड और अन्य फ्रीक्वेंसी पर सुनिए
4: जनादेश 2026।
0: पांच राज्यों की 7 विधानसभा सीट पर हुए उपचुनावों की मतगणना भी शुरू हो गई है। ये 7 सीट गुजरात में उमरेठ, कर्नाटक में बागलकोट और दावणगेरे, दक्षिण महाराष्ट्र में राहुरी और बारामती, नागालैंड में कुरीडांग और त्रिपुरा में धर्मनगर हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। भारत ने लिपुलेख दर्रे पर नेपाल के दावे को खारिज कर दिया है। भारत ने कहा है कि यह दर्रा वर्ष 1954 से कैलाश मानसरोवर यात्रा का मार्ग है।

0: और दशकों से इस मार्ग से यात्रा जारी है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने इस संदर्भ में नेपाल के विदेश मंत्रालय के सीमा संबंधी दावों के बारे में ये टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि संबंध में भारत का रुख स्पष्ट है। श्री जायसवाल ने कहा कि ऐसे दावे न तो न्यायसंगत हैं और न ही ऐतिहासिक तथ्यों तथा सबूतों पर आधारित हैं। प्रवक्ता ने कहा कि भारत द्विपक्षीय संबंधों के सभी मुद्दों पर नेपाल के साथ सार्थक बातचीत के लिए तैयार है। होर्मुज में फंसे जहाजों के लिए अमेरिका प्रोजेक्ट फ्रीडम शुरू करेगा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि इस परियोजना से सैकड़ों जहाजों और लगभग 20,000 नाविकों को सहायता मिलेगी। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि ईरान युद्ध से तटस्थ देश प्रभावित हुए हैं और अमेरिका इन देशों के जहाजों को प्रतिबंधित जल क्षेत्र से सुरक्षित बाहर निकालने में सहयोग करेगा। अमरीकी सेंट्रल कमांड के अनुसार इसके लिए मिसाइल नाशकों 100 से अधिक विमानों और 15,000 कर्मियों को तैनात किया जाएगा। श्री ट्रंप ने कहा कि इस प्रक्रिया में बाधा पहुंचाने वालों के लिए सख्ती से निपटा जाएगा। फरवरी में युद्ध शुरू होने के बाद से ईरान ने होर्मुज से जहाजों की आवाजाही लगभग बंद कर रखी है। उधर अमरीका ने भी ईरानी बंदरगाहों की नौसैनिक नाकेबंदी कर दी है। इस बीच पश्चिम एशिया में संघर्ष विराम को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है। समझौते के लिए ईरान के प्रस्ताव पर अमेरिका सहमत नहीं है। ईरान के प्रवक्ता इस्माइल बागई ने कहा कि ईरान के प्रस्ताव पर अमेरिकी जवाब की समीक्षा की जा रही है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान का प्रस्ताव स्वीकार्य नहीं है। एक रिपोर्ट।
1: ईरान के विदेश मंत्रालय का कहना है कि वो अपने 14 सूत्री प्रस्ताव पर अमेरिका की प्रतिक्रिया की समीक्षा कर रहा है। ईरान के अधिकारियों का कहना है कि योजना का उद्देश्य शत्रुता को समाप्त करना है और इसमें परमाणु मुद्दों का कोई जिक्र नहीं है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान परमाणु प्रतिबंधों से संबंधित मांगों को पूरा नहीं करता। उधर दक्षिणी लेबनान में इसराइल और हिजबुल्ला के बीच युद्ध विराम के बावजूद लड़ाई तेज हो गई है और इसराइली सेना ने हाल के दिनों में हिजबुल्ला से जुड़े दर्जनों ठिकानों को निशाना बनाया है। इस बीच हिजबुल्ला भी इसराइली सैनिकों पर रॉकेट और ड्रोन से हमले जारी रखे हुए है। उधर मध्यस्थों के माध्यम से राजनयिक प्रयास भी जारी है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से कुमार राधारमन।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में रक्षा त्रिवेणी संगम विषय पर 3 दिन की उत्तर प्रौद्योगिकी संगोष्ठी का उद्घाटन करेंगे। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि संगोष्ठी परिचालन संबंधी चुनौतियों से निपटने के लिए अत्याधुनिक स्वदेशी तकनीक के प्रदर्शन और एकीकरण के लिए महत्वपूर्ण मंच है। मौसम विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में आज गरज चमक के साथ वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, मध्य प्रदेश और उड़ीसा के कुछ हिस्सों में भी ऐसा ही मौसम रहने की संभावना है। बिहार, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, केरल, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, तमिलनाडु, पुदुचेरी और पश्चिम बंगाल में भी कुछ स्थानों पर तेज वर्षा हो सकती है। आईपीएल क्रिकेट में कल गुजरात टाइटंस ने पंजाब किंग्स को 4 विकेट से हरा दिया। प्रतियोगिता में आज लखनऊ सुपर जायंट्स और मुंबई इंडियंस आमने सामने होंगे। मुंबई में ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मनोज।
2: धन्यवाद मुकेश। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की मतगणना की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। जनसत्ता की सुर्खी है, नतीजे आज, निगाहें बंगाल पर। पत्र के अनुसार मतदान केंद्रों पर त्रिस्तरीय सुरक्षा घेरा। राजस्थान पत्रिका का शीर्षक है, देश की राजनीतिक दिशा तय करेंगे तमिलनाडु बंगाल के चुनाव परिणाम। पत्र के अनुसार जनादेश आज, 5 प्रदेशों में दलों की धड़कने तेज। हिंदुस्तान ने फलता में पुनर्मतदान शीर्षक से संपादकीय में लिखा है, निर्वाचन आयोग के इस निर्णय की अनुगूंज पूरे देश में पहुंचनी चाहिए कि बाहुबल के सहारे मतदाताओं को डराने और मतदान को बाधित करने का क्या नतीजा हो सकता है। दिल्ली में एसी से लगी आग में 9 लोगों की मौत पर हिंदुस्तान का शीर्षक है, एसी बना काल, 9 को लील गया। नव भारत टाइम्स के अनुसार बुजुर्ग पेरेंट्स को बचाने अंदर दोबारा गई फिर लौट ना सकी। दैनिक जागरण ने आग का सिलसिला शीर्षक से संपादकीय में लिखा है, गर्मियां बढ़ते ही घरों, कारखानों और अन्य स्थलों पर आग लगने की घटनाओं का सिलसिला तेज होना इसलिए चिंताजनक है क्योंकि अभी तो तापमान और ज्यादा बढ़ने के आसार हैं। इससे भी अधिक चिंता की बात यह है कि आग लगने की ज्यादातर घटनाएं एसी में ब्लास्ट या शॉर्ट सर्किट के कारण हो रही है। राजस्थान पत्रिका ने नया सवेरा शीर्षक से लिखा है, जब आक्रोश बन गया राष्ट्र संकल्प तो आतंक पर फिर हुआ निर्णायक प्रहार। पहली बार तैनात हुई ऑल वुमन कॉम्बैट टीम ने मोर्चे पर दिखाया जोश, दुनिया को बताया अब और नहीं।

0: ऑपरेशन के बाद सामने आई शौर्य गाथाएं। पंजाब केसरी की सुर्खी है, लिपुलेख पर भारत की नेपाल को 2 टूक। पत्र के अनुसार विदेश मंत्रालय ने नेपाल के दावों को खारिज करते हुए एक तरफा और अनुचित बताया। दैनिक जागरण की सुर्खी है, अब हर तरह के मौसम में धरती के कोने कोने पर भारत रख सकेगा दृष्टि। दुनिया का पहला ऑप्टोसार उपग्रह मिशन दृष्टि कैलिफोर्निया से हुआ लॉन्च। चीन पाक सहित हर देश की छोटी बड़ी गतिविधि की होगी निगरानी। देशबंधु के अनुसार विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस पर बोले संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव अंतोनियो गुतरश, तमाम तरह की स्वतंत्रता प्रेस की आज़ादी पर टिकी, इसके बिना ना तो मानवाधिकार संभव है ना ही शांति। पत्रकारों के अधिकारों की रक्षा करने का आह्वान किया।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। असम, पश्चिम, केरलम, तमिलनाडु और पुदुचेरी विधानसभा चुनावों की मतगणना शुरू। 7 विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनावों की भी मतगणना जारी। भारत ने लिपुलेख दर्रे से कैलाश मानसरोवर यात्रा पर नेपाल की आपत्ति खारिज करते हुए इसे अनुचित बताया। मौसम विभाग ने हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सहित उत्तर भारत में आज गरज चमक के साथ वर्षा और ओले पड़ने का अनुमान जताया। अमरीका हॉर्मुज जल डमरू मध्य में फंसे जहाजों की सुरक्षित निकासी के लिए प्रोजेक्ट फ्रीडम शुरू करेगा। और आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस ने पंजाब किंग्स को 4 विकेट से हराया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम अनुजा कुमार। द हेडलाइंस। काउंटिंग ऑफ वोट्स बिगिन फॉर असेंबली इलेक्शंस इन असम, वेस्ट बंगाल, केरलम, तमिलनाडु एंड यूनियन टेरिटरी ऑफ पुदुचेरी। काउंटिंग ऑफ वोट्स ऑल्सो अंडर वे फॉर बाईपोल्स इन 7 असेंबली कॉन्स्टिट्युएंसीज। India rejects Nepal's objection to Kailash Mansarovar Yatra through Lipulekh Pass, calls it unjustified. IMD forecasts thunderstorms accompanied with hailstorm over North India, including Haryana, Himachal Pradesh, Uttar Pradesh and Uttarakhand today. United States to launch Project Freedom to guide stranded ships safely out of Strait of Hormuz. And in IPL cricket, Gujarat Titans defeat Punjab Kings by 4 wickets in Ahmedabad last night. And now the news in detail. Counting of votes began for the assembly elections in Assam, West Bengal, Keralam, Tamil Nadu and Union Territory of Puducherry this morning. Counting began at 8 a.m. with postal ballots taken up first, which will be followed by electronic voting machines or EVMs. Early trends are expected to emerge by noon. The Election Commission has made elaborate arrangements to ensure peaceful and transparent counting. Counting of votes is being conducted for 293 seats in West Bengal, 126 assembly seats in Assam, 140 in Keralam, 234 in Tamil Nadu and 30 seats in Puducherry. Now we go over live to our correspondent Kalyan Laha in Kolkata for the latest update on counting. Kalyan, how is counting progressing in West Bengal?
3: At this moment, the postal ballot is being counted. And after the completion of postal ballot, the EVM counting will start. And the Election Commission has taken all the arrangements to conduct a free, fair and a peaceful counting. And three-layer security arrangement has been established at all the counting centers, and there are 77 counting centers in the states. And one thing I should mention that today 293 assemblies constituencies counting is being held, and Election Commission has ordered repoll in Falta assembly constituency on that will be held on 21st May, and the result is on 24th May.
2: Thank you, Kalyan, for that update. We also have with us our correspondent Rakesh Dole from Guwahati for the latest update on counting from the state of Assam. Rakesh, what latest update you have for our listeners on counting in Assam?
4: Yes, in Assam, counting of votes for the general elections to the Legislative Assembly got underway a short while ago under tight multi-layer security arrangements. The state has recorded a high voter turnout of 85.96%, the highest

प्रत्येक राजाचार्य है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने जमैका विच भारतीय भाईचारे नाल गलबात की थी। एक सोशल मीडिया पोस्ट विच उन्हें कहा कि जमैका के प्रधानमंत्री ने भारतीय भाईचारे के योगदान बारे गल की थी। दोवां नेतावां ने चल रहे बदलाव खास करके बुनियादी ढांचे मनुखी विकास अते तकनोलॉजी राही संचालित शासन अते उद्यमता विच चर्चा की थी। उन्होंने भारत जमैका संबंधा विच हाल ही दियां गतिविधियां बारे भी विचार वटांदरा कीता। डॉक्टर जयशंकर इस महीने की 10 तरीक तक जमैका सुरीनाम ते त्रिनिदाद ते टोबैगो दे अधिकारक दौरे ते ने। ये खबर तुसी आकाशवाणी तो सुन रहे हो। साडा xhandle@AIR RNU जलंधर, साडा फेसबुक पेज RNU-AIR जलंधर, यूट्यूब ते साडा चैनल @AIR जलंधर। सेहत ते परिवार भलाई मंत्रालय सारे राज्यां केंद्र शासित प्रदेशां आदि संबंधित केंद्रीय मंत्रालय ते विभागां दे सहयोग नाल देश भर विच सेहत संभाल केंद्रां विच अग दे खतरे की रोकथाम अते इन्हां नूं घटाउण दी महत्ता बारे जागरूकता पैदा करन लई अज तो सिर्फ भारतीय अग सुरक्षा हफ्ता मनाएगा। केंद्रीय सेहत सकत्तर पुण्य सलिला श्रीवास्तव अज अग सुरक्षा हफ्ते की शुरुआत करनगे अते नवीं दिल्ली दे कर्तव्य भवन विखे सेहत सहूलतां विच अग सुरक्षा बारे सहुं चुकाउणगे। इस हफ्ते दौरान देश भर विच कीतियां जाण वालियां जागरूकता अते तैयारी गतिविधियां की कड़ी की शुरुआत होएगी। राज अते केंद्र शासित प्रदेश इस दौरान जागरूकता मुहिमा मॉक ड्रिल्स समर्थन निर्माण पहलकदमियां ते अग सुरक्षा प्रोटोकॉल दे प्रसार समेत कई गतिविधियां करनगे। तेलंगाना दे हैदराबाद तो हज यात्रियों का पहला जत्था कल साउदी अरब की पवित्र यात्रा लई रवाना होया। पहले जत्थे विच राज दे कुल 430 श्रद्धालु रवाना होए। राज दे घट गिणती मामलों बारे मंत्री मुहम्मद अजहरुद्दीन ने श्रद्धालुओं नूं साउदी अरब विच सारे नियमों ते कानूनों की पालना करन अते तेलंगाना दे विकास लई प्रार्थना करन दी अपील कीती। अमरीका होरमुज़ पणजोड़ विच फसे जहाजा की सहायता लई प्रोजेक्ट फ्रीडम शुरू करेगा। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि यह प्रोजेक्ट सैकड़े जहाजा अते करीब 20,000 नाविका नूं सहायता प्रदान करेगा। एक सोशल मीडिया पोस्ट विच उन्होंने कहा कि निरपक्ष अते गैर गठजोड़ वाले देश ईरान युद्ध तो प्रभावित हुए ने अते अमरीका इन्हां देशां दे जहाजा नूं पाणियां तो सुरक्षित बाहर कढ़न विच सहायता करेगा। अमरीकी केंद्रीय कमान मुताबिक इस उद्देश लई मिजाइल नाशकां 100 तो वध हवाई जहाजां अते 15,000 मुलाजम तैनात किए जाएंगे। श्री ट्रंप ने कहा कि इस प्रक्रिया में रुकावट पाने वालों नाल सख्ती नाल नजिठिया जाएगा। फरवरी में जंग शुरू होने तो बाद ईरान ने होरमुज़ पड़जोड़ राही जहाजा की आवाजाही करीब करीब बंद कर दिता है। इस दौरान अमरीका ने ईरानी बंदरगाहों से समुद्री फौज की नाकाबंदी ला दी है। यूरपी देशों के नेता दो महत्वपूर्ण शिखर सम्मेलनों लई आर्मेनिया पहुंच रहे हैं। आर्मेनिया नूं लंबे समय तो रूस का सब तो नज़दीकी सहयोगी मनिया जाता रहा अते रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन दे यूरेशिया आर्थिक संघ का मैंबर भी है। रूस का आर्मेनिया विच एक फौजी अड्डा भी है। आर्मेनिया नूं रूस तो सस्तियां दरां ते गैस मिलती रही है। 30 तो वध यूरोपीयन नेता अज आर्मेनिया विच यूरोपीयन राजनीतिक भाईचारा सम्मेलन विच शामिल हो रहे ने। कल पहला यूरोपी संघ आर्मेनिया शिखर सम्मेलन होएगा जिस विच EU प्रधान उर्सुला फॉन देर लेन आते यूरोपियन कौंसल दे प्रधान अंतोनियो कोस्टा भी शामिल होंगे। इस दौरान यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने कल आर्मेनिया विच बरतानवी प्रधानमंत्री कीर स्टारमर नाल मुलाकात की थी। यूक्रेन ने हाल ही के दिनों विच यूरोपियन देशों नाल कूटनीतिक यतन तेज कर दिते ने। सरकार ने कहा है कि वह पश्चिमी एशिया विच बदलती स्थिति दरमियान ऊर्जा सप्लाई समुद्री संचालन ते भारतीय नागरिकां नूं सहायता यकीनी बनाउण लई सारे उपा कर रही है। पेट्रोलियम ते कुदरती गैस मंत्रालय ने कहा है कि LPG की जमाखोरी अते कालाबाजारी नूं रोकण लई देश भर विच गतिविधियां कीतियां जा रही ने। सरकार ने भी कहा है कि मार्शल आइलैंड दे झंडे वाला LPG वाहक MT सर्वशक्ति 46,313 मीट्रिक टन LPG लैके सुरक्षित ढंग नाल होरमुज़ पणजोड़ पार कर गया है। जहाज इस महीने दे 13 तरीक नूं विशाखापट्टनम पहुंचण दी उम्मीद है। अटलांटिक महासागर विच एक क्रूज जहाज ते शक्की तौर ते हंता वायरस दे फैलण कारण 3 लोगों की मौत हो गई है। विश्व सेहत संगठन WHO ने कहा है कि हंता वायरस के एक मामले की पुष्टि हुई है जदों कि 5 होर शक्की मामलों की जांच की जा रही है। प्रभावित लोगों विच 69 साल ब्रिटिश नागरिक शामिल है जो जोहानसबर्ग के एक हस्पताल विच इंटेंसिव केयर विच है। भारतीय मौसम विभाग MD ने अज पंजाब हरियाणा हिमाचल प्रदेश

0: एक जरूरी सूचना। आकाशवाणी जलंधर दी खेतरी समाचार इकाई विच समाचार वाचक ते अनुवादक एनआरटी कैजुअल पंजाबी लई योग उम्मीदवारां तों अर्जियां दी मांग कीती जांदी है। उम्मीदवार ने अंग्रेजी विषय नाल ग्रेजुएशन कीती होवे ते पंजाबी भाषा ते कंप्यूटर च महारत होवे। उम्मीदवार दी उमर 20 मई 2026 तक 21 साल तों 50 साल विचकार होनी चाहीदी है। तरजीही तौर ते उम्मीदवार जलंधर या इस दे नेड़ले इलाकें दा वसनीक होवे। चाहवान उम्मीदवार विद्यक योग्यता दे सर्टिफिकेट अते तजर्बे दियां तस्दीकशुदा कापियां नाल वेरवे सहित बायोडाटा रंगदार पासपोर्ट साइज फोटो अर्जी नाल नत्थी करके भेजन। अर्जियां भेजन लई पता है सहायक निदेशक खेतरी समाचार यूनिट आकाशवाणी केंद्र नेड़े BMC चौक जलंधर। अर्जियां भेजन की आखिरी तारीख 20 मई 2026 है। चोन प्रक्रिया बारे वेरवे सहित जानकारी अते खाली फार्म साड़ी वेबसाइट newsonair.com जा newsonair.gov.in ते जाके वैकेंसी कॉलम विचों प्राप्त कीता जा सकता है। ध्यान रहे एक कोई नियमित रोजगार या नौकरी नहीं है, तुहानू जरूरत दे मुताबिक बुलाया जावेगा।
1: प्रभजोत जी, मैं सुनिया वसदे वेड़े प्रोग्राम च कुछ तब्दीली हुई है।
2: बिल्कुल सुखजीत जी, तब्दीली तो हुई है।
1: ओ केड़ी तब्दीली है भाई?
2: देखो जी, जेड़ा प्रोग्राम आंदा सी ना बुधवार नु, ते ओ हुन हो गया शनिवार नु।
1: यानी कि झांजरां दे बोर हुन शनिवार छण क्या करनगे?
2: बिल्कुल जी, ते जेड़े शनिवार नु प्रोग्राम सी ना मेरी कलम तो सांझ शक्ति रूपा, ए तुसी सुन सकोगे बुधवार नु।
1: यानी कि बुधवार दी झांजरां दे बोर वाली फरमाइश शनिवार नु छण क्या करेगी, ते शनिवार दे सारे सिलसिले असी बुधवार पेश करया करांगे
2: जी।
3: एक विशेष सूचना, आकाशवाणी जलंधर वालों कुछ खाली स्टाफ क्वार्टर ते ऑफिस स्पेस किराए जां लीज ते दित्ते जाण दा प्रस्ताव है, जो सिर्फ केंद्र सरकार, सूबा सरकार, जनतक खेतर दे अदारे यानी PSU ते विधानिक संस्थावां नूं दित्ते जाणगे। इन्हां च शामिल ने आकाशवाणी जलंधर स्थित ऑफिस स्पेस ते आकाशवाणी स्टाफ कलोनी BMC चौंक जलंधर ते अर्बन एस्टेट फेज 1 जलंधर स्थित रिहायशी फ्लैट्स। चाहवान आकाशवाणी जलंधर दे उप महानिदेशक नाल संपर्क करन। फोन नंबर है 0181-298-3036। ईमेल ID jalandhar@prasarbharati.gov.in।
4: ब्रेक तो बाद मैक पंजाब दी प्रोग्राम फिर तो हाजिर है जी। इस प्रोग्राम तुसी पंजाबी फिल्मी गीत सुन रहे हो। प्रोग्राम दा अगला गीत सरबजीत होरां दी आवाज़ च, फिल्म है बदला जट्टी दा।

0: उमंग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: स्वागत है आप सबका हमारे आपके सबके चहेते कार्यक्रम उमंग में। मैं हूं विमलेश, नमस्कार।
3: और मैं हूं अजीत, नमस्कार। जी हां श्रोताओं, आप सबको हम धन्यवाद देना चाहते हैं उमंग कार्यक्रम से जुड़े रहने के लिए, क्योंकि इस कार्यक्रम में हम आपके लिए लेकर आते हैं ज्ञान और मनोरंजन से भरपूर शैक्षिक कार्यक्रम।
2: जी हाँ, सिर्फ इतना ही नहीं, हमेशा हम आपके लिए लेकर आते हैं ढेर सारी शिक्षाप्रद और मनोरंजक जानकारियाँ।
3: तो आइए सुनते हैं सबसे पहले हमेशा की तरह एक खूबसूरत विचार, जिसे हमें भेजा है कच्छ भुज गुजरात से जगदीश जौहरी, पूजा और पायल जी ने। लिखते हैं,
2: समय पर न समझ आने वाली बातें आगे चलकर जिंदगी का एक सबसे बड़ा सबक बन जाती हैं, क्योंकि इनसे हम या तो सीखते हैं या फिर जीवन भर पछताते हैं।
3: जी हाँ श्रोताओ, सच है बिल्कुल। किसी बात को समय रहते यदि हम समझ लें तो बहुत अच्छा है, क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है कि बहुत देर हो जाती है और तब अक्सर कुछ भी नहीं किया जा सकता।
2: जी
3: तो आइए समय को हल्के में ना लें, इससे सबक लें। आइए सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो सबसे पहला संदेश हमें मिला है खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलक राज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा और अंकुश अरोड़ा जी का।
2: करसोग जिला मंडी हिमाचल प्रदेश से योगेश ठाकुर।
3: और नजदीक बस स्टैंड बुर्ज हनुमानगढ़ फजील का पंजाब से रमन वर्मा, अमन वर्मा, दिव्यांश वर्मा और डॉक्टर मदन लाल वर्मा।
2: भट्टीपुरा महोबा उत्तर प्रदेश से कृष्ण कुमार गुप्ता, कमला देवी गुप्ता और परिवारजन लिखते हैं,
3: नमस्कार। उमंग कार्यक्रम के 30 मार्च से लेकर 3 अप्रैल वाले सप्ताह में आपने भारत की प्राचीन चिकित्सा पद्धति आयुर्वेद और इससे जुड़े सर्वाधिक मशहूर चिकित्सकों और उनके द्वारा रचित प्रसिद्ध ग्रंथों पर व्यापक जानकारी दी और उनके जीवन से जुड़े दिलचस्प वाक्यात को नाट्य प्रस्तुतिकरण के मार्फत हमें सुनाया। सुनकर हम धन्य हो गए। हमें इस बात का बहुत गर्व है कि हम उमंग कार्यक्रम के श्रोता हैं।
2: छत्तीसगढ़ सरगुजा से रुबीना थापा, सोनम थापा, फातिमा थापा, आसमा थापा, आदिबा थापा, रेशमा थापा, कुमारी वली थापा, कुमारी डब्ल्यू थापा।
3: और केंद्रपाड़ा उड़ीसा से देशदीप दास, पद्मलोचन मोहंती, शुभम नायक, अभिराम साहू, अविनाश दास और गीतांजलि दास।
2: ग्राम पजौनिया जिला जालौन उत्तर प्रदेश से सतेंद्र कुमार चंदसौलिया और श्रीमती कल्पना चंदसौलिया लिखते हैं,
3: आदरणीय अजीत जी और विमलेश जी, आपने अंतरिक्ष से संबंधित आज बहुत ही उपयोगी जानकारी दी। उमंग कार्यक्रम सुनकर हम देश विदेश की जानकारियां प्राप्त करते हैं, पेड़ पौधे पशु पक्षियों के बारे में भी बहुत बढ़िया जानकारी हासिल करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद उमंग टीम को।
2: आप सभी श्रोताओं को भी हमारा धन्यवाद अच्छी और प्रोत्साहन देने वाली प्रतिक्रियाओं के लिए। और अब बारी है प्रश्नों के उत्तरों की। जिन्होंने भाग लिया उनका धन्यवाद और जिन्होंने नहीं लिया उन्हें हम प्रोत्साहित करना चाहते हैं कि अवश्य भाग लें। तो हमारा पहला प्रश्न था,
3: भारतीय सेना में सबसे ऊंचा पद क्या है और ये पद सबसे पहले किसे दिया गया?
2: जी, इसका उत्तर है, पहले भारतीय सेना में सबसे ऊंचा मानद पद था फील्ड मार्शल। ये सबसे पहले जनरल सैम मानेकशॉ को दिया गया था। उनका पूरा नाम था सैम हॉर्मुजी प्रेमजी जमशेदजी मानेकशॉ। इन दिनों भारत की सशस्त्र सेनाओं के प्रधान को चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कहा जाता है। ये पद सबसे पहले जनरल बिपिन रावत को दिया गया था।
3: और अब सुनिए हमारा दूसरा प्रश्न। हमारा प्रश्न था, भारत के प्रसिद्ध गुरुकुलों में वशिष्ठ गुरुकुल, द्रोणाचार्य गुरुकुल, वाल्मीकि गुरुकुल और कर्ण गुरुकुल माने जाते हैं, इनमें से किन्हीं दो की विशेषता बताइए।
2: जी, हम आज वशिष्ठ और द्रोणाचार्य गुरुकुल की विशेषता आपको बता देते हैं। वशिष्ठ गुरुकुल की सबसे बड़ी विशेषता थी समान भाव। यहाँ राजा और सामान्य परिवार के बच्चे भी एक साथ शिक्षा प्राप्त करते थे, कोई भेदभाव नहीं था। कुछ मायनों में यहाँ समावेशी शिक्षा थी। द्रोणाचार्य गुरुकुल की मुख्य विशेषता थी युद्ध कला की विशेष शिक्षा। धनुर्विद्या में पारंगत अर्जुन ने यहीं से शिक्षा प्राप्त की थी।
3: और अब सुनिए हमारा तीसरा प्रश्न। हमारा तीसरा प्रश्न था, श्रोताओं, जनसंख्या के आधार पर भारत की प्रमुख चार जनजातियों के नाम बताइए।
2: इसका उत्तर है, जनसंख्या के आधार पर भारत की चार प्रमुख जनजातियाँ हैं, गोंड, भील, संथाल और उरांव। इन्हें ओराम भी कहते हैं।
3: और हमारा अगला प्रश्न था, किस चीनी यात्री ने नालंदा विश्वविद्यालय की महानता का विस्तृत वर्णन किया है?
2: इसका उत्तर है, नालंदा विश्वविद्यालय की महानता का वर्णन चीनी यात्री हुइन संग ने अपने संस्मरणों में किया। इनका संस्मरण चीनी भाषा में लिखा गया था। इसका अनुवाद है, द ग्रेट टेंग रिकॉर्ड्स ऑन वेस्टर्न रीजन्स।
3: और हमारा अंतिम प्रश्न था आपसे कि तक्षशिला विश्वविद्यालय के 3 प्रसिद्ध गुरुओं और 1 प्रसिद्ध विद्यार्थी का नाम बताइए।
2: प्रसिद्ध गुरुओं या आचार्यों के नाम है कौटिल्य यानी चाणक्य, पाणिनी और वैद्यराज चरक, और सबसे प्रसिद्ध विद्यार्थी का नाम है सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य।
3: तो श्रोताओं, आपका बहुत

0: जादुई पिटारा, है ना मजेदार साथियों? जी हाँ, आप भी अब अपने आसपास की स्थानीय चीजों से बना सकते हैं अपना मजेदार जादुई पिटारा। क्या
1: जादुई पिटारा?
2: और अब सुनते हैं कार्यक्रम बंदर और बया।
0: ये एक रोचक लोक कथा पर आधारित कार्यक्रम है जिसमें बंदर और एक सुंदर बया पक्षी की मित्रता के बारे में बताया गया है। कार्यक्रम का संदेश है मित्रता और आपसी सहयोग की भावना।

दोस्तों, किसी जंगल में एक बंदर रहता था। वो बंदर बड़ा शैतान था। हाँ, ना काम ना धाम, सारे दिन कूदता फिरता इस पेड़ से उस पेड़ पर, उस पेड़ से इस पेड़ पर।

0: उसी जंगल में एक बया भी रहती थी। जानते हो दोस्तों, बया बड़ी समझदार होती है। समझदार ही नहीं, बहुत मेहनती भी होती है। उसने सोचा कि बरसात आने वाली है, चौमासे में पानी खूब बरसता है, इसलिए उसने बरसात से बचने के लिए उपाय सोचा। जानते हो दोस्तों क्या? बताएगा तुम में से कोई? बताओ बताओ। पक्षी अपने रहने के लिए पेड़ पर क्या बनाते हैं? हाँ, सोचो सोचो।
1: घोंसला।
0: हाँ, बारिश से बचने के लिए पक्षी घोंसला बना लेते हैं। तो दोस्तों, बया ने भी यही किया। दिन रात मेहनत की, तिनका तिनका जोड़कर उसने घोंसला बनाकर पेड़ पर लटका लिया। एक बात तो हम भूल ही गए, बया का घोंसला बड़ा अजीब होता है। बया अपने घोंसले में एक खाना तो बनाती है बड़ा, और बाकी खाने वो बनाती है छोटे छोटे अपने बच्चों के लिए। दोस्तों, एक दिन बहुत तेज बारिश हुई। बंदर भाई भीगते हुए उसी पेड़ पर आ बैठे जहां बया का घोंसला था। पानी बहुत जोर से बरस रहा था। बया को बंदर पर दया आई और बोली,
1: क्यों बंदर जी, तुम इतने परेशान क्यों हो?
2: अरे बया, देखती नहीं चारों ओर पानी ही पानी है। मैं भीग रहा हूँ, उस पर ये ठंडी हवा चल रही है, मुझे जाड़ा लग रहा है।
1: बंदर जी, ये कैसी बात, ऊपर पड़ती है बरसात, सर्दी तुम्हें सताती है, फिर भी समझना आती है, वर्षा से बिल्कुल बच जाते, साधन कोई अगर जुटाते, दिन भर उछला करते हो, मेहनत से तुम डरते हो।
2: ज्यादा बात बनाओ मत, सेठी मुझे दिखाओ मत, छोटा मुंह और बात बड़ी, जीभ चलाती खड़ी खड़ी, गुस्सा मुझे दिलाएगी तो पीछे तू पछताएगी। तू चिड़िया, मैं बंदर हूँ, तुझसे ज्यादा सुंदर हूँ।
1: मैं तो तुम्हारी भलाई के लिए कह रही थी बंदर जी, इतने भीग रहे हो, कुछ नहीं तो वो सामने माली के छप्पर पर दलिया पड़ी है, उसे उठाकर सिर पर रख लो, कुछ तो बचोगे ही।
2: अरे तो इतनी देर से क्यों नहीं बताया तूने?
1: मैं क्या बताती, मैं तो तुम्हारे सामने बहुत छोटी सी हूँ, ये तो तुम्हें खुद ही सोच लेना चाहिए।

0: कल जब बरसात बंद हो जाए तो कहीं से कुछ घास पात लाकर किसी डाल पर छोटा सा छप्पर डाल लेना, ताकि पानी बरसे तो चैन से उसके नीचे बैठ सको।
1: अरे कल की कल देखी जाएगी, अब तू सीख बंद कर। मैं डलिया लाकर पहले आज का काम चलाता हूँ।
2: दोस्तों, वो रात बंदर ने सिर पर डलिया रखकर काट दी। सुबह हुई, बारिश बंद हो चुकी थी। बंदर फिर उछल कूद में मस्त हो गया। दो चार दिन बाद फिर पानी बरसा। पेड़ पर बैठा बंदर भीगने लगा। हाँ, बया अपने घोंसले में आराम से बैठी थी। बंदर को भीगता देखकर वो पूछ बैठी,
3: तुम्हारी उस दिन वाली डलिया कहाँ गई? उसे सिर पर ढक लो।
1: डलिया क्या रखी रहेगी, उछल कूद में वो तो अगले दिन ही टूट गई।
3: अरे ऐसी उछल कूद क्यों की? कि डलिया ही तोड़ डाली।
1: चुप रह, टूट गई तो टूट गई।
3: जिससे नुकसान होता हो ऐसी आदत बुरी होती है। हाँ, और बुराई तो छोड़ने की ही चीज होती है। दिन भर हाथ चलाते हो, समझदार कहलाते हो, कोई आदत अगर बुरी है क्यों न छोड़ तुम पाते हो?
1: डलिया टूटी है माली की, आदत मेरी साथी है, अक्लमंद बन कर क्यों मुझसे ज्यादा जीव चलाती है?
3: मैं तो इसलिए कह रही थी बंदर जी कि तुम्हें इतनी परेशानी हो रही है। फिर मैंने तो ये भी कहा था कि दिन में कहीं से घास पात बटोर कर किसी डाल पर छोटा सा छप्पर डाल लेते तो ये कष्ट क्यों सहन करना पड़ता?
1: मेरे आगे जीभ चलाती हैं? क्यों ज्यादा इतराती है? छोटा मुंह और बड़ी बात कर मुझको सीख सिखाती है। नहीं जानती मेरी ताकत, मुझसे आंख मिलाती है। मैं पानी में भीग रहा हूँ, तू बैठी इतराती है।
3: हे राम, यही तो मैं भी कहती हूँ बंदर जी कि भगवान ने तुम्हें मुझसे ज्यादा ताकत दी है, मुझसे ज्यादा बड़ा शरीर दिया है। मुझे कोई चीज लानी होती है तो चोंच में लाती हूँ। तुम्हें तो भगवान ने हाथ भी दिए हैं, फिर भी अपने बचाव का इंतजाम नहीं करते, तो इसका मतलब तो ये है कि
1: क्या मतलब?
3: ये क्या कर रहे हो, ये क्या कर रहे हो?
2: अरे बच्चों, ये क्या? बया चिड़िया तो रोने लगी। क्या तुम सोच सकते हो कि बया चिड़िया क्यों रोई? सोचो सोचो। आखिर बंदर ने गुस्से में आकर क्या किया? सोचो। शाबाश, कुछ बच्चे तो बता रहे हैं। अरे भाई जरा जोर से बताओ। हाँ, बंदर ने गुस्से में आकर बया का घोंसला ही तोड़ दिया, तभी तो बया रोने लगी। दोस्तों, बंदर ने अपने रहने के लिए

ये घर नहीं बनाया तो गुस्से से बया का घोंसला ही तोड़ दिया। दोस्तों, बंदर ही नहीं और भी बहुत से जानवर हैं जो अपना घर नहीं बनाते। क्या तुम ऐसे जानवरों के नाम बता सकते हो? सोचो सोचो। हाँ शाबाश, बताओ। हम तुम्हें ये बता देते हैं कि ये जानवर अपने लिए घर बनाते तो नहीं, पर दूसरे जानवरों के बनाए घरों में रहने लगते हैं। हाँ भाई, जरा सोच कर बताओ। हाँ बताओ बताओ। अच्छा दोस्तों, हम कुछ अता पता बता देते हैं। बता दे। अच्छा ये बताओ, चूहा कहाँ रहता है? बताओ बताओ। हाँ, बिल में। अच्छा, और कौन सा जानवर है जो अपना बिल नहीं बनाता और दूसरे जानवरों के बिल में रहता है? सोचो सोचो। याद आ गया? हाँ, सांप। दोस्तों, वो अपना घर खुद नहीं बनाता। दोस्तों, ऐसे ही बहुत से जानवर हैं जो घर बनाकर रहते हैं और कई जानवर अपना घर नहीं बनाते, जैसे वो बंदर था, है ना? अच्छा दोस्तों, तुम भी सोचना और कौन कौन से ऐसे जानवर हैं जो अपना घर नहीं बनाते। सोचोगे ना?

0: तो श्रोताओं, अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है।
1: तो अब अपने मित्र अजीत
0: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
1: नमस्कार।
2: उमंग उमंग उमंग उमंग।
3: तुसीं NCERT वालों स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम उमंग सुन रहे सी।

एक जरूरी सूचना। आकाशवाणी जलंधर दी खेतरी समाचार इकाई विच समाचार वाचक ते अनुवादक एनआरटी कैजुअल पंजाबी लई योग उम्मीदवारां तों अर्जियां दी मांग कीती जांदी है। उम्मीदवार ने अंग्रेजी विषय नाल ग्रेजुएशन कीती होवे ते पंजाबी भाषा ते कंप्यूटर च महारत होवे। उम्मीदवार दी उम्र 20 मई 2026 तक 21 साल तों 50 साल विचकार होनी चाहीदी है। तरजीही तौर ते उम्मीदवार जलंधर या इस दे नेड़ले इलाकें दा वसनीक होवे। चाहवान उम्मीदवार विद्यक योग्यता दे सर्टिफिकेट अते तजर्बे दियां तस्दीकशुदा कापियां नाल वीरवे सेहत बायोडाटा रंगदार पासपोर्ट साइज फोटो अर्जी नाल नत्थी करके भेजण। अर्जियां भेजण लई पता है सहायक

0: निदेशक क्षेत्रीय समाचार यूनिट आकाशवाणी केंद्र नेड़े बीएमसी चौक जलंधर। अर्जियां पे जंदी आखिरी तारीख 20 मई 2026 है। चोन प्रक्रिया बारे वेरवे सहित जानकारी अते खाली फार्म साड़ी वेबसाइट newsonair.com जा newsonair.gov.in ते जाके वैकेंसी कॉलम विचों प्राप्त कीता जा सकता है। ध्यान रहे, ए कोई नियमित रोजगार या नौकरी नहीं है, तो हनु जरूरत दे मुताबिक बुलाया जावेगा।
1: मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज़ ते असी आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र तो बोल रहे हैं। 10 बज चुके ने, हुण तक दीआं मुख खबरां सुणो। असाम, पछमी बंगाल, केरलम, तमिलनाडु ते पुडुचेरी विधानसभा चोणां लई वोटां दी गिणती शुरू। 7 विधानसभा खेतरां च जिमनी चोणां लई वोटां दी गिणती जारी है। भारत ने लिपुलेख दर्रे तों कैलाश मानसरोवर यात्रा ते नेपाल दे इतराज़ नूं खारिज करदिआं इस नूं अणउचित दस्सिआ। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अज उत्तर प्रदेश के प्रयागराग विच रक्षा त्रिवेणी संगम दे विषय ते उत्तरी टैक्नोलॉजी गोष्ठी का उद्घाटन करनगे। श्री अकाल तख्त साहब विखे वक् वक् पंथक जथेबंदियां ते विद्वानां दी एक अहम एकत्रता हुई। पंजाब सरकार वल्लों लियांदे गए जागत जोत एक्ट सोध बिल 2026 ते पंथक मसलियां ते कीती गई विचार चर्चा। पंजाब पुलिस वल्लों अमृतसर च दो वक् वक् मामलियां दे दौरान सरहद पारों हथियार तस्करी करन वाले मॉड्यूल का पर्दाफाश। 7 मुलजमान 12 किलो हैरोइन ते 7 पिस्तौलों समेत किया गिरफ्तार। 12वीं पंजाब राज गतका चैंपियनशिप विच रूपनगर दीआं लड़कियां ने ओवरऑल चैंपियनशिप जीती। सेहत ते परिवार भलाई मंत्रालय अज तो देश भर विच सेहत संभाल सहूलतां विच अग दे खतरियां दी रोकथाम ते इन्हां नूं घटाउण दे महत्व बारे जागरूकता पैदा करन लई पूरे भारत विच अग सुरक्षा हफ्ता मनाएगा। अमरीका हॉर्मोज़ पणजोड़ विच फसे जहाज़ां दी सहायता लई प्रोजेक्ट फ्रीडम शुरू करेगा। भारतीय मौसम विभाग ने अज पंजाब ते हरियाणा विच गरज नाल हनेरी झक्खड़ ते गड़ेमारी दी पेशीनगोई कीती। IPL क्रिकेट विच गुजरात टाइटन्स ने बीती रात पंजाब किंग्स नूं 4 विकटां नाल हराया। ए सन हुण तक दीआं मुख खबरां। दस बज के 2 मिनट ते 15 सैकेंड हो चुके ने जी। आकाशवाणी जलंधर ते हुण पेश है लाइव फोन इन फरमाइशी फिल्मी गीतां दा प्रोग्राम। हैलो फरमाइश, इस प्रोग्राम च तुसी फोन करके अपनी पसंद दे फिल्मी गीत सुनदे हो। साडा फोन नंबर है 0181 23 42 173 01812342173। तुहाडा दोस्त वीरेंद्र हाजिर है अज दा ये प्रोग्राम तुहाडी सेवा च लैके। ते सारयां नूं एक बेनती कि जिहड़े 4 दिन पहलां जां कल ही परसों ही साडे इस प्रोग्राम च आए सी ना, वो अज फोन ना करन ताकि बाकी दोस्तां दी वारी आ सके।

0: जी कौन बोल रहे हो?
1: कृष्णपाल परमार, छैन मेना, सोनकच तहसील, देवास जिला, मध्य प्रदेश से।
0: वाह जी वाह, कृष्ण पाल परमार जी, बड़ी दूरों याद किया है तुझे सानू।
1: सर प्यासा सावन पिक्चर का गाना है
0: जी,
1: तेरा साथ है तुम मुझे क्या कमी।
0: ठीक है जी, कृष्ण पाल जी बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने।

एक विशेष सूचना। आकाशवाणी जलंधर वालों कुछ खाली स्टाफ क्वार्टर ते ऑफिस स्पेस किराए जां लीज ते दित्ते जाण दा प्रस्ताव है, जो सिर्फ केंद्र सरकार, सूबा सरकार, जनतक खेतर दे अदारे यानी PSU ते विधानिक संस्थावां नूं दित्ते जाणगे। इन्हां च शामिल ने आकाशवाणी जलंधर स्थित ऑफिस स्पेस ते आकाशवाणी स्टाफ कलोनी BMC चौंक जलंधर ते अर्बन एस्टेट फेज 1 जलंधर स्थित रिहायशी फ्लैट्स। चाहवान आकाशवाणी जलंधर दे उप महानिदेशक नाल संपर्क करन। फोन नंबर है 0181-298-3036। ईमेल आईडी jalandhar@prasarbharati.com।

0: अवतार सिंह बिलिंग दे नावल होया देश पराया ते आधारित ए रेडियो लड़ीवार नाटक तुसी सुनोगे हर सोमवार शाम 6:30 बजे देहाती प्रोग्राम।
1: सोचा विच मैं हुन फोलां की खोया की पाया।
0: लड़ीवार नाटक होया।

0: अवतार सिंह बिलिंग दे नावल होया देश पराया ते आधारित ए रेडियो लड़ीवार नाटक तुसी सुनोगे हर सोमवार शाम 6:30 बजे देहाती प्रोग्राम
1: सोचा विच मैं हुन फोलां की खोया की पाया
0: लड़ीवार नाटक।

0: 10:56 हो चुके ने जी। हैलो फरमाइश प्रोग्राम च हुण बस आखिरी गीत है ते आखिरी फोन कॉल है। देखिए प्रोग्राम दे आखिर च कौन आए ने। हाँ जी स्वागत है जी।
1: सर जी नमस्कार।
0: नमस्कार जी, कौन बोल रहे हो?
1: मैं सोहन लाल बोलता पिंड सलाम वाला जिला फाजिलका का।
0: और जी सोहन लाल जी ठीक ठाक हो?
1: वधिया, तुसीं अपना दसो।
0: बहुत ही वधिया ने। ते दसो गीत केड़ा सुनना है प्रोग्राम दे आखिर च?
1: हाँ सीमा दा मन्ना देवी वाच है, इक बूंद के प्यासे हम,
0: तू प्यार का सागर है।
1: हाँ प्यार का सागर है।
0: ठीक है जी सोहन लाल जी, तुहाडी फरमाइश दा गीत आउण लगा है जी। मन्ना डे होरां दी आवाज़ च प्रोग्राम दा आखिरी गीत सुनते हैं सीमा फिल्म चों। तुसी सारे लो जी इस गीत दा मज़ा ते अपने दोस्त वीरेंद्र नूं दे दिओ इजाज़त अज दा ये प्रोग्राम हैलो फरमाइश खत्म करन दी। नमस्कार।

0: ਤੁਸੀਂ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ। 11 ਵਜ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਚਾਰ ਸੁਣੋਗੇ।
1: ਨਮਸਕਾਰ, ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਸਮਾਚਾਰ ਕੇ ਸਾਥ ਮੈਂ ਕਨਕਲਤਾ। असम, पश्चिम बंगाल, केरलम, तमिलनाडु और पुद्दुचेरी में विधानसभा चुनाव की मतगणना जारी है। अब तक के रुझान इस प्रकार हैं। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी अपने निकटतम प्रतिद्वंदी सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस से काफी आगे निकल गई है। अब तक के रुझानों में विधानसभा की 293 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी 115 सीटों पर आगे है, जबकि तृणमूल कांग्रेस ने 69 सीटों पर बढ़त बनाई हुई है। 6 सीटों पर अन्य उम्मीदवार आगे हैं। राज्य की फलता सीट पर दोबारा चुनाव कराने का फैसला किया गया है। यहां 21 मई को मतदान होगा। पश्चिम बंगाल से ताजा जानकारी के लिए चलते हैं हमारे संवाददाता कल्याण लाहा के पास। कल्याण, मतगणना के 3 घंटे बीत चुके हैं, पश्चिम बंगाल में ताजा स्थिति क्या है?
2: देखिए कनकलता, अभी बहुत सारे सीटों में, जैसे कि आप देख रहे हैं, 100 से ज्यादा सीटों में अभी बीजेपी लीड में है और टीएमसी बहुत पीछे पड़ा हुआ है। और भवानीपुर जो इम्पोर्टेंट सीट है, जिसमें चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी कॉन्टेस्ट कर रही है, उसमें शुभेंदु अधिकारी लीडिंग में है। और शुभेंदु अधिकारी दूसरे सीट में जो लड़ रहे हैं अभी नंदीग्राम में, दोनों ही सीटों में शुभेंदु अधिकारी बीजेपी का भी लीड में चल रहा है। और पूर्व वर्धमान जो डिस्ट्रिक्ट है, जो टीएमसी का घर है, उसमें भी बहुत सारे सीटों में बीजेपी आगे चल रहा है। और बांकुरा पुरुलिया में भी कांटे का टक्कर चल रहा है। और तीनहाटा जो एक इम्पोर्टेंट सीट है, उसमें बीजेपी कैंडिडेट अभी आगे चल रहा है।
1: जानकारी के लिए धन्यवाद कल्याण। असम में विधानसभा की 126 सीटों के रुझानों में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी ने निर्णायक बढ़त बना ली है। भाजपा 76 सीटों पर आगे है, जबकि कांग्रेस के उम्मीदवार केवल 24 सीटों पर आगे चल रहे हैं। असम गण परिषद 9 सीटों पर आगे है। मुख्यमंत्री हिमंता बिस्व शर्मा जालुकबाड़ी सीट पर आगे हैं, जबकि कांग्रेस के गौरव गोगोई जोरहाट सीट पर पीछे चल रहे हैं। केरलम में विधानसभा की सभी 140 सीटों के रुझान मिल गए हैं। कांग्रेस नेतृत्व वाला यूडीएफ गठबंधन 94 सीटों पर आगे है, जबकि सत्तारूढ़ वामपंथी गठबंधन एलडीएफ केवल 44 सीटों पर आगे चल रहा है। एक सीट पर भाजपा उम्मीदवार आगे है। मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन धर्मादम सीट पर पीछे चल रहे हैं। तमिलनाडु में विधानसभा की 234 सीटों में से 218 सीटों के रुझान मिले हैं। अभिनेता विजय की पार्टी टीवी के 100 सीटों पर बढ़त के साथ अन्य दलों से आगे चल रही है। एआईएडीएमके 64 सीटों पर आगे है, जबकि सत्तारूढ़ डीएमके 37 सीटों पर आगे है। मुख्यमंत्री एमके स्टालिन और उनके बेटे उदयनिधि स्टालिन अपनी अपनी सीटों पर पीछे चल रहे हैं। पुदुचेरी में विधानसभा की 30 सीटों में से 18 सीटों के रुझान मिले हैं। एनडीए गठबंधन 7 सीटों पर आगे है, कांग्रेस ने 3 सीटों पर और डीएमके 1 सीट पर बढ़त बनाए हुए है। 5 राज्यों की 7 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनावों की मतगणना भी चल रही है। ये 7 सीटें गुजरात में उमरेठ, कर्नाटक में बागलकोट और दावणगेरे दक्षिण, महाराष्ट्र में राहुरी और बारामती, नागालैंड में कोरिडांग और त्रिपुरा में धर्मनगर हैं। उमरेठ से भाजपा उम्मीदवार हर्ष दभाई गोविंद भाई परमार बढ़त बनाए हुए हैं। बागलकोट से कांग्रेस उम्मीदवार उमेश हुलाप्पा मेथी आगे हैं। दावणगेरे दक्षिण से भाजपा उम्मीदवार श्रीनिवास टी दास करियप्पा बढ़त बनाए हुए हैं। राहुरी से भाजपा उम्मीदवार अक्षय शिवाजीराव करदेले आगे हैं। बारामती से पूर्व उप मुख्यमंत्री अजित पवार की पत्नी और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी उम्मीदवार सुनेत्रा अजित पवार बढ़त बनाए हुए हैं। अजित पवार की इस साल जनवरी में विमान दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में प्रौद्योगिकी संगोष्ठी का उद्घाटन करेंगे। संगोष्ठी में देशभर से एमएसएमई, निजी रक्षा प्रौद्योगिकी कंपनियां, स्टार्टअप और सैन्य कर्मियों सहित कई प्रतिभागी शामिल हो रहे हैं। भारत ने लिपुलेख दर्रे पर नेपाल के दावे को खारिज करते हुए कहा है कि यह दर्रा वर्ष 1954 से कैलाश मानसरोवर यात्रा का पुराना मार्ग है। प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत लगातार कहता रहा है कि ऐसे दावे अनुचित और ऐतिहासिक तथ्यों से परे हैं। नेपाल ने भारत चीन द्वारा आगामी कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए लिपुलेख दर्रे का उपयोग करने पर आपत्ति जताई है। नेपाल ने कहा है कि यह क्षेत्र उसके अधिकार में आता है। होर्मुज में फंसे जहाजों के लिए अमेरिका प्रोजेक्ट फ्रीडम शुरू करेगा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान युद्ध से तटस्थ देश प्रभावित हुए हैं और अमेरिका इन देशों के जहाजों को प्रतिबंधित जल क्षेत्र से सुरक्षित बाहर निकालने में सहयोग करेगा। आईपीएल क्रिकेट में आज लखनऊ सुपर जायंट्स और मुंबई इंडियंस आमने सामने होंगे। मुंबई में यह मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ

0: ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मिनिमम 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज़ ते असी आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र तो बोल रहे हैं। दिन दे 11:05 वज रहे ने ते आओ सुनते हैं प्रोग्राम तमक जलंधर पैंदी। जी दोस्तों, इस प्रोग्राम विच तुसी सुनदे हो अपने मनपसंद गीत सानू फरमाइशां करके व्हाट्सएप दे जरिए। जी हाँ दोस्तों, व्हाट्सएप दे जरिए सानू अपना नाम टाइप करके भेजो, अपने गीत दे बोल टाइप करके भेजो जिहड़े तुसी गीत दी फरमाइश करना चाहुंदे हो, ते नाल दे नाल अपने शहर दा नाम जरूर टाइप करके भेजो। ते ए टाइप करन वास्ते नंबर नोट करो 9465536077 यानी कि 9465536077। सो दोस्तों, फटाफट इस नंबर नू तुसी डायल करो, टाइप करो, सारी डिटेल ते सानू भेज दो। प्रोग्रामा दा विच सिलसिला चलेगा तुहाडी इनफॉर्मेशन तुहाडे तक पहुँचाउण दा, ते ए सिलसिला मैं यानी कि वीनस पूरा करूँगी। सो दोस्तों, प्रोग्राम दा शुरुआती गीत सुनदिया ते शुरू हो चुका प्रोग्राम तमक जलंधर पैंदी। फटाफट सारी डिटेल सानू भेजो, अपने मनपसंद गीत फरमाइशा करके सुनो व्हाट्सएप दे जरिए।

एक जरूरी सूचना। आकाशवाणी जलंधर दी खेतरी समाचार इकाई विच समाचार वाचक ते अनुवादक एनआरटी कैजुअल पंजाबी लई योग उम्मीदवारां तों अर्जियां दी मांग कीती जांदी है। उम्मीदवार ने अंग्रेजी विषय नाल ग्रेजुएशन कीती होवे ते पंजाबी भाषा ते कंप्यूटर च महारत होवे। उम्मीदवार दी उमर 20 मई 2026 तक 21 साल तों 50 साल विचकार होनी चाहीदी है। तरजीही तौर ते उम्मीदवार जलंधर या इस दे नेड़ले इलाकें दा वसनीक होवे। चाहवान उम्मीदवार विद्यक योग्यता दे सर्टिफिकेट अते तजर्बे दियां तस्दीकशुदा कापियां नाल वेरवे सहित बायोडाटा रंगदार पासपोर्ट साइज फोटो अर्जी नाल नत्थी करके भेजण। अर्जियां भेजण लई पताए सहायक निदेशक खेतरी समाचार यूनिट आकाशवाणी केंद्र।

परिवारक लड़ीवार फैमिली नंबर वन ए परिवारक सिलसिला तुसी सुन सकदे हो हर बुधवार शाम 6:30 बजे देहाती प्रोग्राम दे विच परिवारक लड़ीवार फैमिली नंबर वन।

0: अवतार सिंह बिलिंग दे नावल होया देश पराया ते आधारित ए रेडियो लड़ीवार नाटक तुसी सुनोगे हर सोमवार शाम 6:30 बजे देहाती प्रोग्राम
1: सोचा विच मैं हुन फोलां की खोया की पाया
0: लड़ीवार नाटक होया।

जी तमक जलंधर पैंती प्रोग्राम चकली फरमाइश आई है जी। रोंटी मोहल्ला जुगराओं तो भेजन वाले ने नगीना जैन, दर्शन जैन, मोनू जैन, दीपा जैन, सुनील बिरला, सुच्चा पाठक, प्रदीप पाठक ते उन्होंने बहुत सारे साथी फरमाइश कर रहे हैं जी। इन्होंने अमरिंदर गिल का गाया हुआ गीत सुनाया जाए तो अमरिंदर गिल के गाए हुए गीत न ही सुनना चाहते हैं। नागपुर महाराष्ट्र तो कमल सानी, एम पी पिंकी शानी ते डॉक्टर अफजल मलिक। अगली फरमाइश सानू आई है जी सैक्टर 5 सूर्य नगरी जोधपुर राजस्थान तो भेजन वाले ने रमेश चंद्र चौहान, मोहिनी चौहान, कल्पित चौहान, बेबी गरवी ते बेबी बॉय हिमांश। अगली फरमाइश सानू आई है जी पिंड कुंडाली तो भेजन वाले ने श्री भूमि ते अगली फरमाइश सानू आई है जी झज्जर हरियाणा तो भेजन वाले ने पिट्टू भाटिया ते रीटा भाटिया। अगली फरमाइश सानू आई है जी डबकी रोड ओखला तो भेजन वाले ने सुशीला देवी मंदूकर, सदानंद मंदूकर, कुमार गौरव मंदूकर, आरव ते अर्पिता। अगली फरमाइश सानू आई है जी

0: पश्चिम बंगाल, असम, केरलम, तमिलनाडु और पुदुचेरी में विधानसभा चुनाव की मतगणना जारी है। पश्चिम बंगाल में विधानसभा की 293 सीटों में से 281 के रुझान मिल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने काफी बढ़त बना ली है और वो 184 सीटों पर आगे है। तृणमूल कांग्रेस गठबंधन 94 सीटों पर आगे चल रहा है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अब भवानीपुर सीट पर आगे हो गई हैं। वामदल 2 सीट पर बढ़त बनाए हुए हैं, अन्य 1 सीट पर आगे है। राज्य की फलता सीट पर दोबारा चुनाव कराने का फैसला किया गया है, जहां 21 मई को मतदान होगा। असम में विधानसभा की सभी 126 सीटों के रुझान मिल रहे हैं। सत्तारूढ़ भाजपा गठबंधन ने निर्णायक बढ़त बना ली है और वो 99 सीटों पर आगे है। कांग्रेस गठबंधन 25 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है, अन्य 2 सीट पर आगे हैं। केरलम में विधानसभा की सभी 140 सीटों के रुझान मिल गए हैं। कांग्रेस के नेतृत्व वाले UDF गठबंधन ने निर्णायक बढ़त बना ली है। ये गठबंधन 96 सीटों पर आगे है। LDF 42 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। भाजपा गठबंधन 2 सीटों पर आगे चल रहा है। तमिलनाडु में विधानसभा की सभी 234 सीटों के रुझान मिल गए हैं। अभिनेता विजय जोसेफ की पार्टी TVK 109 सीटों पर आगे है। AIADMK गठबंधन 73 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। DMK गठबंधन 52 सीटों पर आगे है। अधिक जानकारी के लिए चलते हैं चेन्नई में मौजूद हमारे संवाददाता सुशील चंद्र तिवारी के पास। सुशील, कहा जा रहा था कि TVK के विजय इन चुनावों में एक्स फैक्टर साबित होंगे और वही होता दिख रहा है। जीत के प्रति आश्वस्त TVK ने सभी 234 सीटों पर चुनाव लड़ा और अब क्या लग रहा है कि विजय MG रामचंद्रन के इतिहास को दोहराने जा रहे हैं?
1: देखिए कनक, विजय की ये जो विजय है राजनीतिक मैदान में वो जबरदस्त है। जिसे आप कहते हैं कि फिल्मी पर्दे पर ब्लॉकबस्टर रिलीज होती है, वैसे इस बार के राजनीतिक मैदान में, इस बार के चुनाव में उनकी ब्लॉकबस्टर रिलीज हुई है और जबरदस्त सफलता मिल रही है। जो आपने तुलना की MGR से, MGR के बारे में कहा जाता है, वो एक विचारधारा से एक राजनीतिक आंदोलन की उपज थे, लेकिन विजय को ये बात उनसे अलग करती है क्योंकि वो किसी राजनीतिक आंदोलन की उपज नहीं है, लेकिन उनका एक करिश्मा है, युवाओं में उनकी एक अपील है, सोशल मीडिया पे वो छाए हुए हैं। तो इस तरीके से विजय का एक अपना करिश्मा और जो सरकार के खिलाफ एक माहौल था, जो सरकार के खिलाफ लोगों की इच्छा थी, एक बदलाव की जो इच्छा थी, वो बदलाव हमें विजय के रूप में सत्ता के करीब पहुंचता हुआ दिख रहा है। हालांकि अभी तक के जो रुझान है उसके हिसाब से देखें तो वो थोड़ा सा जो जादुई आंकड़ा है 118 का, उससे कुछ पीछे रह सकते हैं, लेकिन अभी ये आने वाले कुछ वक्त समय में स्पष्ट हो जाएगा कि उन्हें कितनी सीटें मिल पाती हैं। जी कनक,
0: जानकारी के लिए धन्यवाद सुशील। पुदुचेरी में विधानसभा की 30 सीटों में से 24 के रुझान मिल गए हैं। AINRC 15 सीट पर आगे है। कांग्रेस गठबंधन 6 सीट पर बढ़त बनाए हुए है, अन्य 3 सीट पर आगे हैं। चुनावों के शुरुआती रुझानों पर भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने आकाशवाणी से बातचीत में कहा कि भाजपा पश्चिम बंगाल में पहली बार सरकार बनाने जा रही है।
2: पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की एक ऐतिहासिक जीत की ओर हम लोग बढ़ चुके हैं और वहाँ पे हम लोग 180 भी पहुँच सकते हैं। ये पहली बार होगा पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है और इसके साथ ही अंग बंग कलिंग, मतलब कि हमारी सरकार बिहार में, हमारी सरकार बंगाल में और हमारी सरकार उड़ीसा में, और पूर्वोत्तर के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। असम में भी अगर आप देखो तो हमारी तीसरी बार सरकार बन रही है।
0: इस बीच भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव डॉक्टर गिरीश ने दावा किया है कि केरलम में उनकी पार्टी के पक्ष में परिणाम आएगा। उन्होंने ये भी दावा किया कि तमिलनाडु में परिणाम DMK पार्टी के पक्ष में रहेंगे। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने कहा कि ये केवल शुरुआती रुझान है और पूरी तस्वीर साफ होने पर ही कुछ कहना उचित रहेगा। 5 राज्यों की 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनावों की मतगणना भी जारी है। ये 7 सीटें गुजरात में उमरेठ, कर्नाटक में बागलकोट और दावणगेरे दक्षिण, महाराष्ट्र में राहुरी और बारामती, नागालैंड में कोरिडांग और त्रिपुरा में धर्मनगर हैं। इनमें से 4 सीटों पर भाजपा बढ़त बनाए हुए है। घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांकों में आज सुबह के कारोबार में 1% की बढ़त देखी गई। कच्चे तेल की कीमतों में नरमी और प्रमुख राज्यों में विधानसभा चुनाव के शुरुआती रुझानों से इन सूचकांकों को मजबूती मिली। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 808 अंक उछलकर 77,721 पर था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: मीडियम वेव 347.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज़ से असी आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र तो बोल रहे हैं। पेश कर रहे हैं प्रोग्राम वस्ते विड़े।

0: नमस्कार।
1: वसदे विड़े प्रोग्राम सुन रहे तमाम दर्शकों का, श्रोतियों का मीनू वालों बहुत बहुत स्वागत।
0: तो मेरे पूनम वालों भी प्यार प्यार नमस्कार। मीनू जी तुहानू नमस्कार। की हाल चाल ने?
1: मैं बहुत वधिया। और पूनम तुसी किद्दां हो, की हाल चाल ने?
0: हाल चाल दुरुस्त ने। तो असी जो अपने स्रोतियां नू मिलते हाँ, अपने भैणों नू मिलते हाँ, तो हाल चाल होर बहुत ही वधिया हो जाते हैं।
1: पूनम, सियाने कहिंदे ने कि जेकर तुसी उही करदे रहोगे ना जो हमेशा तो करदे आए हो, तां तुहानू उही मिलेगा जो हमेशा तो मिलदा आया है।
0: बिल्कुल,
1: बदलाव हमेशा जरूरी हुंदा है, ते हमेशा शुरुआत अपने आप तो करनी चाहिए इंसान नू।
0: बिल्कुल सही कहा तुसी, पर उन्ना ही मुश्किल भी हुंदा है, क्योंकि असी बहुत ही एक कंफर्ट जोन दे विच जो जी रहे हुंदे हां ना, तां बदलाव की आस तां उम्मीद तां कर रहे हुंदे हां, पर उसके लिए जो कोशिश करनी पैंदी है ना, तां फिर बहुत मुश्किल लगता है। हुण तुसी इसलिए एक उदाहरण ही सुन लो कि जेकर असी सोचिए कि असी अपना वजन घटाउणा है, तां असी चाहुंदे तां हर रोज़ आ, पर उसके लिए जीवन शैली दे विच बदलाव करन लग्गियां सानू लगता है कि बहुत मुश्किल है। कल करांगे, परसों करांगे, पर बदलाव करांगे तां ही बदलाव आएगा।
1: जी, और देखो सब तो वड्डी जिहड़ी जंग हुंदी है ना, ओह बिस्तरे तो ही शुरू हुंदी है। जे ओह
0: बिल्कुल
1: आलस ओह जंग असीं जित लई ना, ते इन्नी मेहनत जिम दे विच या पार्क दे विच चलण वेले नहीं कीती जांदी जिन्नी मेहनत उठण वेले कीती जांदी है। सो जे असीं करदे हाँ तां बदलाव बहुत छेती भी नज़र आउंदे ने साडे अंदर, क्योंकि असीं जे जारी रखांगे बदलाव करना और अपनी आदतां नूं, जिवें कि सवेरे उठना, जिम जाना, एक्सरसाइज करनी और खाना पीना रूटीन दा करना, तां बहुत कुछ जीवन शैली दे विच सानूं अपने आप ही सुधार होना नज़र आना शुरू हो जाएगा।
0: बिल्कुल जी। तो सुहाणियां की जेकर असी गल करें तो सुहाणियां की जिहड़ी रूटीन हुंदी है ना, तो हर रोज़ इको ही तरह की हुंदी है। उस दे विच सवेरे उठना, खाना बनाउणा, उस दे दुपहर दे खाने तैयारी करनी, रात दे खाने तैयार करनी, घर दे काम काज करनी, तो कई बार उन्होंने इंज लगन लग जाता है कि कुछ बोरिंग जिंदगी होंगी जा रही है। पर उस जेकर असी कुछ नवापन लैके आवेंगे, कुछ बदलाव लैके आवेंगे, कुछ अपनी पसंद करांगे, तो ही एक रौचकता जीवन दे विच उत्सुकता बनी रहती है।
1: बिल्कुल, खड़ोत नहीं आती जिंदगी दे विच। ते मैनू लगता है कि बदलाव जेकर मौसम दे विच भी हुंदा ना, तां भी खुशहाली लैके आंदा है। ते कल दा जिहड़ा मौसम बदलिया उसने थोड़ा जिहा तापमान नूं सही किया है, इदां लगता है कि गर्मी हले आई नहीं है।
0: तापमान जिहड़ा है ना वह हुण इस तरह का है कि इस दे विच लगातार बदलाव हो रहा है। ये मौसम दे विच जो लगातार बदलाव हो रहे हैं ना, आने वाले जो जलवायु परिवर्तन वड्डे पद्धर ते हो रहे ने, उसकी निशानी है। तो लू पिछले दिनों दे विच काफ़ी लगी, तो हुण आने वाले दिनों दे विच भी लू का जिहड़ा मौसम है इस तरह बनिया रहेगा। पर इस दौरान जो विच हल्की बारिश होंदी है, किते किते ज़्यादा बारिश हो जाती है, तो कदे तेज़ हवावां चलदियां ने, ये सब बदलाव का ही हिस्सा ने। तो कहिंदे ने कि मौसम का बदलाव का सब तो वड्डा सबूत है मौसम का मिजाज है बदलना।
1: और जे ये बदलता रहेगा तो ये सानू भी संकेत देता है कि तुहानू भी कुछ ना कुछ चेंज लियाना चाहिए है। सो जिदा तुसी सवाणियां की गल की कि सवाणियां नू कुछ ना कुछ बदला लियाना चाहिए है, क्योंकि डेली रूटीन तो हर बंदा परेशान हो जाता है। पर अजकल मैं तुहानू दसा पूनम, इदा हो गया है कि जो असं फोन के नाल जुड़ जाने ना, तो बदलाव होर भी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि 90 सैकेंड की रील ना तुहाडे पता नहीं किन्ने घंटे खा जाती है।
0: तो सानू पता भी नहीं चलता कि असं कदों दे स्क्रॉल कर रहे हैं, तो किन्ना समा बीत चुका है। तो इसलिए जिहड़ियां भी असीं सारियां गल्लां कर रहे हो, इसलिए कि बदलाव नूं असीं एक्सैप्ट करिए, जिंदगी च बदलाव लैके आइए, तो उस लई कोशिशां आपणियां लगातार जारी रखिए। तो जिहड़े बदलाव दे एक होर गल है ना, उह ये है कि साडे प्रोग्राम दे विच हर रोज़ नवे नवे बहुत खूबसूरत बदलाव होंदे ने, नवे नवे सिलसिले होंदे ने जिन्हां दे विच जानकारियां होंदियां ने, गीत संगीत हुंदा है, तो हर दिन एक नवां सिलसिला लैके आउंदा है।
1: बिल्कुल सही किया। तो बदलाव की जी गल चली है प्रोग्राम के दस दें कि अज जो सिलसिला होएगा मेहमान बरूहां से हरपिंदर सिंह ते हरलीन कौर होर गलबात सुनोगे, तो ये सिलसिला सुन
0: भी
1: तो
0: नज़र
1: पहला
0: करांगे, पर
1: हाँ,
0: पहला
1: एक
0: एक
1: गीत
0: संगीत में बदला खूबसूरत गीत तो बाद वापस मुड़ते हैं
1: जी।

0: एक जरूरी सूचना। आकाशवाणी जलंधर दी खेतरी समाचार इकाई विच समाचार वाचक ते अनुवादक एनआरटी कैजुअल पंजाबी लई योग उम्मीदवारां तों अर्जियां दी मांग कीती जांदी है। उम्मीदवार ने अंग्रेजी विषय नाल ग्रेजुएशन कीती होवे ते पंजाबी भाषा ते कंप्यूटर च मुहारत होवे। उम्मीदवार दी उमर 20 मई 2026 तक 21 साल तों 50 साल विचकार होनी चाहीदी है। तरजीही तौर ते उम्मीदवार जलंधर या इस दे नेड़ले इलाकें दा वसनीक होवे। चाहवान उम्मीदवार विद्यक योग्यता दे सर्टिफिकेट अते तजर्बे दियां तस्दीकशुदा कापियां नाल वेरवे सेहत बायोडाटा रंगदार पासपोर्ट साइज फोटो अर्जी नाल नत्थी करके भेजण। अर्जियां भेजण लई पता है सहायक निदेशक खेतरी समाचार यूनिट आकाशवाणी केंद्र नेड़े BMC चौक जलंधर। अर्जियां भेजण दी आखरी तरीक 20 मई 2026 है। चोन प्रक्रिया बारे वेरवे सहज जानकारी अते खाली फार्म साड़ी वेबसाइट newsonair.com जा newsonair.gov.in ते जाके वैकेंसी कॉलम विचों प्राप्त कीता जा सकता है। ध्यान रहे ए कोई नियमित रोजगार या नौकरी नहीं है, तुहानु जरूरत दे मुताबिक बुलाया जावेगा।
1: हेलो
2: नमस्कार, भारतीय दूर संचार नियामक प्राधिकरण आपको याद दिलाता है कि आपके मोबाइल नंबर पर असामान्य उपयोग का पता चला है और सेवा आज निलंबित कर दी जाएगी। अधिक जानकारी के लिए कृपया 9 दबाएं।
3: सावधान, अजे ही कोई भी फोन कॉल फ्रॉड हो सकती है। कोई भी बटन दबण तो पहला 1 मिनट ले रुको ते सोचो, पुष्टि जरूर कर लो। सावधान रहो, सुरक्षित रहो।
4: देखो जी, ये जो सारे सुनेहे असीं दिंदे हां, इसका मकसद यही है कि असीं वाकई सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए। तो जो साड़ी रूटीन का सब तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम है ना, कि असीं जदों टेक्नोलॉजी नाल जुड़ते हैं तो उस वेले असीं अवेयर रहिए।
5: बिल्कुल सही गल है पूनम, कई बार असीं इन चीज़ां नूं अनदेखा कर दिंदे हां, पर जदों असीं रेडियो सुनते हैं स्पैशली वाज़े वेड़े प्रोग्राम दे नाल जुड़दे हां तो बहुत सारियां चीज़ां सानूं जागरूक करदियां ने।
4: बिल्कुल जी, बहुत सारे सिलसिले इहो जिहे जागरूकता दे, बहुत सारे सिलसिले सेहत संबंधी, बहुत सारे मनोरंजन संबंधी, अलग अलग विषयां प्रति जो जानकारियां असीं लैके आउंदे हां अलग अलग वर्गां दे लई, अलग अलग उमर दे लई, ਉਹ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਨਾ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਪਿਛਲੇ 90 ਸਾਲ ਤੋਂ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਤੇ 90 ਸਾਲ ਦਾ ਜੋ ਇਹ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਫ਼ਰ ਹੈ, ਉਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦਾ ਸਾਥ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
5: ਬਿਲਕੁਲ, ਸਾਥ ਤੁਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਰਹੀਓ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ।

0: ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਸਦੇ ਵੇੜੇ। ਅਸੀਂ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਤੇ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦਿਨ ਦਾ 1 ਵਜਣ ਵਾਲਾ ਆਹੁਣ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਸਮਾਚਾਰ।
1: ਨਮਸਕਾਰ, ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਸਮਾਚਾਰ ਕੇ ਸਾਥ ਮੈਂ ਕਨਕਲਤਾ। पश्चिम बंगाल, असम, केरलम, तमिलनाडु और पुदुचेरी में विधानसभा चुनाव की मतगणना जारी है। सबसे पहले सबसे बड़े राज्य पश्चिम बंगाल में पिछले 15 साल से सत्तासीन सुश्री ममता बनर्जी की तृणमूल सरकार का जाना रुझानों में तय नजर आ रहा है। विधानसभा की 293 सीटों में से 281 के रुझान मिल गए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने निर्णायक बढ़त बना ली है और वो 191 सीटों पर आ गई।

0: तृणमूल कांग्रेस 96 सीटों पर आगे चल रही है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भवानीपुर सीट पर आगे हैं, जबकि भाजपा के वरिष्ठ नेता शुभेंदु अधिकारी नंदीग्राम से आगे हैं। तमिलनाडु में कोलातूर सीट से मुख्यमंत्री और डीएमके उम्मीदवार एमके स्टालिन पीछे चल रहे हैं, लेकिन उनके पुत्र उदयनिधि स्टालिन चेपक तिरुवल्लिकेणी सीट पर आगे हो गए हैं। अभिनेता और टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय पेरम्बूर और तिरुचिरापल्ली पूर्व दोनों सीटों पर आगे चल रहे हैं। केरल में धर्मादम सीट से मुख्यमंत्री और सीपीएम उम्मीदवार पिनराई विजयन ने बढ़त बना ली है। नेमोम सीट से भाजपा उम्मीदवार राजीव चंद्रशेखर आगे चल रहे हैं। पुदुचेरी में विधानसभा की 30 सीटों में से 3 के परिणाम मिल गए हैं। एक सीट AINRC, एक सीट भाजपा और एक सीट डीएमके ने जीती है। AINRC 8 सीट, भाजपा 1, कांग्रेस गठबंधन 1, ऑल इंडिया अन्ना डीएमके 1 और अन्य 3 सीटों पर आगे हैं। असम में विधानसभा की सभी 126 सीटों के रुझान मिल रहे हैं। भाजपा का राज्य में लगातार तीसरी बार सरकार बनाना तय है। सत्तारूढ़ भाजपा गठबंधन ने निर्णायक बढ़त बना ली है, जो 98 सीटों पर आगे है। कांग्रेस गठबंधन 26 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। अन्य उम्मीदवार 2 सीट पर आगे चल रहे हैं। असम से अधिक जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे संवाददाता राकेश डोले से। राकेश, मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व शर्मा ने एनडीए के लिए 100 से करीब सीटें जीतने का भरोसा व्यक्त किया था पहले ही, जो सही साबित हो रहा है, क्या कहना है आपका?
1: जी, आप सही बोल रहे हैं कि एनडीए जो है लगभग 100 की सीटें जो है ना वहाँ पर आगे चल रही है यहाँ पर। और मेजर सीट्स की बात करें जहाँ पे कॉन्टेस्ट होना, जो कांग्रेस की जो मेन कैंडिडेट थे जैसे गौरव गोगोई जोरहाट से, वो कुछ ट्रेलिंग है, वो कुछ पीछे चल रहे हैं 16,000 वोटों से,
0: जबकि उन्होंने कहा था कि वो 10 साल बाद सत्ता में वापसी करेगी कांग्रेस।
1: हाँ, लेकिन वो खुद यहाँ पे आफ्टर 10 राउंड के बाद, जो 14 राउंड होंगे, 10 राउंड के बाद वो खुद 16,000 वोट से पीछे हैं। जो हितेंद्र नाथ वहाँ के जो बीजेपी के सिटिंग एमएलए है, उनका घर माना जाता है, वहाँ पे गया गौरव गोगोई, वहाँ से लड़े, एंड ही वाज एक्सपेक्टिंग कि बातें भी चल रही थी गौरव गोगोई विल विन द सीट, बट द थिंग इज यहाँ पे थोड़े अलग ही जा रहे हैं।
0: राकेश जी, ये बताइए,
1: अखिल गोगोई की भी बात करें, अखिल गोगोई जो है, अखिल गोगोई जो एक लीडर जो है ऑपोजिशन के मेन वन ऑफ द लीडर, जो अखिल गोगोई वो मार्जिनली भी आगे हैं, जो बट इट इज इन द फिफ्थ राउंड में है। यहाँ पे 20 राउंड होंगे शिवसागर कॉन्स्टिट्यूएंसी में, वो मार्जिनली आगे हैं 900 वोट्स में, और वहाँ आगे जाना बाकी है। और जो बहुत डिस्कशन का जो था एक टॉपिक, दिसपुर कॉन्स्टिट्यूएंसी जहाँ प्रद्युत बोर्दोलोई जो कांग्रेस के नेता थे, जस्ट इलेक्शन से पहले उन्होंने दिसपुर ज्वाइन, बीजेपी ज्वाइन किया, बीजेपी ज्वाइन करने में उनको टिकट दिए गए, बातें चल रही थी कि लोग उनको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। बात यहाँ पर देखा जाए तो ओवर 35,000 से भी ज्यादा वोटों से आगे हैं। मेरा
0: धन्यवाद राकेश
1: जी।
0: चुनावों के शुरुआती रुझानों पर भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने आकाशवाणी से बातचीत में कहा कि भाजपा पश्चिम बंगाल में पहली बार सरकार बनाने जा रही है। इस बीच भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी महासचिव डॉ. गिरीश ने दावा किया है कि केरलम में उनकी पार्टी के पक्ष में परिणाम आएगा। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने कहा कि ये केवल शुरुआती रुझान है और पूरी तस्वीर साफ होने पर ही कुछ कहना उचित होगा। 5 राज्यों की 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनावों में 2 के परिणाम मिल गए हैं। ये 7 सीटें गुजरात में उमरेठ, कर्नाटक में बागलकोट और दावणगेरे दक्षिण, महाराष्ट्र में राहुरी और बारामती, नागालैंड में कोरिडांग और त्रिपुरा में धर्मनगर हैं। इनमें से भाजपा ने 2 सीटें जीत ली हैं और 2 पर बढ़त बनाए हुए है। धर्मनगर सीट से भाजपा उम्मीदवार जहर चक्रवर्ती विजयी रहे। घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांकों में आज 0.5% की बढ़त दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 394 अंक बढ़कर 77,308 पर, जबकि निफ्टी 121 अंक की वृद्धि के साथ 24,118 पर था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: मीडियावेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज़ ते असी आकाशवाणी के जलंधर केंद्र तो बोल रहे हैं। दिन के 1:05 वज रहे हैं। आओ हुण तुहानूं साढ़े 3 विच प्रसारित होने वाले बाकी के रहिंदे प्रोग्राम्स ते उन्हां दा प्रसारण समां दस दईए।

रात 7:40 ते विविधा प्रोग्राम च एक हिंदी वार्ता सुनाई जाएगी। मेरी नई कहानी वार्ताकार होंगे हरदीप सबरवाल। इस वार्ता तो बाद कुछ गजलां भी समाप्त फरमाओगे। रात 8 सुनोगे प्रोग्राम जिंदगी हसीन है ते रात 9:30 पंजाबी नाटक सुनवाया जाएगा। रात 10:02 ते कवि गोष्ठी का आनंद मानोगे ते फिर रात 10:30 कुछ गजलां समात फरमाओगे। मुख्य समाचार ते समाचार अपने निर्धारित समय ते वारोवार पेश किए जाएंगे।

0: अवतार सिंह बिलिंग दे नावल होया देश पराया ते आधारित ए रेडियो लड़ीवार नाटक तुसी सुनोगे हर सोमवार शाम 6:30 बजे देहाती प्रोग्राम
1: सोचा विच मैं हुन फोलां की खोया की पाया
0: लड़ीवार नाटक होया।

0: ਸਾਈਬਰ ਫਰਾਡ ਜਾਂ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ 1930 ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਡਾਇਲ ਕਰੋ ਜਾਂ www.cybercrime.gov.in ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਓ।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: आदाब, ये
1: आदाब,
0: आकाशवाणी है,
1: ये
0: खबरों के
1: आकाशवाणी
0: साथ
1: है,
0: मैं कौनैन
1: खबरों के
0: हैदर।
1: साथ मैं कौनैन हैदर।
0: पहले इस वक्त की खास
1: पहले
0: खास
1: इस वक्त
0: खबरें।
1: की खास खास
0: मगरबी
1: खबरें।
0: बंगाल में
1: मगरबी
0: बीजेपी
1: बंगाल में
0: शानदार
1: बीजेपी
0: कामयाबी
1: की
0: की
1: तरफ
0: तरफ
1: बढ़
0: बढ़
1: रही
0: रही
1: है।
0: है। की तरफ
1: दो
0: बढ़
1: सौ
0: रही
1: तिरानवे
0: है।
1: सीटों में
0: दो
1: से
0: सौ तिरानवे
1: बीजेपी
0: सीटों
1: को
0: में
1: एक
0: से
1: सौ
0: बीजेपी
1: तिरानवे
0: को एक सौ
1: सीटों पर सबका
0: तिरानवे
1: हासिल
0: सीटों
1: है,
0: पर सबका
1: जबकि
0: हासिल है।
1: तृणमूल कांग्रेस
0: जबकि तृणमूल
1: छियानवे
0: कांग्रेस
1: सीटों पर आगे
0: छियानवे
1: चल रही
0: सीटों पर
1: है।
0: आगे चल रही
1: आसाम
0: है।
1: में राय दहिंदगान ने
0: आसाम
1: फिर
0: में
1: से
0: राय
1: बीजेपी
0: दहिंदगान ने
1: में
0: फिर से बीजेपी
1: एतमाद
0: में
1: का इजहार किया
0: एतमाद
1: है।
0: का इजहार किया है।
1: तमिलनाडु में अदाकार से
0: तमिलनाडु में
1: सियासतदान
0: अदाकार
1: बनने
0: से
1: वाले विजय की
0: सियासतदान बनने
1: पार्टी
0: वाले विजय की
1: टीवीके ने
0: पार्टी
1: शानदार
0: टीवीके
1: शुरुआत
0: ने
1: की है।
0: शानदार शुरुआत
1: हुकमरा
0: की है।
1: डीएमके तीसरे
0: हुकमरा
1: मुकाम पर
0: डीएमके
1: चली
0: तीसरे
1: गई है।
0: मुकाम पर
1: वजीर
0: चली
1: आला
0: गई है।
1: एमके
0: वजीर
1: स्टालिन
0: आला एम के
1: पीछे चल
0: स्टालिन
1: रहे हैं।
0: पीछे चल रहे हैं।
1: केरलम में कांग्रेस
0: केरलम
1: की
0: में
1: जेर कयादत
0: कांग्रेस की
1: यूडीएफ
0: जेरे
1: बाएं
0: कयादत
1: बाजू
0: यूडीएफ
1: महाज के
0: बाएं बाजू
1: एलडीएफ को
0: महाज
1: पीछे
0: के
1: छोड़ते
0: एलडीएफ को
1: हुए
0: पीछे छोड़ते हुए
1: वाजे
0: वाजे
1: अक्सरियत
0: अक्सरियत
1: की
0: की
1: समत
0: समत
1: बढ़
0: बढ़
1: रही
0: रही
1: है।
0: है। पुदुचेरी में एनडीए फिर
1: पुदुचेरी
0: से
1: में
0: इक्तदार
1: एनडीए
0: हासिल
1: फिर से
0: करने की
1: इक्तदार
0: जानेब
1: हासिल
0: गामजन
1: करने
0: है।
1: की जानेब
0: और
1: गामजन है।
0: असेंबली जिमनी
1: और असेंबली
0: इंतखाबात
1: जिमनी
0: में बीजेपी ने
1: इंतखाबात
0: त्रिपुरा
1: में

0: बीजेपी
1: और
0: ने
1: नागालैंड में,
0: त्रिपुरा और
1: एक एक
0: नागालैंड
1: सीट
0: में
1: जीती है,
0: एक एक सीट
1: जबकि
0: जीती है,
1: जबकि
0: गुजरात
1: महाराष्ट्र
0: और कर्नाटक में उसे सबकत हासिल है।
1: अब खबरें तफसील से। चार रियासतों और मरकज के ज़ेर इंतज़ाम इलाके पुदुचेरी में वोटों की गिनती के इब्तदाई रुझानात सामने आ रहे हैं। ताज़ा रुझान के मुताबिक मगरबी बंगाल में बीजेपी ने शानदार सबकत हासिल कर ली है, जबकि तमिलनाडु में अदाकार सी जोसेफ विजय की सरबराही वाली नई पार्टी तमिलगा वेतरी कड़गम टीवी के सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभरी है, जबकि अपोजिशन की ऑल इंडिया अन्ना डीएम के दूसरे मकाम पर है और हुक्मरान डीएम के पार्टी तीसरी अपोजिशन पर चली गई है। केरलम में कांग्रेस की जेर क़यादत यूडीएफ आगे चल रहा है, जबकि आसाम में हुक्मरान बीजेपी ने बड़ी सबकत हासिल कर ली है। मगरबी बंगाल में आज असेंबली के 293 सीटों के लिए वोटों की गिनती की जा रही है और बीजेपी को 193 सीटों पर सबकत हासिल है, जबकि हुक्मरान तृणमूल कांग्रेस 96 सीटों पर आगे चल रही है। तमिलनाडु में सभी 234 सीटों के रुझानात सामने आ गए हैं। नई पार्टी टीवीके ने 111 सीटों पर सबकत हासिल करके शानदार शुरुआत की है। अपोजिशन ऑल इंडिया अन्ना डीएमके को 55 हलकों में सबकत हासिल है, जबकि हुक्मरान डीएमके पार्टी 49 सीटों पर सबकत के साथ तीसरे मकाम पर है। आसाम में 126 सीटों में से 7 सीटों के नतीजों का ऐलान हो चुका है। बीजेपी ने 6 सीटें जीती हैं और 73 पर उसे सबकत हासिल है, जबकि उसकी इत्तेहादी आसाम गण परिषद को 1 सीट पर कामयाबी मिली है और 8 सीटों पर उसके उम्मीदवार आगे चल रहे हैं। कांग्रेस को 24 सीटों पर सबकत हासिल है, जबकि 10 सीटों पर बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट के उम्मीदवार आगे चल रहे हैं। केरलम में 140 सीटों में से कांग्रेस ने अब तक 5 सीटें जीती हैं और 57 हलकों में उसे सबकत हासिल है, जबकि हुक्मरान सीपीएम को 4 सीटों पर कामयाबी मिली है और 23 सीटों पर वो आगे चल रही है, जबकि उसकी इत्तेहादी सीपीआई को 9 सीटों पर सबकत हासिल है। केरला कांग्रेस 7 पर और बीजेपी 2 सीटों पर आगे चल रही है। पुदुचेरी से भी नतीजे मिल गए हैं। अब तक 13 नतीजों का ऐलान किया गया है। हुक्मरान एआईएनआरसी ने 6 सीटें जीती हैं और 4 पर उसे सबकत हासिल है। कांग्रेस को 1 सीट मिली है और 6 सीटों पर वो आगे चल रही है। डीएमके पार्टी ने 1 सीट जीती है और 3 पर सबकत हासिल है। बीजेपी को 2 सीटें मिली हैं और 2 पर ही उसके उम्मीदवार आगे चल रहे हैं। अब ताज़ा मालूम के लिए हम अपने नामानिगार सुशील चंद्र तिवारी से बात करते हैं। जी सुशील, बताइए क्या ताजा सूरत हाल है
2: हिंदुस्तान के। देखिए कानून, जुनूबी हिंदुस्तान के इस सूबे में जो इस वक्त तक हालात नजर आ रहे हैं, ताजा हालात जिन्हें कहें, तो जो फिल्म स्टार विजय हैं उनकी पार्टी टीवीके वो जबरदस्त जीत हासिल करती नजर आ रही है और जैसा कि रुझानों से साफ नजर आ रहा है कि वो 100 से ज्यादा सीटें हासिल करती हुई दिख रही है। हालांकि यहां जो अक्सरियत है वो 118 सीटों पर तय होती है, लेकिन अभी वो थोड़ा सा पीछे चल रहे हैं, लेकिन उम्मीद है कि जब कुछ शाम तक नतीजे आएंगे पूरी तरह से, तब जो है तस्वीर ज़्यादा साफ हो पाएगी। विजय की एंट्री जो है वो यहाँ के सियासी जो माहौल है उसमें बहुत ज़बरदस्त तरीके से रही है, ये साफ नज़र आ रहा है कि लोगों ने बदलाव को वोट दिया है। जी,
1: इस मालूमात के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बीजेपी के तर्जुमान तोहिन सिन्हा ने कहा है कि असेंबली इंतखाबात के इब्तदाई रुझानात बीजेपी के हक में हैं और पार्टी जबरदस्त फर्क के साथ आसाम और मगरबी बंगाल में कामयाबी हासिल करने की जानिब गामजन है। आकाशवाणी न्यूज से बात करते हुए जनाब सिन्हा ने कहा कि मगरबी बंगाल के अवाम ने तृणमूल कांग्रेस की सियासत को मुस्तरद कर दिया है। बीजेपी के एक और तर्जुमान सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि मगरबी बंगाल में असेंबली इंतखाबात के रुझान बीजेपी के हक में सामने आ रहे हैं। जनाब त्रिवेदी ने कहा कि इनसे वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के दूरंदेशी पर मबनी नज़रिए और रियासत में बीजेपी कारकुनों की अनथक कोशिशों की अक्कासी होती है। बीजेपी के लीडर जीवीएल नरसिम्हा राव ने असेंबली इंतखाबात में तारीखी मैंडेट देने पर आसाम और मगरबी बंगाल के लोगों के तई तशक्कुर का इजहार किया। मगरबी बंगाल, आसाम, पुदुचेरी, तमिलनाडु और केरलम में असेंबली इंतखाबात के इब्तदाई रुझानात के तनाजुर में बीजेपी के तर्जुमान शहजाद पूनावाला ने कहा है कि बीजेपी मगरबी बंगाल में तारीखी कामयाबी की तरफ बढ़ रही है। आकाशवाणी न्यूज से बात करते हुए उन्होंने कहा कि बीजेपी पहली बार मगरबी बंगाल में सरकार बनाने जा रही है। जनाब पूनावाला ने यह भी कहा कि बीजेपी आसाम में लगातार तीसरी बार सरकार बनाएगी। उन्होंने कहा कि तमिलनाडु में

0: एनडीए और टीवीके पार्टी के दरमियान है।
1: पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की एक ऐतिहासिक जीत की ओर हम लोग बढ़ चुके हैं और वहाँ पे हम लोग 180 भी पहुँच सकते हैं। ये पहली बार होगा पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है और पूर्वोत्तर के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। असम में भी अगर आप देखो तो हमारी तीसरी बार सरकार बन रही है।
0: इधर कांग्रेस के तर्जुमान पवन खेड़ा ने इब्तदाई रुझानात पर तबसरा करते हुए कहा कि ये शुरुआती रुझानात हैं और जल्द ही पूरी तस्वीर वाज़े हो जाएगी और इसके बाद ही नतीजों के बारे में कुछ कहना मुनासिब होगा।
2: दो ढाई घंटे बाद जब स्थिति और क्लियर हो जाएगी, स्पष्ट हो जाएगी, तब बात करने में ज्यादा आनंद आएगा। हर राज्य के लिए मैं कह रहा हूँ कि अभी दो राउंड हुए या तीन राउंड हुए होंगे, 20 राउंड बाकी हैं हर असेंबली में, तो इतनी जल्दी कोई टिप्पणी करना उचित नहीं होगा।
0: ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। आंध्र प्रदेश के वजीर आला एन चंद्रबाबू नायडू ने कहा है कि असेंबली इंतखाबात के ताज़ा रुझानात में कौमी जमहूरी इत्तेहाद एनडीए की कारकर्दगी से जाहिर होता है कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी की क़यादत में लोगों का एतमाद बढ़ता जा रहा है। पांच रियासतों के सात असेंबली हलकों में ज़िमनी इंतखाबात के वोटों की गिनती का सिलसिला भी जारी है। इनमें कर्नाटक और महाराष्ट्र में दो दो असेंबली हलके और गुजरात, त्रिपुरा और नागालैंड में एक एक असेंबली हलका शामिल है। ताज़ा नतज के मुताबिक बीजेपी ने दो सीटें जीत ली हैं और तीन हलकों में उसे सबकत हासिल है। कांग्रेस और नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी एक एक सीट पर आगे चल रही हैं। त्रिपुरा के धर्मानगर हलके में बीजेपी के जहर चक्रवर्ती ने कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट के अमिताभ दत्ता को 18,290 वोटों के फर्क से हरा दिया। नागालैंड के कोरिदांग असेंबली हलके में बीजेपी के दाओचिर आई इमचेन ने आज़ाद उम्मीदवार तोशिकाबा को 3,123 वोटों से शिकस्त दी। कर्नाटक में बीजेपी के श्रीनिवास टी दास करियप्पा देवनागरी साउथ हलके में आगे चल रहे हैं, जबकि बागलकोट में कांग्रेस उम्मीदवार उमेश हुलप्पा मेती 17,000 से ज़्यादा वोटों से आगे चल रहे हैं। आईपीएल क्रिकेट में आज मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में मुंबई इंडियंस का मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। वहीं कल रात अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में गुजरात टाइटंस ने पंजाब किंग्स को 4 विकेट से हरा दिया। गुजरात टाइटंस को 164 रन का जीत का निशाना मिला था, जिसे उसने 6 विकेट के नुकसान पर हासिल कर लिया। गुजरात के लिए साई सुदर्शन ने सबसे ज़्यादा 57 रन बनाए। एक दूसरे मैच में हैदराबाद के राजीव गांधी बैन अल-अक़वामी स्टेडियम में कोलकाता नाइट राइडर्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 7 विकेट से हरा दिया। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। मगरबी बंगाल में बीजेपी शानदार कामयाबी की तरफ बढ़ रही है। 293 सीटों में से बीजेपी को 193 सीटों पर सबकत हासिल है, जबकि तृणमूल कांग्रेस 96 सीटों पर आगे चल रही है। आसाम में राय दहिंदगान ने फिर से बीजेपी में एतमाद जाहिर किया है। तमिलनाडु में अदाकार से सियासतदान बनने वाले बीजेपी की पार्टी टीवीके ने शानदार शुरुआत की है। हुक्मरान डीएम के तीसरे मकाम पर चली गई है। वजीर आला एम के स्टालिन पीछे चल रहे हैं। केरलम में कांग्रेस के जेर क्यादत यूडीएफ बाएं बाजू के एलडीएफ को पीछे छोड़ते हुए वाज़े अक्सरियत की समत बढ़ रही है। पुदुचेरी में एनडीए फिर से इक्तदार हासिल करने की जानिब गामजन है और असेंबली ज़िमनी इंतखाबात में बीजेपी ने त्रिपुरा और नागालैंड में एक एक सीट जीती है। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
3: ਅਸੀਂ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਤੇ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਮਾਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਓ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਤੋਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਫੌਜੀ ਵੀਰਾਂ ਲਈ, ਤੇ ਲਓ ਸੁਣੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਅਗਲਾ ਗੀਤ।

0: ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਫੌਜੀ ਵੀ ਨਾਲੀ। ਅਸੀਂ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦਿਨ ਦੇ 2:15 ਵਜਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹੀ ਪਲਾਂ ਬਾਅਦ ਆਓ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਦੁਪਹਿਰ ਸਮਾਚਾਰ।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनक लता। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी भारी जीत की ओर अग्रसर। 293 सीटों में से 193 सीटों पर आगे। तृणमूल कांग्रेस की 93 सीटों पर बढ़त। असम में भाजपा तीसरी बार सत्ता में आने को तैयार। तमिलनाडु में अभिनेता से नेता बने विजय की पार्टी टीवीके की अपने पहले ही चुनाव में जबरदस्त सफलता। सत्तारूढ़ डीएमके तीसरे स्थान पर। मुख्यमंत्री एम के स्टालिन पीछे चल रहे हैं। केरलम में कांग्रेस के नेतृत्व वाला यूडीएफ स्पष्ट बहुमत की ओर। पुदुचेरी में एनडीए की सत्ता में फिर वापसी। विधानसभा उपचुनावों में भाजपा ने त्रिपुरा, नागालैंड और गुजरात में एक एक सीट जीती। अब समाचार विस्तार से।

0: पश्चिम बंगाल, असम, केरलम, तमिलनाडु और पुदुचेरी में विधानसभा चुनाव की मतगणना के रुझानों से भविष्य की राजनीतिक दिशा तय होने के संकेत मिल रहे हैं। पश्चिम बंगाल और केरलम में सत्ता परिवर्तन तय नजर आ रहा है। पश्चिम बंगाल में भाजपा को ऐतिहासिक जीत मिलने जा रही है और वो पहली बार इस पूर्वी राज्य में सरकार बनाएगी। पश्चिम बंगाल में विधानसभा की 293 सीटों में से 292 के रुझान मिल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने काफी बढ़त बना ली है और वो 193 सीटों पर आगे है। तृणमूल कांग्रेस गठबंधन 93, AJUP 2, AISF 2, कांग्रेस 1 और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी 1 सीट पर आगे है। राज्य की फलता सीट पर दोबारा चुनाव कराने का फैसला किया गया है। यहाँ 21 मई को मतदान होगा। पश्चिम बंगाल से अधिक जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे संवाददाता कल्याण लाहा से। कल्याण, भाजपा पश्चिम बंगाल में जीत की ओर अग्रसर है। पश्चिम बंगाल की टीएमसी से मुक्ति का नारा अब वास्तविकता में बदलता दिख रहा है। टीएमसी के पिछड़ने के क्या प्रमुख कारण हो सकते हैं?
1: देखिए, हम अभी जो दिख रहे हैं ग्राउंड में, बीजेपी बहुत सारे सीट में अभी आगे है और जो आप बोल रहे हैं क्या क्या कारण हो सकता है, देखिए लॉ एंड ऑर्डर एक बहुत बहुत बड़ा सिचुएशन है इधर और आर्टिकल जो इंसिडेंट है हुआ है उसके बाद उसके सेम टाइप का बहुत सारे इंसिडेंट है। लैक ऑफ जॉब है और आपका जो डिससेटिस्फेक्शन है जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई है उस उनके अंदर जो डिससेटिस्फेक्शन है और आपको जैसे मैं पहले बोल रहा था जॉब गवर्नमेंट सेक्टर में कोई भी जॉब ऐसा नहीं है, रिक्रूटमेंट नहीं हो रहा है और आपका जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है जो उसका जिक्र मैं पहले किया था वो जो आम जनता है उनका गवर्नमेंट के ऊपर जो विश्वास था, जो फेथ है वो पूरी तरह से ध्वस्त हो गया है। इसका जो रिजल्ट आपको अभी ग्राउंड में दिख रहा है, बीजेपी बहुत सारे सीट में अभी लीडिंग है और एक थम्पिंग मेजोरिटी के साथ सामने आएगा।
0: जानकारी के लिए धन्यवाद कल्याण। केरलम में कांग्रेस के नेतृत्व वाला यूडीएफ गठबंधन सत्तारूढ़ एलडीएफ से बहुत आगे निकल गया है। वहां विधानसभा की सभी 140 सीटों में से 9 के परिणाम मिल गए हैं। 6 सीटें कांग्रेस, 2 मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी और 1 सीट IUML ने जीती हैं। पुतुपल्ली सीट कांग्रेस के चांडी ओमन, हरिपद सीट रमेश चन्नीतला, नीलांबुर सीट आर्यदन शौकत, त्रिशूर सीट राजन जे पल्लन और कोल्लम सीट बिंदु कृष्णा ने जीती। अलतूर से मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के TM शशि विजयी रहे। रुझान इस प्रकार है, कांग्रेस 54, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी 26, IUML 22 और CPI 9 पर आगे। पुदुचेरी में परिणाम और रुझानों में AINRC की सत्ता बरकरार रहने के साफ संकेत हैं। भाजपा प्रवक्ता तुहिन सिन्हा ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में कहा कि विधानसभा चुनावों के शुरुआती रुझान भाजपा के पक्ष में हैं और पार्टी असम तथा पश्चिम बंगाल में भारी बहुमत से जीत हासिल करने जा रही है। श्री सिन्हा ने कहा कि पश्चिम बंगाल की जनता ने तृणमूल कांग्रेस की राजनीति को नकार दिया है। भाजपा चुनाव के रुझान भाजपा के पक्ष में उभर रहे हैं।
2: पश्चिम बंगाल में जो रुझान दिख रहे हैं वो दर्शा रहे हैं कि बंग भूमि में राष्ट्रवाद की तरंग उठी है और रुझान दिखा रहे हैं कि वो निरंतर एक ज्वार में परिवर्तित हो रही है और जब वो परिणाम में परिवर्तित होंगे तो वो सुनामी के रूप में दिखाई पड़ेगी। 12 वर्षों के सतत प्रयत्न और हमारे केंद्रीय नेतृत्व की दूरदृष्टि के साथ, कार्यकर्ताओं के संघर्ष बलिदान के साथ हम इस मुकाम तक पहुंचते हैं। असम में 2011 के चुनाव में हमारी 3-4 सीट, आज लगातार तीसरी बार सरकार है, ये अपने आप में दिखाता है कि पूर्वोत्तर में कितना बड़ा बदलाव आया है।
0: भाजपा नेता GVL नरसिम्हा राव ने विधानसभा चुनावों के रुझानों में ऐतिहासिक जनादेश देने के लिए असम और पश्चिम बंगाल की जनता द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और उनके विकास मॉडल को वोट देना बताया है। भाजपा नेता रवि त्रिपाठी ने कहा है कि पश्चिम बंगाल की जनता ने भाजपा को स्पष्ट जनादेश दिया है। भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने आकाशवाणी से विशेष बातचीत में कहा कि भाजपा पश्चिम बंगाल में पहली बार सरकार बनाने जा रही है। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने कहा कि ये केवल शुरुआती रुझान है और पूरी तस्वीर साफ होने पर ही कुछ कहना उचित होगा। असम में भाजपा तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है। असम में विधानसभा की 126 सीटों में से 2 के परिणाम मिले हैं। बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट के चरण बोरो ने मजबूत सीट जीती है। धेमाजी सीट से सत्तारूढ़ भाजपा के डॉ रनुर पेगू विजयी रहे हैं। भाजपा 78, कांग्रेस 24, बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट 9, असम गण परिषद 8, AIUDF 2 और अन्य 3 सीट पर आगे हैं। असम से अधिक जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे संवाददाता राकेश डोले से। राकेश, असम में एनडीए अपने उम्मीदों के अनुरूप लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है।

0: असम सोनम लेता मोर्चा पिछड़ गया है, खुद गौरव गोगोई हार गए हैं। श्री गोगोई की हार के पीछे क्या उनके परिवार पर लगे आरोप भी एक कारण है?
1: जो परिवार आप जो बोल रहे हैं, परिवार पर लगे आरोप कारण है, ये एग्जैक्टली बता पाना मुश्किल है। बट द थिंग इज दैट जो वेलफेयर स्कीम्स और जिस तरह की चीजें एनडीए गवर्नमेंट ला रही थी यहाँ पर, दिस कैन बी अ बिग रीजन, ये बहुत बड़ा एक रीजन बन सकता है,
0: खासकर महिलाओं के लिए जो वहाँ चलाए गए थे कार्यक्रम
1: जी,
0: और उनका भी योगदान रहा है जीत में।
1: जी आप अरुणोदय की बात कर रहे हैं, वो बहुत ही ज्यादा पॉपुलर एक स्कीम है है। अभी बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में भी कहा है कि वो जो 1250 रुपीज मिल रहे थे मंथली, वो बढ़ा के 3000 कर देंगे। फिर आप हम लोग अब जब देखेंगे लास्ट इलेक्शन के साथ कंपेयर करेंगे, अपर असम गढ़ था बीजेपी के लिए, वहाँ पे 36 सीट में से उन लोगों ने एनडीए ने जीता था अराउंड 31, वो वहाँ पे वो गढ़ था। पर अभी आप इस तरह के रुझान देख रहे हैं पूरे असम में, बीजेपी जो है लीड लेकर बैठे हुए हैं, दो तो जीत चुके हैं, फिर एक बीपीएफ जो उन्हीं के घटक पार्टी है, जो अलायंस पार्टी है बीटीआर रीजन से, वो भी एक जीत चुकी है। तो इन टोटल 80 बीजेपी जो है 78 सीट पे लीडिंग है अभी, और कांग्रेस मात्र 23 सीट में।
0: जानकारी के लिए धन्यवाद राकेश। 5 राज्यों की 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनावों में से 3 के परिणाम मिल गए हैं और तीनों ही भाजपा के खाते में गए हैं। गुजरात की उमरेड सीट भाजपा उम्मीदवार हर्ष दभाई गोविंद भाई परमार ने जीती। कर्नाटक की बागलकोट से कांग्रेस उम्मीदवार उमेश हुलाप्पा मेती और दावणगेरे दक्षिण से कांग्रेस उम्मीदवार समर्थ शमनूर मल्लिकार्जुन आगे हैं। महाराष्ट्र की राहुरी सीट से भाजपा उम्मीदवार अक्षय शिवाजीराव करदेले और बारामती सीट से पूर्व उप मुख्यमंत्री अजित पवार की पत्नी तथा राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी उम्मीदवार सुनेत्रा अजित वार बढ़त बनाए हुए हैं। नागालैंड की कोरिडांग सीट भाजपा उम्मीदवार दाउचीर आई इमचेन ने जीती। त्रिपुरा की धर्मनगर सीट से भाजपा उम्मीदवार जाहर चक्रवर्ती विजयी रहे। नागालैंड में भाजपा उम्मीदवार दाउचीर आई हिमचेन ने 28 कोरिडांग विधानसभा सीट पर हुए चुनाव में 3123 वोटों से जीत हासिल की। उन्हें 7317 वोट मिले। उन्होंने निर्दलीय प्रतिद्वंदी तोशिकाबा को हराया, जिन्हें 4194 वोट मिले। इस सीट के लिए कुल 6 उम्मीदवार मैदान में थे। निर्दलीय उम्मीदवार इमती वापांग को 3633 वोट मिले, जबकि राष्ट्रीय जनता पार्टी के आई अबेन जांग को 3219 वोट मिले। निर्दलीय उम्मीदवार इमचाटोबा इमचेन को 147 वोट मिले। वहीं कांग्रेस उम्मीदवार टी चालुकुम्बा आओ को सबसे कम 144 वोट मिले। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। तमिलनाडु में विधानसभा की सभी 234 सीटों के रुझान मिल गए हैं। अभिनेता विजय जोसेफ की पार्टी टीवीके ने सभी को चौंकाते हुए 112 सीटों पर बढ़त बना ली है। AIADMK 58, DMK 47, PMK 5, कांग्रेस 4, CPI 2, भाजपा 1 और अन्य 4 सीट पर आगे हैं। चेन्नई से अधिक जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे संवाददाता सुशील चंद्र तिवारी से। सुशील, वर्ष 2024 में बनी अभिनेता विजय की टीवीके पार्टी की अप्रत्याशित जीत ने तमिलनाडु में वर्षों से चले आ रहे डीएमके या AIADMK की सरकार बनाने की परंपरा को तोड़ दिया है। इस जीत के पीछे क्या प्रमुख वजह है?
2: देखिए कनक, जो आप अगर इसकी वजह के उसमें जाएंगे तो पहली चीज तो ये है कि मतदाता ने एक नए सिरे से, खास तौर पे नए मतदाता जो यंग वोटर्स हैं और युवा मतदाता हैं, नए यंग वोटर्स यानी फर्स्ट टाइम वोटर्स जो पहली बार वोट डाल रहे थे वो लगभग 14 लाख के आसपास थे और 1 करोड़ से ज्यादा युवा मतदाता 30 से कम की उम्र के थे। इनके बीच विजय का एक करिश्मा था, एक जादू था। उसके साथ ही जो सरकार के खिलाफ माहौल था, विजय ने उस माहौल को पूरी तरह से भुनाया और जयललिता के जाने के बाद इस तरीके का एक फिल्म स्टार या उस तरीके के करिश्मे वाले विपक्ष के नेता की कमी महसूस की जा रही थी, उस कमी को भरने में विजय जो है वो कामयाब होते नजर आ रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने लोगों से ये वादा भी किया था, उन्होंने कोई द्रविड़ियन पॉलिटिक्स के जो सिंबल्स थे उनको भी अपने साथ अपने प्रचार में जरूर कैरी किया, लेकिन उसका कहीं पर खुले तौर पर सामने जिक्र नहीं आया। वो किसी विचारधारा से प्रेरित होकर के नहीं आए, वो किसी आंदोलन की उपज नहीं थे, लेकिन सरकार के खिलाफ गुस्सा और नई जनरेशन, यंग जनरेशन, जेंजी जो है और युवा जो है, उनकी नई सोच ने तमिलनाडु में ये राजनीतिक परिवर्तन दिखाया है जो द्रविड़ियन राजनीति से अलग दिखता जाता हुआ नजर आ रहा है।
0: धन्यवाद सुशील। ये समाचार आकाशवाणी से

0: प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @HIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जमैका में भारतीय समुदाय के साथ चर्चा की है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि जमैका के प्रधानमंत्री ने भारतीय समुदाय के योगदान की सराहना की। दोनों पक्षों के बीच खासकर बुनियादी ढांचे, मानव विकास और तकनीक आधारित शासन तथा उद्यमिता पर विमर्श हुआ। दोनों नेताओं ने भारत जमैका संबंधों में हाल के घटनाक्रमों पर भी चर्चा की। डॉ जयशंकर जमैका, सूरीनाम तथा त्रिनिदाद और टोबैगो की यात्रा पर हैं। चार राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा चुनावों के परिणाम घोषित होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम नई दिल्ली स्थित भाजपा मुख्यालय में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। अब बात करते हैं भाजपा मुख्यालय में मौजूद हमारे संवाददाता दीपेंद्र से। दीपेंद्र, इन चुनावों में भाजपा के प्रदर्शन से पार्टी मुख्यालय में खुशी का माहौल होगा, क्या देख रहे हैं आप वहाँ?
1: बिल्कुल कनक, असम और पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के प्रदर्शन को देखते हुए पार्टी मुख्यालय में इस वक्त जश्न का माहौल शुरू हो चुका है। पार्टी कार्यकर्ता

0: स्थित भाजपा मुख्यालय में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। अब बात करते हैं भाजपा मुख्यालय में मौजूद हमारे संवाददाता दीपेंद्र से। दीपेंद्र, इन चुनावों में भाजपा के प्रदर्शन से पार्टी मुख्यालय में खुशी का माहौल होगा, क्या देख रहे हैं आप वहाँ?
1: बिल्कुल कनक, असम और पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के प्रदर्शन को देखते हुए अब पार्टी मुख्यालय में इस वक्त जश्न का माहौल शुरू हो चुका है। पार्टी कार्यकर्ता हाथों में झंडा लिए हुए और जीत की खुशी में नारे लगा रहे हैं, एक दूसरे को मिठाई खिला रहे हैं। इसके अलावा आतिशबाजी भी हो रही है और ढोल नगाड़े की धुन पर जो है जश्न नाते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बताऊं कि जो बीजेपी के पार्टी के नेता हैं और कार्यकर्ता है, इस जीत को जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और भाजपा के सुशासन मॉडल पर जनता के भरोसे को बता रहे हैं। और रुझानों के अनुसार बीजेपी पहली बार जो है पश्चिम बंगाल में सरकार बनाती हुई दिख रही है, वहीं लगातार तीसरी बार असम में सरकार बनाएगी। और आपको बता दूं कि शाम में प्रधानमंत्री मोदी पार्टी मुख्यालय पहुंचेंगे और पार्टी के कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। उनके स्वागत के लिए पार्टी मुख्यालय में तैयारियां चल रही है। जी,
0: जानकारी के लिए धन्यवाद दीपेंद्र। भारत ने लिपुलेख दर्रे पर नेपाल के दावे को खारिज करते हुए कहा है कि दर्रा वर्ष 1954 से कैलाश मानसरोवर यात्रा का पुराना मार्ग है। प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत लगातार कहता रहा है कि ऐसे दावे अनुचित और ऐतिहासिक तथ्यों से परे हैं। नेपाल ने भारत चीन द्वारा आगामी कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए लिपुलेख दर्रे का उपयोग करने पर आपत्ति जताई है। नेपाल ने कहा है कि एक क्षेत्र उसके अधिकार में आता है। घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांकों में आज दोपहर के कारोबार में लगभग 0.2% की बढ़त दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 159 अंक की बढ़ोतरी के साथ 77,073 पर, जबकि निफ्टी 58 अंक की वृद्धि के साथ 24,056 पर था। आईपीएल क्रिकेट में आज लखनऊ सुपर जायंट्स और मुंबई इंडियंस आमने सामने होंगे। मुंबई में यह मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय सभी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और विभिन्न एजेंसियों के सहयोग से देश भर में आज से अखिल भारतीय अग्नि सुरक्षा सप्ताह मना रहा है। इसका उद्देश्य स्वास्थ्य केंद्रों में अग्नि खतरों की रोकथाम और निवारण के महत्व के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी भारी जीत की ओर अग्रसर, 293 सीटों में से 192 सीटों पर आगे। तृणमूल कांग्रेस की 95 सीटों पर बढ़त। असम में भाजपा तीसरी बार सत्ता में आने को तैयार। तमिलनाडु में अभिनेता से नेता बनने विजय की पार्टी टीवीके की अपने पहले ही चुनाव में जबरदस्त सफलता। सत्तारूढ़ डीएमके पार्टी तीसरे स्थान पर, मुख्यमंत्री एमके स्टालिन पीछे चल रहे हैं। केरलम में कांग्रेस के नेतृत्व वाला यूडीएफ स्पष्ट बहुमत की ओर। पुदुचेरी में एनडीए की सत्ता में फिर वापसी। विधानसभा उपचुनावों में भाजपा ने त्रिपुरा, नागालैंड और गुजरात में एक एक सीट जीती। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

2 किसान रुपये जी है, राजपुर है, तो हरदीप सिंह, जगवीर सिंह, ज्वाला सिंह, धर्मवीर, जगजीर सिंह। अगली चिट्ठी पे जी सानू मुक्तसर तो बाबू सिंह दीमान, बलजिंदर कौर, रवनीत, निशु एंड भुपिंदर। पटेल नगर मलोड़ तो भेजी सानू चिट्ठी रमेश कुमार जाजोरिया, गीता रानी, गगनदीप, बेबी आरचू। अगली चिट्ठी भेजी सानू नाभे तो सोमदत्त, कैरव, ज्योति रानी, गुरमन्नत। इन्हां सारे दे पसंद च असीं इकला गीत लगाउण लगे हाँ सरबजीत चीमा की आवाज़ में, आओ सुनते हैं गीत।

आप जी सरवण कर रहे सो भाई बलकार सिंह ते उना दे रागी जत्थे वालों गायन किया होया ए शब्द। इस जगत विच पुरख केवल इको अकाल पुरख है, बाकी जीव मनुख उस अकाल पुरख प्रभु दियां जीव रूपी स्त्रियां हन। स्त्री दा ते सब कुछ उसका कंत हुंदा है, अकाल पुरख प्रभु कंत है। ताही ता जीव रूपी स्त्री दी यही जिग्यासा हुंदी है कि वह केड़े गुण धारण किते जान जिन्हां नूं धारण कीत्यां प्राणा दे पति अकाल पुरख परमेश्वर नाल मिलाप हासिल हो जावे। निम्रता दे घर विच आ के ऐसियां जीव रूपी स्त्रियां यही बेनती करदियां ने, कवन गुण प्राण पत मिलाओ मेरी माई, रूपहीन बुद्ध बलहीनी मोहे परदेसन दूर ते आई। सरवण करदे आ भाई गुरमीत सिंह शांत अते उन्हां दे रागी जत्थे वल्लों गायन कीता होया ए शब्द।

0: कवन गुन प्राण पत मिलाओ मेरी माई। आप जी सरवण कर रहे सो भाई गुरमीत सिंह शांत अते ओना दे रागी जत्थे वालों गायन किया होया ए शब्द। हुण सरवण करदे आ इस शब्द की व्याख्या। व्याख्याकार ने ज्ञानी जगवंत सिंह।
1: राग गौड़ी पूर्वी महला पंजवां एक ओंकार सत गुर प्रसाद कवन गुण प्राण पत मिलाओ मेरी माई रहाओ रूपहीन बुद्ध बलहीनी मोहे प्रदेशन दूर ते आई नाहन दर्ब न जोबन माती मोहे अनाथ की करहो समाई खोजत खोजत पई बैरागन प्रभ दर्शन कहो फिरत तिसाई दीन दयाल कृपाल प्रभ नानक साध संग मेरी जलन बुझाई। ये पावन पवित्र गुर शब्द गुरु अर्जन देव जी का गौड़ी राग विच उचारण कीता होया गौड़ी पूर्वी सरलेख हेठ पावन गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज दे पवित्र अंग 204 उपर सुभायमान है। इस गुरवाक विच सतगुरु जी जीवात्मा दी परमात्मा तो विछड़ के पई दूरी कारण दोबारा मिलाप दी तांग रख दी जीवात्मा दी अवस्था बयान करके बख्शिश करदे हन कि मेरे विच कोई भी अजिहे कोई चंगे गुण नहीं हन जिन्हां करके मेरा पति परमेश्वर मैनू मिल सके। विचार अधीन गुर शब्द दी रहाओ वाली पंक्ति अंदर फुरमान है कवन गुण प्राण पत मिलाओ मेरी माई रहाओ। हे मेरी माँ मैं केड़े गुणा करके अपने प्राणा दे पति भाव जिन दे मालक नू मिल सकती हाँ। असल विच गुण अकाल पुरख की बख्शिश है अते अवगुणहीन मनुख दियां कमजोरियां जीवन शक्ति का दुरउपयोग ही अवगुण हन अते जीवन शक्ति की सही वरतों ही गुण है। गुण तो सुगंधी की तरह निर्बोझ हैं पर अवगुण जीवन नू अत्यंत भारू बना देंदे हन। आदकाल तो मनुख कहाउण वालियां नू रब्बी रूहां वल्लों गुणा की सेध दिती जा रही है पर इंसान नू गुणवान बनना शायद नहीं आ सकिया। गौड़ी राग अंदर गुरु नानक साहब जी का फुरमान है कि हे वाहिगुरु जी जेता समुंद सागर नीर भरिया तेते अवगुण हमारे दया करहो किशमेर उपावहो डुबदे पत्थर तारे। विचार अधीन गुर शब्द की अगली पंक्ति विच परमात्मा तो पै विछोड़े कारण पैदा हुई मिलन दी तांग पर कोई अजिहा गुण नज़र ना आउंदा देख जिस नाल प्रभु प्यारा गल नाल ला लै। गुरु पातशाह जीवात्मा की अगवाई करदे कहिंदे हन रूपहीन बुद्ध बलहीनी मोहे प्रदेशन दूर ते आई नाहन दर्ब ना जोबन माती मोहे अनाथ की करहो समाई। हे प्रभु जी मेरा रूप भी सुंदर नहीं अकल तो भी खाली हाँ अते बड़े चिर तो पै विछोड़े कारण इस संसार विच मैं प्रदेशन बड़ी दूर तो आई हाँ मेरा इत्थे कोई नहीं ना मेरे कोल तेरे पास आउण लई राह दे खर्च जोगा धन है।

गोबिंद प्रीत लगी अत प्यारी, जब सत्संग पए साधु जन, हृदय मिलया सांत मुरारी। आप जी श्रवण कर रहे

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवली निगम। चार राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश के विधानसभा चुनाव में मतों की गिनती जारी है। पश्चिम बंगाल में भाजपा बड़ी जीत के साथ पहली बार सरकार बनाने की ओर अग्रसर है। वहीं असम और पुदुचेरी में सहयोगी दलों के साथ सत्ता में वापसी कर रही है। तमिलनाडु में अभिनेता से राजनेता बने विजय की पार्टी टीवी के इतिहास रचने की ओर है। केरलम में कांग्रेस के नेतृत्व में यूडीएफ स्पष्ट बहुमत की ओर बढ़ रही है। पांच राज्यों की सात विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में भाजपा ने 3 सीट जीत ली है और 2 पर आगे है। वहीं कांग्रेस को 1 सीट पर जीत मिली है। पश्चिम बंगाल में 293 विधानसभा सीटों के रुझान और परिणाम मिल चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी को 202 सीटों पर बढ़त मिली है, इनमें से वो 20 सीटें जीत चुकी है। तृणमूल कांग्रेस 85 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है और इनमें से 8 सीटों पर उसे जीत हासिल हुई है। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी 1, कांग्रेस 2 और अन्य 3 सीटों पर आगे है। मुख्यमंत्री और टीएमसी नेता ममता बनर्जी भवानीपुर निर्वाचन क्षेत्र में भाजपा के शुभेंदु अधिकारी से आगे चल रही है। नंदीग्राम सीट से शुभेंदु अधिकारी आगे हैं। असम में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है। विधानसभा की 126 सीटों में से अब तक 52 के परिणाम घोषित हो चुके हैं। भाजपा को 42 सीटें मिली हैं, जबकि उसके सहयोगी एजीपी को 3 और बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट को 5 सीटें मिली हैं। दूसरी ओर कांग्रेस और ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट को 1-1 सीट मिली है। उपलब्ध रुझानों के अनुसार भाजपा 40, एजीपी 7 और बीपीएफ 5 सीट पर आगे है। कांग्रेस ने 18 सीटों पर बढ़त बनाई हुई है। एआईयूडीएफ रायजोर दल को 2 और टीएमसी 1 सीट पर आगे है। भाजपा उम्मीदवार और मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा जालुकबाड़ी सीट पर आगे चल रहे हैं। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गौरव गोगोई जोरहाट सीट से चुनाव हार गए हैं। इस बीच भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम नई दिल्ली स्थित भाजपा मुख्यालय में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि पश्चिम बंगाल के लोगों ने पार्टी को ऐतिहासिक जनादेश दिया है। वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि पश्चिम बंगाल में भाजपा की भारी जीत हर कार्यकर्ता के लिए भावुक क्षण है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि पश्चिम बंगाल के लोगों ने सुशासन के लिए भाजपा को वोट दिया है।
1: वेस्ट बंगाल, असम और पुदुचेरी में भारतीय जनता पार्टी को माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में बहुत बड़ी आशीर्वाद मिला है। अगेंस्ट दिस वेस्ट बंगाल पीपल हैव गिवन ए वेरी वेरी क्लियर मैंडेट फॉर दी बेटर एडमिनिस्ट्रेशन एंड सुशासन के लिए एक मैंडेट मोदी जी के नेतृत्व में दिया है एंड पूरा कम्युनिस्ट मुक्त देश हो गया है।
0: केरलम में सभी 140 सीटों के परिणाम और रुझान मिल गए हैं। कांग्रेस के नेतृत्व में यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट को शानदार जीत मिली है। कांग्रेस को 56 सीट मिली है और वो 7 सीटों पर आगे चल रही है। उसके सहयोगी आईयूएमएल ने 18 सीटों पर जीत हासिल की है और 4 पर आगे है। सत्तारूढ़ सीपीएम को 24 सीटें मिली हैं, 2 पर आगे है। उसके सहयोगी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने 7 सीटें जीती हैं और 1 पर आगे है। केरल कांग्रेस को 7 सीटों पर जीत मिली है और 1 पर आगे है।

0: ने 3 सीट जीती हैं। उधर तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में अभिनेता से राजनेता बने विजय के नेतृत्व में तमिलगा वित्री कड़गम टीवी के सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभर कर इतिहास रचने के लिए तैयार है। टीवी के 87 सीटों पर आगे है और 22 सीटों पर उसे जीत मिल चुकी है। मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के नेतृत्व में सत्तारूढ़ डीएमके को अब तक 8 सीटें मिली हैं और 51 पर आगे है। एआईएडीएमके को 4 सीट मिली हैं, 41 पर आगे है। पीएम के 5 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। कांग्रेस 4 सीटों पर आगे है और भारतीय जनता पार्टी 1 सीट पर आगे है। पुदुचेरी में एन रंगास्वामी के नेतृत्व में एनडीए सरकार बनाने जा रही है। निर्वाचन आयोग के अनुसार एन रंगास्वामी की एआईएनआरएस पार्टी को 9 सीटों पर जीत मिली है, 2 पर आगे है। भाजपा 2 सीटें जीत चुकी है, 2 पर आगे है। एआईएडीएमके और कांग्रेस 1-1 और डीएमके को 2 सीट मिली है, जबकि 3 निर्दलीय उम्मीदवार भी विजयी हुए हैं। बम्बई शेयर बाजार का समिति सूचकांक आज 356 अंक बढ़कर 77,269 पर बंद हुआ। निफ्टी 122 अंक बढ़कर 24,119 पर दर्ज हुआ। मुंबई में आईपीएल क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे मुंबई इंडियंस का सामना लखनऊ सुपर जायंट्स से होगा। मुंबई अंक तालिका में 9वें और लखनऊ 10वें स्थान पर है। दोनों टीमों के लिए मुकाबला प्लेऑफ की दौड़ में बने रहने के लिए महत्वपूर्ण है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्स ते डीटीएच दी आकाशवाणी पंजाब सेवा दा ए जलंधर केंद्र है। तुसीं साडे प्रोग्राम वेव्स ऐप राही भी सुन सकते हो। लो हुण सुनो साडे अज दे बाकी रहिंदे प्रोग्रामां दा वेरवा ते उहनां दा प्रसारण समां।

शाम 6:30 बजे सुनोगे देहाती प्रोग्राम। अज दे इस प्रोग्राम दे विच नाटक होया देस पराया दी पंजवी कड़ी सुनोगे। इस तो अलावा आड़ू ते उलूचे दी तुड़ाई ते मंडीकरण बारे सुखजीत कौर जवंदा होर नाल कीती गलबात सुनाई जाएगी। गीत संगीत होएगा कल दे प्रोग्राम ते मौसम दा हाल भी दस्या जाएगा।

एक विशेष सूचना। आकाशवाणी जलंधर वालों कुछ खाली स्टाफ क्वार्टर ते ऑफिस स्पेस किराए जां लीज ते दित्ते जाण दा प्रस्ताव है, जो सिर्फ केंद्र सरकार, सूबा सरकार, जनतक खेतर दे अदारे यानी PSU ते विधानिक संस्थावां नूं दित्ते जाणगे। इन्हां च शामिल ने

एक जरूरी सूचना। आकाशवाणी जलंधर दी खेतरी समाचार इकाई विच समाचार वाचक ते अनुवादक एनआरटी कैजुअल पंजाबी लई योग उम्मीदवारां तों अर्जियां दी मांग कीती जांदी है। उम्मीदवार ने अंग्रेजी विषय नाल ग्रेजुएशन कीती होवे ते पंजाबी भाषा ते कंप्यूटर च मुहारत होवे। उम्मीदवार दी उमर 20 मई 2026 तक 21 साल तों 50 साल विचकार होनी चाहीदी है। तरजीही तौर ते उम्मीदवार जलंधर या इस दे नेड़ले इलाकें दा वसनीक होवे। चाहवान उम्मीदवार विद्यक योग्यता दे सर्टिफिकेट अते तजर्बे दियां तस्दीकशुदा कापियां नाल वेरवे सहित बायोडाटा रंगदार पासपोर्ट साइज फोटो अर्जी नाल नत्थी करके भेजण। अर्जियां भेजण लई पता है सहायक निदेशक खेतरी समाचार यूनिट आकाशवाणी केंद्र नेड़े BMC चौक जलंधर। अर्जियां भेजण दी आखरी तरीक 20 मई 2026 है। चोन प्रक्रिया बारे वेरवे सहित जानकारी अते खाली फार्म साडी वेबसाइट newsonair.com जां newsonair.gov.in ते जाके वैकेंसी कॉलम विचों प्राप्त कीता जा सकदा है। ध्यान रहे ए कोई नियमित रोजगार या नौकरी नहीं है, तुहानू जरूरत दे मुताबिक बुलाया जावेगा।

0: हाँ जी शिंगारा सिंह जी बच्चे अपना जिहड़ा लड़ीवार होया देस पराया नाटक
1: जी
0: इहदी पंजवीं किश्त
1: अच्छा जी
0: इह आपां सुनणा सांझी करदे आ।
1: सुनाओ जी।
0: पेश है अवतार सिंह विलिंग दे नॉवल ते आधारित लड़ीवार पंजाबी नाटक होया देस पराया दी छेवीं कड़ी। रेडियो नाटक रूपांतर बखशिंदर।

0: जट कौम का की बनू।
1: देखो जी, तुहानू उदण भी दस्या सी दिशावां चार ने दस हुंदियां ने, कल साडा वर्तमान बन जांदा है, उही अगले दिन साडा भविख। देखो हालत यह है जी बई, साडे बुढ़िया का कल माड़ा सी ते साडा अज, वडेरियां दे कल तो पैड़ा, ते न्याणे दे भविख का अंदाजा हिसाब किताब तुसी आपे ला सकदे हो।
2: ते हुण सुणो इस लड़ीवार रेडियो नाटक की छेवीं

0: यार उस दिन तो टेलर मास्टर तेज प्रकाश का सुपना हर वेले मरे मन ते सवार होया रहिंदा।
1: सच कहना सरूप सिंह, उदन का ही मैं भी सोची जाना भी बई असी वसदे केड़े देश हाँ।
0: इसका तत्सार तो यो होया कि सारी जमीन ते गुरु घर ते भी गैरां का कब्जा होया ही लो, पंच सरपंच भी गैर पंजाबी बनिया करनगे। क्यों बई तुहानू की लगता इदां हो सकदा?
2: ओ होया ही पिया, ओ जे सारे ही छड़ बाहर भजी जावांगे आ गिनती का मामला, साढ़े नहीं बाहरले मुल्क।

0: शाबाश करमप्रीत सिंह, इसी तरह हर टेस्ट पास करते जाओ। अब मैं देखूंगा कि भर्ती अफसर तुम्हें कैसे भर्ती नहीं करेगा।
1: ए, तुम आठों के आठों लड़के एकदम आउट आउट। आपकी मेडिकल रिपोर्ट सही नहीं है।
0: डॉक्टर, व्हाट्स रॉन्ग विद ब्लडी मेडिकल रिपोर्ट? आज मैं बात खत्म करके जाऊंगा और देखूंगा कि ये सिकटू सा डॉक्टर अपने आप को समझता क्या है। इसे मालूम नहीं है कि पेंशनर ऑफिसर की रिस्पेक्ट क्या होती।
2: मैं क्या मेजर साहब, आप माने मिलिट्री ऑफिसर है ना, खैब बढ़ना थोड़ी। हाँ चलिए, छो खैर इना जो बाजे बाजे बड़े कब्बे होंगे सिरों पुट।

0: क्या नाम है आपके कैंडिडेट का साहब?
1: जी करमप्रीत सिंह।
0: करमप्रीत सिंह की मेडिकल रिपोर्ट दिखानी साहब।
2: ये लीजिए सर, करमप्रीत सिंह सन ऑफ सुरूप सिंह।
3: मैं जानना चाहता हूं कि इस छड़ी जैसे जवान में क्या कमी है।
0: देखने में ये आपको फिट लगता है साहब, पर हमें इंडियन आर्मी में नशेड़ी नहीं चाहिए मेजर साहब, हमें नशा रहित कंचन जैसी काया की जरूरत है।

0: देख भाई करमप्रीत, तेरी माँ ने मैनू तेरे सारे चाले दस दिते। वो कहती है भी तेनू हर तरह समझा के देख लिया, पर तू किसे कड़े बैठने नहीं तैयार।
1: नहीं डैडी जी, मैं तो मम्मी नू इहो कहा सी भी जे सुखजीवन भा दी डैथ हो गई तो उस च मेरा की कसूर है। जेड़े तुसीं भाभी नाल मेरा मैड करना चाहते हो,
0: पहला तो तू उन्हूं भाभी भाभी कहना बंद कर। भाभी तेरी उदों तक सी जदों तक सुखजीवन उसका घर वाला सी। सुखजीवन नहीं रहा वो तेरी भाभी नहीं रही, समझ आएगा। बाकी रही है नैड वाली गल, ये नैड नहीं करके जहान का दस्तूर है। घर की इज्जत बार खजल खुआर होने नालों घर च ही रख ली जाए। आप ही तो कहना भी इसप्रीत नूं गहले वालियां नाल नहीं जान देना। उन्हूं रोकण दा इहो राह बई तू नरेंद्र कौर उत्ते चादर पा ले।
1: इशप्रीत मेरी मेरे भरा दी निशानी है, उसलिए मैं कुछ भी करने लई तैयार हाँ। भाभी यानी नरेंद्र दे संबंध च भी जिद्दां तुसीं कहो मैं करन नूं तैयार हाँ।
0: शाबाशे, हाँ कीती ना बरखुरदारां वाली गल। ऐडे मेरा क्या मंदर है तो अपना हाले भी कुछ नहीं विगड़िया।
2: कर्मे को ड्रगियों की बैड कंपनी से बचाना होगा स्वरूप सिंह।
0: मैं तो मेजर साहब एक गवा लिया, दूजे ने बचाने लिए अपने आप पूरी वाह ला रहा। कई बार लगता मेरी तकदीर ही माड़ी है।
2: नहीं नहीं स्वरूप सिंह, आज के जमाने में हर आदमी की तकदीर उसके अपने हाथों में है।
0: इन्हें नशियां तो दूर करन खातर ही मेजर साहब मैंने समराले वेल्डर का कोर्स कर लाया से। घरों तो नेरा सोना बना के भेजा से समराले, उत्थे वेल्डिंग नू हाथ लाया खरे नहीं, कुछ संगत ने फेर पाता नशे दे रहा। उन्हें दी खातर केड़े खोज छाल मारते।
2: गाड़ी कांटे से अपना रास्ता बदलती है ना स्वरूप सिंह, उसी तरह इसे ड्रग्स के रास्ते से निकालना है और अच्छे रास्ते पर डालना है, क्या कहते हो? देखो स्वरूप सिंह, फौज के डॉक्टर ने मुझे अलग से बताया था कि करमप्रीत अभी कच्चा नशेड़ी ही है, अब आप और हमने मिलकर उसे पक्का नशेड़ी बनने से बचाना है, क्या कहते हो? ये काम हमें घर के अंदर से शुरू करना होगा।
0: घर के अंदर से? मैं कुछ समझा नहीं मेजर साहब।
2: मैंने सुना है कि आपने अपनी बेवा हो गई बहू का रिश्ता अपने छोटे बेटे से बनाने का फैसला किया।
0: जी जी।
2: अब आप अपनी पत्नी के जरिए अपनी बहू को इस बात के लिए मनाइए कि वो करमप्रीत को अपने चारम से रिझाए। आप समझ रहे हैं ना कि मैं क्या कह रहा हूँ स्वरूप सिंह, क्या कहते हो?
0: जी मेजर साहब, मैं समझ रहा हूँ।
2: हाँ, इस जाम में बहुत ताकत होती है, इसके जरिए मर्द से नशा छुड़ाना तो क्या कुछ भी कराया जा सकता है, कुछ भी, क्या कहते हो?
0: कहना तो बस अपनी पत्नी को ही है जी, वही कहेगी आके।
3: सुखजीवन की विधवा नरेंद्र कौर करमप्रीत यानी करमे दे सिर धर दिती गई। उसने भी करमे नू अपना पति मान लिया। वो सुखजीवन दे पुत्तर इशप्रीत नू भी करमे नू चाचा कहण दी थां डैडी कहण लई प्रेरण लग पई। कुछ महीने करमे ने शामां नू एक दो पैग शराब पी के रातां लंघाउण दे हीले कीते। नरेंद्र कौर ने भी मनजीत कौर राही उस कोल पुजियां मेजर मक्खण सिंह दियां हदायतां उत्ते अमल करदियां करमे नू पत्नी सुख दे दे के

0: ਹੁਣ ਤਾਂ ਭੂਰਾ ਦੇ ਛੱਡ।
1: ਉਹ ਨਾ ਆਉਂਦਾ ਚਿੜੀ ਵੱਲ ਨੂੰ, ਚਿੜੀ ਤੇਰੇ ਬਿਨਾਂ ਉਦਾਸ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਆਉਣ ਖਾਤਰ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ।
2: ਉਹ ਬਿੱਲੇ ਯਾਰ, ਐਵੇਂ ਕਿਉਂ ਗੱਲ ਵਧਾਈ ਜਾਂਦੀ? ਉਹਨੂੰ ਪੂੜੀ ਫੜਾ ਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੱਲਦਾ ਕਰ।
1: ਵਾਹ, ਚੱਕ ਪੂੜੀ ਤੇ ਪੈਸੇ ਸੁੱਟ। ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਤਾਹੂ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਈ, ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿਆਂ।
3: ਹਾਂ, ਚੱਕ ਪੈਸੇ। ਕੋਈ ਨਾ, ਤੂੰ ਧੀਰਾ ਹੋ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ, ਤੇਰੀ ਹੀਰ ਵੀ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਦਿਨ।
4: ਬੱਤੀਆਂ ਬਾਲ ਕੇ ਬਨੇਰੇ ਨੀ ਭਰਨੇ, ਹੁਣ ਮਨ ਖਾਣਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਖਾਇਆ?
3: ਕੁਛ ਨੀ ਚਾਹੀਦਾ ਮੈਨੂੰ, ਬਸ ਪੂਰਾ ਖਿਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਜਾ।
5: सरदार स्वरूप सिंह, आप और हम मर्द हैं, हमें अपने बच्चों को माँ वाली नज़र से नहीं, बाप वाली यानी मर्द वाली नज़र से देखना शुरू करना होगा, क्या कहते हो?
6: मैं आपकी ये बात समझा नहीं मेजर साहब।
5: इसमें समझ ना सकने वाली ज़्यादा बात नहीं है सरदार स्वरूप सिंह। माँ को अपना बच्चा हमेशा बेकसूर और पाक साफ दिखाई देता है, जबकि उसके ऐब और नुक्स बाप को दिखाई देते हैं। माँ को जो प्योर सोना नजर आता है ना, उसमें मिलावट होती है, शुद्ध सोना बाप ही देख सकता है। आई बात समझ में, क्या कहते हो?
6: जी मेजर साहब, हुण तां चानण चानण हो गया।
5: अगले दिनों शाम के वक्त इस चिड़ी पर नजर रखनी है हमें। मैं हर शाम बच्चों को एक्सरसाइज और गेम्स करते सुपरवाइज करता हूँ। इसके साथ ही मैं दरख्तों के इस छोटे से जंगल यानी चिड़ी में आने जाने वालों पर भी नजर रखता हूँ। मैंने कर्मे को भी इस चिड़ी में जाते और फिर बाहर निकलते भी देखा है। अंदर ड्रग वगैरह सप्लाई की जाती है स्वरूप सिंह, मुझे ये शक है, क्या कहते हो?
6: मैं आज से ही यहाँ पहरा देना शुरू करता हूँ मेजर साहब, कोई गलत।
5: इसका मतलब मेरा शक सही साबित हुआ स्वरूप सिंह, इन दरख्तों के इस झुरमट में ड्रग्स का बिजनेस किया जाता है और कर्मा भी इन लोगों के चंगुल में फंसा हुआ है और यहाँ से ड्रग की सप्लाई लेता है।
6: मेजर साहब, मैंने तो कर्मे को नशे से बचाने के लिए अपने परिवार की रहायश खूपे कर देती थी, पर उस नशेड़ी ने इस बात का भी फायदा उठाना शुरू कर दिया। अब क्या किया जाए मेजर साहब?
5: हमें कर्मे को डॉक्टर से बात करके रीहैब सेंटर में एडमिट करा देना चाहिए। दूसरी तरफ पुलिस को ड्रग्स के इस अड्डे की सूचना देनी चाहिए। आप कर्मे को रीहैब में एंटर कराएं, दूसरे फ्रंट पर मैं अपनी सरपंच वाली ड्यूटी निभाता हूं।
7: स्वरूप सिंह वालों अपने परिवार की रिहायश खूह ते करन नाल कुछ चिर तां सुख सांद रही। आखिर नशेड़ियां ने खेतों विच ही डंडी पा के अपने शिकार कर्मे तक रसाई कर ही ले। कर्मा भी उन्हां दे गुझे इशारे ते खास आवाज़ां सुनदा जंगल पाणी जाण दे बहाने फसलां विच ही अगे तों अगे निकल जांदा। वो पता नहीं किन्ना किन्ना चिर खेतों विच ही लुकिया रहिंदा। कई बारी वो कई कई दिन खूह वाले घर ना मुड़दा। कर्मे ते सरूप सिंह दे परिवार नाल की बणदा है, ये आपां नाटक की 7वीं कड़ी विच सुणांगे।

0: हेलो,
1: यह आयकर विभाग है। आज हम आपके नाम से चल रहे खातों से अनिवार्य कटौती करेंगे। यदि आपके कोई प्रश्न है तो कृपया सेवा कर्मियों से संपर्क करने के लिए 9 दबाएं। दिस इज द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट।
2: अजही कोई भी फोन कॉल फ्रॉड हो सकती है। कोई भी बटन दबण तो पहला एक मिनट लिए रुको ते सोचो ते पुष्टि जरूर कर लो। सावधान रहो, सुरक्षित रहो।
3: मीडियम वेव 343.4।

नमस्कार, प्रस्तुत है कहानी। कहानी का शीर्षक है चुटकुला। बच्चे खुश हैं और चहक रहे हैं। सभी के बस्ते बंद हैं क्योंकि आज पढ़ने का दिन नहीं बल्कि बाल सभा में चुटकुले और कविताओं का दिन है। स्कूल की वर्दी में अलग अलग बच्चे एक जैसे दिख रहे हैं, छोटे छोटे मासूम पक्षियों की तरह, जैसे हंसों का झुंड पानी में करलव करता हुआ। कक्षा में शिक्षक आज क्रोध में नहीं बल्कि प्रसन्न दिख रहे हैं। उन्होंने रोल नंबर एक को बुलाया। यह बहुत ही अच्छा बच्चा है, पढ़ाई में होशियार और सबसे साफ सुथरा भी। तुम कोई कविता सुनाओ, अध्यापक ने उत्साहवर्धन करते हुए कहा। बच्चा पहले से ही जोश में था, उसने ऊंची आवाज में कविता सुनानी शुरू की। मोटू सेठ सड़क पर लेट, आई गाड़ी फट गया पेट, गाड़ी का नंबर 88, गाड़ी पहुंची इंडिया गेट, इंडिया गेट से आई आवाज़ चाचा नेहरू जिंदाबाद। सभी बच्चे जोश के साथ कविता की पंक्तियों को दोहरा रहे थे, सिर्फ एक बच्चे को छोड़कर। जब वह कविता सुन रहा था तो वह थोड़ा घबरा गया। उसके चेहरे पर डर दिखाई देने लगा। उसने अपने बगल में बैठे सहपाठी से पूछा, अगर उसका पेट फट गया तो क्या वो मर गया? सहपाठी को यह बात कविता से भी अधिक मनोरंजक लगी। उसने उसकी जांघ पर थप्पड़ मारा और कहा, हट पागल। बच्चा कुछ भी नहीं समझ पाया। अन्य सभी बच्चे खुश और वातावरण में रमे हुए थे। वे सभी आकाश में उड़ने वाले पक्षियों के विशाल झुंड की तरह थे जो मस्ती में झूम रहे थे। शिक्षक ने अब एक लड़की को उठाया। यह कक्षा के सबसे रईस बच्चों में से एक थी। उसकी रईसी उसके पहनावे, तमीज, बात करने के सलीके से झलकती है। वास्तव में वह इस कक्षा की राजकुमारी की तरह है। लड़की ने एक कविता सुनानी शुरू की। तितली उड़ी, बस में चढ़ी, सीट ना मिली, रोने लगी, ड्राइवर कहता आजा मेरे पास, तितली बोली, हट बदमाश। सभी बच्चे ताली बजाने लगे, लेकिन छोटा लड़का अभी भी परेशान था। विस्मय में चारों तरफ देखते हुए उसने अपने सहपाठी से फिर पूछा, यह ड्राइवर तितली को क्यों छेड़ता है? सहपाठी को अब और भी अधिक मजा आया। उसने अपनी कोहनी को उसकी कमर में जोर से मारा और हंसते हंसते पेट के बल हो गया। बच्चे को कमर में दर्द हो रहा था, लेकिन इससे भी कहीं अधिक दर्द उसके दिल, उसके दिमाग में हो रहा था। सर जी, मैं एक चुटकुला सुनाऊं? तीसरी पंक्ति में बैठे एक लड़के ने पूछा। यह लड़का कक्षा में पढ़ाई में सबसे पीछे और शरारत में सबसे आगे है। कक्षा में शोर मचाने वाले बच्चों में से सबसे ऊपर। हाँ बिल्कुल, तू भी कोई अच्छा चुटकुला सुना, अध्यापक जी ने स्वीकृति देते हुए कहा। लड़के ने चुटकुला सुनाना शुरू किया। एक लड़का अपनी माँ से कहता, मम्मी आपने मुझसे झूठ क्यों बोला? माँ, बेटा मैंने तुमसे कब झूठ बोला? मम्मी आप तो कहती थी कि मेरी छोटी बहन परी है। हाँ बेटा, झूठ मत बोलो माँ, मैंने उसे छत से नीचे फेंक दिया और वह उड़ ही नहीं पाई। माँ, हाय कहाँ फेंक आया लड़की को? पूरी क्लास हंस रही है, हंस हंस कर पेट के बल हो रही है। लेकिन लड़का और भी परेशान हो गया, मानो वह रोने ही वाला था। उसने अपने सहपाठी से पूछा, क्या उसकी बहन को बहुत चोट लग गई? सहपाठी का चुटकुले का आनंद बर्बाद हो गया। उसने गुस्से से बच्चे को धक्का दिया और कहा, चल जा भाग यहाँ से। अब और कौन चुटकुला या कहानी सुनाएगा? शिक्षक ने बच्चों से पूछा। सर, क्या मैं एक चुटकुला सुना सकता हूँ? कक्षा में सबसे मजबूत बच्चे ने हाथ खड़ा करके पूछा। यह बच्चा कक्षा का सबसे अधिक मजबूत और अघोषित रूप से पूरी कक्षा, विशेषकर कक्षा के लड़कों पर शासन करता है। हाँ जरूर, तू भी कोई अच्छा चुटकुला सुना, शिक्षक ने प्रोत्साहित किया। बच्चे ने उत्साह भरी आवाज़ में चुटकुला शुरू किया। एक बार तीन नशेड़ी आपस में बात कर रहे थे। पहले नशेड़ी ने कहा, भाई मैं अब गाँव के बाहर ज़मीन खरीद लूँगा और खेती शुरू कर दूँगा। तुम किस चीज़ की खेती शुरू करोगे? दूसरे नशेड़ी ने पूछा। मैं गन्ने की खेती शुरू करूँगा, पहले नशेड़ी ने कहा, और गन्ने की फसल बेचकर मैं खूब पैसा कमाऊँगा। भाई तुम गन्ने की खेती करके पैसा नहीं कमा सकते, तीसरे नशेड़ी ने जैसे अपना फैसला सुनाया। तुमने ये बात क्यों कही? पहले वाले ने पूछा। और नहीं तो क्या, गाँव वाले तेरे खेत में गन्ने रहने देंगे? वो पूरे खेत से गन्ने उखाड़ उखाड़ कर चूसने के लिए ले जाएंगे, तीसरे नशेड़ी ने बताया। गांव वालों की इतनी हिम्मत, उन्हें सबक सिखाना ही पड़ेगा, पहले नशेड़ी ने गुस्से में कहा। क्यों ना हम पूरे गांव को आग लगा दें? हाँ चलो, हम मिलकर पूरे गांव को आग लगा देते हैं, तीनों ने फैसला किया। तीनों नशेड़ियों ने मिलकर गांव को आग लगा

0: दी और एक टीले पर चढ़ गए और जोर जोर से चिल्लाने लगे, और उखाड़ो गन्ने और चूसो गन्ने। कक्षा में जोर की हंसी फैल गई। बच्चे हंस रहे थे अत्यधिक आनंद में, शिक्षक भी हंस रहे थे। अचानक वो छोटा लड़का उठा और जोर से रोने लगा और लगभग चिल्लाते हुए बोला, सर जी क्या आग में सारे गांव वाले जल गए? सभी बच्चे और शिक्षक विस्मय से उस बच्चे की ओर देखने लगे। एक पल के लिए कक्षा में सन्नाटा छा गया। शिक्षक ने अपने माथे पर त्योड़ी चढ़ाई और जोर से पूछा, क्या कहा तुमने? और शिक्षक जोर जोर से हंसने लगा। बाकी के कक्षा के बच्चे भी जोर जोर से हंसने लगे। बच्चा बिल्कुल समझ नहीं पाया कि सब लोग क्यों हंस रहे हैं। वह यह समझ ही नहीं पाया कि छेड़छाड़, हिंसा और लिंग भेद जैसे अपराध हमारे चुटकुलों और बाल कविताओं में इतने सरल तरीके से प्रस्तुत किए जाते हैं कि यह किसी को अपराध की तरह प्रतीत ही नहीं होते, बल्कि इस हिंसा, यौन अपराध और लिंग भेद पर आधारित चुटकुलों का आनंद लिया जाता है। बाकी की कक्षा और शिक्षक को जैसे एक जीता जागता चुटकुला मिल गया था। आकाश में उड़ने वाले पक्षियों का झुंड अब जंगली भेड़ियों के झुंड में बदल गया था, जिनके हाथों में अचानक एक शिकार लग गया है और सभी की निगाहें उस पर लगी हुई हैं। बच्चे को सबने ऐसे घेर लिया जैसे भेड़ियों का झुंड अपने शिकार को घेर लेता है। और लिंग भेद, यौन अपराध, हिंसा का वार सहता हुआ खून से लथपथ एक चुटकुला जमीन पर गिरा हुआ है, जमीन पर गिरा हुआ है। लघु कथा पशु और इंसान। सुबह दुकान का शटर खोला ही कि सामने डेयरी वाली ग्वालन बोल उठी, पिछली गली में रहने वाला रमेश है ना, वो मर गया। कौन रमेश? जो सुबह मंदिर का प्रांगण धोता है। भला चंगा तो था कल सुबह ही मिला, मैंने हैरान होते हुए पूछा। हाँ जी, वहीं कल मोटरसाइकिल से कहीं जा रहा था कि एक सांड ने उसे उठाकर पटक दिया, सिर दीवार में जा लगा और मौके पर ही मौत हो गई। ये म्यूनिसिपैलिटी वाले कर क्या रहे हैं? सारे शहर में इन आवारा सांडों और कुत्तों का आतंक मचा है, साथ वाले मल्होत्रा जी बोल उठे। जब से ये सरकार आई है तब से ही आवारा पशुओं का संकट गहरा गया है। शर्मा जी जो विपक्षी दल से संबंध रखते हैं, सहज ही मुद्दे को राजनीतिक रंगत देते हुए बोल उठे। ये शहर के लोग पता नहीं क्यों इन पशुओं को गलियों में फिरने देते हैं। हमारे गांवों में तो कोई आवारा पशु नहीं होता, ग्वाली ने मुद्दे को शहर बनाओ गांव करते हुए कहा। अब मेरा मुंह ना खुलवाइए बहन जी, मल्होत्रा जी खींचते हुए बोले। शहर वालों के पास खुद रहने की जगह नहीं, पशु क्या रखेंगे? ये सब आपके गाँव वालों का ही किया धरा है। गायें बछिया हुई तो पाल ली दूध देगी, बछड़ा हुआ तो हाँक दिया शहर की ओर। बछड़ा घाटे का सौदा जो ठहरा। इंसान के स्वार्थ की परिकाष्ठा को परिभाषित करते हुए वो बोल उठे। सच में इन आवारा पशुओं ने जीना मुहाल कर दिया है। कुछ और आवाज़ें भी चर्चा में शामिल हो गई। मैं सोच रहा था कि लड़कियों की भ्रूण हत्या करने वाला इंसान, अगर उसके पास गाय के बच्चों की लिंग जाँच के लिए कोई सुलभ तकनीक होती तो शायद एक भी बछड़ा जन्म न ले पाता। सचमुच इंसान से बड़ा पशु कोई नहीं, सचमुच इंसान से बड़ा पशु कोई नहीं।
1: हुणे तुसी प्रोग्राम विविधा तहत हिंदी वार्ता सुन रहे सी मेरी नई कहानी। वार्ताकार सन हरदीप सबरवाल, आकाशवाणी दा ए जलंधर केंद्र।
2: परिवारक लड़ीवार फैमिली नंबर वन, ए परिवारक सिलसिला तुसी सुन सकदे हो हर बुधवार शाम 6:30 बजे देहाती प्रोग्राम दे विच। परिवारिक लड़ीवार फैमिली नंबर वन।

मिडवेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्स ते DTH दी आकाशवाणी पंजाब सेवा दा ए जलंधर केंद्र ए तुसी साडे प्रोग्राम वेव्स ऐप राही भी सुन सकते हो। चलो हुण चंदन दास दी आवाज़ च एक गज़ल समात फरमाओ।

आकाशवाणी जलंधर तो तुम सुन रहे हो चंद गजलां। अगली गजल जगजीत सिंह की आवाज़ च।

अवतार सिंह बिलिंग दे नावल होया देश पराया ते आधारित ए रेडियो लड़ीवार नाटक तुसी सुनोगे हर सोमवार शाम 6:30 बजे देहाती प्रोग्राम।

0: हेलो,
1: यह आयकर विभाग है। आज हम आपके नाम से चल रहे खातों से अनिवार्य कटौती करेंगे। यदि आपके कोई प्रश्न है तो कृपया सेवा कर्मियों से संपर्क करने के लिए 9 दबाएं। दिस इज द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट।
2: अजिही कोई भी फोन कॉल फ्रॉड हो सकती है। कोई भी बटन दबण तो पहला एक मिनट लिए रुको ते सोचो ते पुष्टि जरूर कर लो। सावधान रहो, सुरक्षित रहो।
3: आकाशवाणी जलंधर ते सुन रहे हो प्रोग्राम जिंदगी हसीन है। जी हाँ दोस्तों, जेकर सानू जिंदगी दी जंग जितनी है तो उहदे रस्ते विच आउण वाली हर औकड़ नू, हर मुश्किल नू, उस तूफान नू तो सानू घबराना नहीं चाहिदा, बल्कि हिम्मत नाल उस तूफान च अपनी किश्ती नू किनारे रखण दा हौसला रखना चाहिदा है, ताकि जिंदगी नू असीं अगे वधा सकीए। ते जो असी कामयाब हो जाइए तो असी दौलत नू बचाने की बजाय अपने रिश्तों नू बचाइए, क्योंकि जिहड़ी खुशी सानू अपने नाल मिलती, अपने दे साथ नाल मिलती, वह खुशी पैसे नाल कदी नहीं मिल सकती। जे साडे च ठहराव है, धैर्य है, तो असी दुनिया की कोई भी चीज़ आसानी नाल पा सकते हैं। इस करके हमेशा सोच विचार करके हौसले नाल कुछ ना कुछ फैसला लेना चाहिए। तो आओ दोस्तों, प्रोग्राम जिंदगी हसीनों को अगे वधाउने आं। अगला गीत तुहाडे लई आ रहा है फिल्म

एक जरूरी सूचना। आकाशवाणी जलंधर दी खेतरी समाचार इकाई विच समाचार वाचक ते अनुवादक एनआरटी कैजुअल पंजाबी लई योग उम्मीदवारां तों अर्जियां दी मांग कीती जांदी है। उम्मीदवार ने अंग्रेजी विषय नाल ग्रेजुएशन कीती होवे ते पंजाबी भाषा ते कंप्यूटर च महारत होवे। उम्मीदवार दी उम्र 20 मई 2026 तक 21 साल तों 50 साल विचकार होनी चाहीदी है। तरजीही तौर ते उम्मीदवार जलंधर या इस दे नेड़ले इलाकें दा वसनीक होवे। चाहवान उम्मीदवार विद्यक योग्यता दे सर्टिफिकेट अते तजर्बे दियां तस्दीकशुदा कापियां नाल वीरवे सेहत बायोडाटा रंगदार पासपोर्ट साइज फोटो अर्जी नाल नथी करके भेजन। अर्जियां भेजन लई पता है सहायक निदेशक खेतरी समाचार यूनिट आकाशवाणी केंद्र नेड़े BMC चौक जलंधर। अर्जियां भेजन दी आखरी तरीक 20 मई 2026 है। चोन प्रक्रिया बारे वेरवे सहज जानकारी अते खाली फार्म साडी वेबसाइट newsonair.com जा newsonair.gov.in ते जाके वैकेंसी कॉलम विचों प्राप्त कीता जा सकदा है। ध्यान रहे ए कोई नियमित रोजगार या नौकरी नहीं है, तुहानू जरूरत दे मुताबिक बुलाया जावेगा।

आकाशवाणी निरंतर तो सुन रहे प्रोग्राम जिंदगी हसीन है। जी हाँ दोस्तों, जिस तरह एक नदी दी नदी विच वहिंदे पानी दी फितरत है कि हमेशा अगे वधदा जांदा वहिंदा जांदा है। जिस तरह असीं उस पानी नूं एक बारी छूण तो बाद दोबारा नहीं छू सकते क्योंकि वह बहुत अगे वहिंदा वहिंदा निकल जांदा है, उस तरह ही जिंदगी का हर एक पल वो समा जिहड़ा निकल गया वह वापस नहीं आ सकता। इसलिए सानू हर एक पल नूं बड़े ही आनंद नाल बड़े जोश नाल जीना चाहिए है, क्योंकि याद रहे कि जड़ा पल निकल गया वो पल वापस नहीं आना। जे किसी पल भी सानू कोई समस्या आ जाती है, कोई औकड़ आ जाती है, तो वह सानू घबराना नहीं चाहिए, बल्कि यह सोचना चाहिए कि वह इशारा है साड़ी जिंदगी विच कुछ वधिया बदलाव का, क्योंकि जो असी उस रुकावट नू सौकड़ नू दूर कर लैंदे हां असी हमेशा सफलता वाल अगे वधदे जाने हां। ते उस इशारे नू हमेशा बड़े आराम नाल बड़े हौसले नाल दूर कर देना चाहिए, क्योंकि कड़ी मेहनत करने वाले दी कदे भी हार नहीं हुंदी, हमेशा जित हुंदी है।

0: एक विशेष सूचना। आकाशवाणी जलंधर वालों कुछ खाली स्टाफ क्वार्टर ते ऑफिस स्पेस किराए जां लीज ते दित्ते जाण दा प्रस्ताव है, जो सिर्फ केंद्र सरकार, सूबा सरकार, जनतक खेतर दे अदारे यानी PSU ते विधानिक संस्थावां नूं दित्ते जाणगे। इन्हां च शामिल ने आकाशवाणी जलंधर स्थित ऑफिस स्पेस ते आकाशवाणी स्टाफ कलोनी BMC चौंक जलंधर ते अर्बन एस्टेट फेज 1 जलंधर स्थित रिहायशी फ्लैट्स। चावान आकाशवाणी जलंधर दे उप महानिदेशक नाल संपर्क करन। फोन नंबर है 0181-298-3036। ईमेल ID jalandhar@prasarbharati.gov.in।
1: आकाशवाणी जलंधर दे सुन रहे हो जी प्रोग्राम जिंदगी हसीन है, ते प्रोग्राम विच अगला गीत आ रहा है संगीत फिल्म तो। इस गीत नु गाया है सुरेश वाडकर ते अनुराधा पोडवाल ने।

0: अवतार सिंह बिलिंग दे नावल होया देश पराया ते आधारित ए रेडियो लड़ीवार नाटक तुसी सुनोगे हर सोमवार शाम 6:30 बजे देहाती प्रोग्राम
1: पै सोचा विच मैं हुन फोलां की खोया की पाया
0: लड़ीवार नाटक होया

आकाशवाणी जलंधर से सुन रहे प्रोग्राम जिंदगी हसीन है। दोस्तों जिंदगी चकर सानू कदी कामयाबी नहीं मिलती, असि असफल हो जाने तो सानू कदी भी उस ना कामयाबी दी या असफलता दी चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो लोग अपनी असफलता दी चिंता करते वो हमेशा असफल ही रह जाते हैं, पर जो लोग उस नाकामयाबी तो सीख के चिंता

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं लवली निगम। भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल में भारी जनादेश के साथ इतिहास रचा। असम में लगातार तीसरी बार सरकार बनाएगी। पुदुचेरी में एनडीए ने सत्ता बरकरार रखी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल, असम, पुदुचेरी, तमिलनाडु और केरलम के लोगों और पार्टी कार्यकर्ताओं के प्रति आभार व्यक्त किया। जीत का श्रेय देश के लोकतांत्रिक और संवैधानिक मूल्यों को दिया। कांग्रेस के नेतृत्व वाले संयुक्त लोकतांत्रिक मोर्चे ने केरलम में शानदार जीत दर्ज की। अभिनेता से राजनेता बने विजय की टीवी के पार्टी ने तमिलनाडु में शानदार प्रदर्शन के साथ राजनीति की शुरुआत की। विधानसभा उपचुनाव में भाजपा ने 4, कांग्रेस ने 2 सीटें जीती। एनसीपी की सुनेत्रा पवार ने रिकॉर्ड जीत दर्ज की। और चुनाव परिणामों से घरेलू शेयर बाजारों में उत्साह का माहौल। सेंसेक्स 356 अंक बढ़ा और निफ्टी 24,100 अंक के पार। अब समाचार विस्तार से 4 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा चुनाव की मतगणना जारी है। भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल में भारी जनादेश के साथ इतिहास रचा है। पार्टी असम में लगातार तीसरी बार सरकार बनाएगी। वहीं पुदुचेरी में एनडीए ने सत्ता बरकरार रखी है। कांग्रेस के नेतृत्व वाले संयुक्त लोकतांत्रिक मोर्चे ने केरलम में शानदार जीत दर्ज की है। तमिलनाडु में अभिनेता से राजनेता बने विजय की टीवी के पार्टी ने शानदार प्रदर्शन के साथ राजनीति की शुरुआत की है। 5 राज्यों के 7 विधानसभा सीटों के उपचुनाव में भाजपा ने 4, कांग्रेस ने 2 सीट जीती हैं। एनसीपी की सुनेत्रा पवार ने रिकॉर्ड जीत दर्ज की है। भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में जबरदस्त जीत हासिल कर इतिहास रच दिया है। पार्टी ने विधानसभा की 294 सीटों में से 208 सीट पर बढ़त बना ली है और इनमें से 148 सीटें जीतकर स्पष्ट बहुमत भी हासिल कर लिया है। ममता बनर्जी के नेतृत्व में तृणमूल कांग्रेस को करारी हार का सामना करना पड़ा है। स्वतंत्रता के बाद पश्चिम बंगाल में पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। तृणमूल कांग्रेस 79 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है और इनमें से 54 सीटों पर उसे जीत हासिल हुई है। वाम दल को 1 सीट मिली है और 1 सीट पर आगे है। अन्य को 4 सीटों पर जीत हासिल हुई है। मुख्यमंत्री और टीएमसी नेता ममता बनर्जी भवानीपुर निर्वाचन क्षेत्र से भाजपा के शुभेंदु अधिकारी से पीछे चल रहे हैं। नंदीग्राम सीट से भी शुभेंदु अधिकारी आगे हैं। बहरामपुर सीट से कांग्रेस उम्मीदवार अधीर रंजन चौधरी चुनाव हार गए हैं। असम में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है। विधानसभा की 126 सीटों में से भाजपा और उसके सहयोगी दल 101 सीटें जीत चुके हैं। दूसरी ओर कांग्रेस को 22 सीटों पर बढ़त मिली है और इनमें से वो 19 सीटों पर जीत हासिल कर चुकी है। ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट को 2 सीटें मिली हैं। जालकुबारी निर्वाचन क्षेत्र से मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा चुनाव जीत गए हैं। भारतीय जनता पार्टी के हितेंद्र नाथ गोस्वामी ने जोरहाट सीट से कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गौरव गोगोई को हराया। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में विजय के नेतृत्व में तमिलगा वित्री कड़गम टीवी के सबसे बड़े पार्टी के रूप में उभर कर इतिहास रचने जा रही है। टीवी के 107 सीटों पर आगे है और इनमें से वो 84 सीटें जीत भी चुकी है। मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के नेतृत्व में सत्तारूढ़ डीएमके और उसके सहयोगी दल 74 सीटों पर आगे हैं और इनमें से वो 51 सीट जीत चुके हैं। एआईएडीएमके और उसके सहयोगी दल 53 सीटों पर बढ़त बनाए हुए हैं, इनमें से 35 सीट जीत चुके हैं। पीएमके 4 सीटों पर बढ़त बनाए हुए हैं। तमिलनाडु में चेन्नई से अधिक जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे संवाददाता सुशील चंद्र तिवारी से। जी सुशील, विजय की टीवी के पार्टी की अप्रत्याशित जीत की प्रमुख वजह क्या रही?
1: देखिए लवलीन, जो विजय को सफलता मिली है, उनकी पार्टी टीवीके को सफलता मिली है, ऐसी किसी भी राजनीतिक विश्लेषक को कम से कम चुनाव परिणामों से पहले तक उम्मीद नहीं थी। लेकिन जिस तरीके से युवाओं के बीच विजय का क्रेज था, उनकी एक ब्रांड इमेज सोशल मीडिया पर वो जिस तरीके से वायरल हो रहे थे और खासतौर पर जिस तरीके से तमिलनाडु में 1 करोड़ से ज्यादा युवा वोटर थे, जिसमें 14 लाख से ज्यादा पहली बार बने वोटर थे, यानी जेंजी हम कह सकते हैं, तो युवाओं का एक जबरदस्त समर्थन मिलता हुआ उन्हें दिख रहा है। इसके अलावा जो जयललिता के निधन के बाद एक तरीके से एक सिनेमाई करिश्मा की उम्मीद तमिलनाडु के वोटरों को हमेशा रही है, सिनेमा के लोगों को उन्होंने हमेशा हाथों हाथ लिया।

0: है, चाहे MGR की बात हो या फिर जयललिता की बात हो, तो एक लंबे वक्त तक सिनेमा के प्रति यहाँ के वोटरों का आकर्षण रहा है और वो इमेज और पुख्ता हुई है विजय के आने के बाद। तो एक तरीके से उन्हें जबरदस्त समर्थन युवा वर्ग से भी मिला और खास तौर पर जो एंटी इनकम्बेंसी यानी जो सत्ता के विरोधी मत थे उनमें भी उन्होंने एक बड़ी संख्या में मतों को हासिल किया। हम जानते हैं कि 5 साल से ज्यादा जो है सरकार दोबारा रिपीट होने का यहाँ पर चलन नहीं रहा है, तो उस चलन को देखते हुए डीएमके के खिलाफ जो वोट थे, एंटी इनकम्बेंसी जो वोट थे, वो बड़ी संख्या में उनके पक्ष में गए हैं। तो एक तरीके से उन्होंने पूरे राजनीतिक समीकरण को बदल दिया है और जबरदस्त सफलता हासिल की है। जी लवलीन,
1: धन्यवाद सुशील इस जानकारी के लिए। उधर केरलम में सभी 140 सीटों के परिणाम घोषित हो गए हैं। यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट UDF ने 102 सीटों पर शानदार जीत दर्ज की है, जो सत्ता में उसके निर्णायक वापसी का संकेत है। कांग्रेस ने 63 सीटें जीती हैं, जबकि इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग IUML ने 22 सीटें जीत ली हैं। पूरे राज्य में गठबंधन की स्थिति मजबूत है। सत्तारूढ़ मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने 26 सीटें जीती हैं। सहयोगी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने 8 सीटें जीती हैं, जबकि केरल कांग्रेस को 7 सीटें मिली हैं। भारतीय जनता पार्टी को राज्य में 3 सीटें मिली हैं, 4 सीटें निर्दलीय उम्मीदवारों ने जीती हैं। पुदुचेरी में एन रंगासामी के नेतृत्व वाली अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तहत राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन की सरकार फिर से बनने जा रही है। कुल 30 सीटों में से 28 सीटों के परिणाम आ चुके हैं। एन रंगासामी की AINRC ने 12 सीटें जीती हैं और 2 सीटों पर आगे चल रही है, जबकि भाजपा ने 4 सीटें जीती हैं। AIADMK को 1 सीट मिली है, कांग्रेस को 1 सीट मिली है, DMK को 5 सीटें मिली हैं। असम से अधिक जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे संवाददाता राकेश टोले से। जी राकेश, असम में NDA उम्मीदों के अनुरूप लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है, यही दर्शाता है कि लोगों ने उनके कार्यों पर विश्वास बनाए रखा है।
2: जी, 2026 के असम विधानसभा चुनाव परिणाम राज्य की राजनीति में एक महत्वपूर्ण बदलाव को दर्शाते हैं। देखिए, भाजपा के नेतृत्व वाली एनडीए की 102 सीटों के साथ प्रचंड जीत के पीछे मजबूत नेतृत्व, राजनीतिक गठबंधन प्रबंधन और विकास के साथ पहचान की राजनीति के संतुलित उपयोग जैसे कई प्रमुख कारक रहे। मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व शर्मा इस जीत के केंद्रीय सूत्रधार के रूप में उभरे। इस जीत में लक्षित कल्याणकारी नीतियों की भी अहम भूमिका रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर विकास भी एक महत्वपूर्ण कारक रहा। ब्रह्मपुत्र नदी पर बड़े पुलों का निर्माण, सड़क संपर्क में सुधार और नए मेडिकल कॉलेजों की स्थापना ने डबल इंजन सरकार की कार्य क्षमता को जमीन पर स्पष्ट रूप से प्रदर्शित किया। अवैध घुसपैठ को रोकने और जनसंख्या संतुलन से जुड़े मुद्दों को उठाने की राजनीति मतदाताओं के बीच गहराई से प्रभावी रही। जी
1: धन्यवाद राकेश जानकारी के लिए। भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आज का दिन कई मायनों में ऐतिहासिक और अभूतपूर्व है। नई दिल्ली में भाजपा मुख्यालय में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने ये बात कही।
3: ये देश के उज्जवल भविष्य की उद्घोषणा का दिन है, ये भरोसे का दिन है। भरोसा भारत के महान लोकतंत्र पर, भरोसा परफॉर्मेंस की पॉलिटिक्स पर, भरोसा स्थिरता के संकल्प पर, भरोसा एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना पर।
1: श्री मोदी ने कहा कि चुनाव परिणाम लोकतंत्र की जीत है।
3: 5 प्रदेशों की जनता ने पूरे विश्व को दिखाया है कि ये हमारा भारत मदर ऑफ डेमोक्रेसी क्यों है। लोकतंत्र, डेमोक्रेसी हमारे लिए सिर्फ एक तंत्र नहीं है, ये हमारी रगों में दौड़ता हुआ संस्कार है। और आज सिर्फ भारत का लोकतंत्र ही नहीं जीता है, आज भारत का संविधान भी जीता है।
1: श्री मोदी ने कहा कि देश में गंगोत्री से लेकर गंगा सागर तक भाजपा का कमल खिला हुआ है।
3: आप सबको कहा था, गंगा जी बिहार से आगे बहते हुए गंगा सागर तक जाती है। बंगाल की जीत के साथ गंगोत्री से लेकर गंगा सागर तक कमल ही कमल खिला हुआ है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और अब पश्चिम बंगाल, आज माँ गंगा के इर्द गिर्द बसे इन राज्यों में BJP NDA सरकार है।
1: श्री मोदी ने कहा कि इस बार चुनाव में मतदान के रिकॉर्ड बने और महिलाओं की भागीदारी सर्वाधिक रही।
3: पश्चिम बंगाल में करीब 93% मतदान होना अपने आप में ऐतिहासिक रहा है। असम, तमिलनाडु, पुडुचेरी और केरलम में भी मतदान के नए रिकॉर्ड बने।

0: इसमें भी महिलाओं की भागीदारी बहुत अधिक रही है। ये भारतीय लोकतंत्र की सबसे उजली तस्वीर बन रही है।
1: भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन ने भाजपा और एनडीए पर भरोसा जताने और समर्थन देने के लिए लोगों का आभार व्यक्त किया। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने कहा है कि बंगाल में भाजपा की ऐतिहासिक जीत पार्टी के अनगिनत कार्यकर्ताओं के बलिदान, संघर्ष और शहादत का परिणाम है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने केरलम के लोगों को निर्णायक जनादेश के लिए धन्यवाद दिया है। उन्होंने कहा कि केरलम में प्रतिभा है, क्षमता है और यूडीएफ सरकार इन दोनों का सदुपयोग करेगी। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव एम ए बेबी ने कहा है कि पार्टी केरलम में जनता के फैसले का सम्मान करती है और राज्य में हार के कारणों का आत्मनिरीक्षण करेगी। और चुनाव परिणामों से घरेलू शेयर बाजार में उत्साह का माहौल है। आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं मनोज पाठक।
2: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स आज 356 अंक बढ़कर 77,269 पर बंद हुआ। उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 122 अंक बढ़कर 24,119 दर्ज हुआ। और अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में एक डॉलर की तुलना में रुपया 17 पैसे कमजोर होकर 95.08 रुपए प्रति डॉलर के स्तर पर बंद हुआ।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेली लॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: ये आकाशवाणी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारतीय सशस्त्र बलों और उद्योग ने बदलती परिस्थितियों का विश्लेषण और समझ विकसित कर ली है। उन्होंने कहा कि देश की तैयारी हमेशा अद्यतन उच्च स्तरीय तथा मानक के अनुरूप रहती है और ऑपरेशन सिंदूर इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में नॉर्थ टेक सिंपोजियम के उद्घाटन समारोह में रक्षा मंत्री ने कहा कि सरकार ने भारतीय रक्षा तंत्र को मजबूत करने के लिए कई कदम उठाए हैं। केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने मूगा रेशम उत्पादन में मिजोरम को राष्ट्रीय स्तर पर अग्रणी बनाने की महत्वाकांक्षी योजना प्रस्तुत की। श्री सिंह ने दिन में आइजोल के रेमाबॉक क्षेत्र में स्थित सेरिकल्चर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ने रेशम कताई फैक्ट्री का निरीक्षण किया। श्री सिंह ने बताया कि मिजोरम को मूगा रेशम उत्पादन में अग्रणी बनाने के प्रयास जारी हैं। UPI दुनिया के सबसे बड़े भुगतान प्लेटफॉर्म के रूप में उभर कर सामने आया है। UPI से अप्रैल के महीने में 22 अरब 35 करोड़ लेनदेन किए गए। ये 11 अप्रैल 2016 को अपनी शुरुआत के एक दशक बाद दुनिया की सबसे बड़ी भुगतान प्रणाली बन गया है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भौगोलिक रूप से दूर होने के बावजूद भारत और जमैका के घनिष्ठ संबंध हैं। दोनों ही ग्लोबल साउथ के विकासशील राष्ट्र होने पर गर्व करते हैं। उन्होंने कहा कि दोनों ही देशों ने वैश्विक समुदाय में अपनी अलग पहचान बनाई है। जमैका में एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि भारत उत्सवों, खेलों और मुश्किलों के हर पल में जमैका के साथ खड़ा रहा है। प्रसार भारती के नवनियुक्त अध्यक्ष प्रसून जोशी ने आज नई दिल्ली में सूचना प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात की। उन्हें पिछले सप्ताह प्रसार भारती का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। इससे पहले श्री जोशी मुंबई में केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के अध्यक्ष भी रहे हैं। मुंबई में IPL क्रिकेट में मुंबई इंडियंस और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच मुकाबला जारी है। ताज़ा समाचार मिलने तक लखनऊ ने 16वें ओवर में 5 विकेट पर 179 रन बना लिए हैं। मुंबई ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया था। आयुष मंत्री प्रतापराव जाधव ने इस वर्ष होने वाली अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए आज नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय समिति की बैठक की अध्यक्षता की। इस दौरान आयोजन के संबंध में योजना बनाने और समन्वित क्रियान्वयन पर विचार विमर्श किया गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल में भारी जनादेश के साथ इतिहास रचा। असम में लगातार 3री बार सरकार बनाएगी। पुदुचेरी में NDA ने सत्ता बरकरार रखी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल, असम, पुदुचेरी, तमिलनाडु और केरलम के लोगों और पार्टी कार्यकर्ताओं के प्रति आभार व्यक्त किया। जीत का श्रेय देश के लोकतांत्रिक और संवैधानिक मूल्यों को दिया। कांग्रेस के नेतृत्व वाले संयुक्त लोकतांत्रिक मोर्चे ने केरलम में शानदार जीत दर्ज की। अभिनेता से राजनेता बने विजय की। टीवी के पार्टी ने तमिलनाडु में शानदार प्रदर्शन के साथ राजनीति की शुरुआत की। विधानसभा उपचुनाव में भाजपा ने 4, कांग्रेस ने 2 सीटें जीती। NCP की सुनेत्रा पवार ने रिकॉर्ड जीत दर्ज की और चुनाव परिणाम

नामों से घरेलू शेयर बाजार में उत्साह का माहौल। सेंसेक्स 356 अंक बढ़ा और निफ्टी 24,100 अंक के पार। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: जनादेश 2026
1: असम, केरलम, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और पुदुचेरी के चुनाव नतीजों पर विशेष कार्यक्रम।
2: An election like none other, with unprecedented momentum and movement, and a historic result at the end of the day. Welcome to this special program, Janadesh 2026 on Akashvani. We are covering and analysing the results of four states and one union territory. I'm Vaibhav Jyotsna Srivastav with my co-anchor Sonu Sood.
3: धन्यवाद वैभव. और आज इस भारत राजनीति के महत्वपूर्ण दिन पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में दो अहम कहें कि पॉलिटिकल एनालिस्ट जुड़े हैं, प्रफुल्ल केटकर जी और मिस्टर केवी प्रसाद. आप दोनों का ही स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है.
4: धन्यवाद.
3: सो जैसा कि हम जानते हैं कि आज जो विधानसभा चुनाव अप्रैल में हुए चार राज्यों में और एक केंद्र शासित प्रदेश में, उनके रिजल्ट्स आए हैं. वेस्ट बंगाल आ रहे हैं रादर रिजल्ट्स. अभी तक पूरा नहीं हुआ है रिजल्ट का जो प्रोसेस है, अभी भी काउंटिंग चल रही है. वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, केरला, असम और पुदुचेरी. सो अगर हम शुरुआत वेस्ट बंगाल से करें, जिस पर बहुत सबकी नज़रें थीं और बहुत स्पर्धा थी इस चुनाव में, अगर मिस्टर केवी प्रसाद आपके पास आए तो क्या लगता है आपको, जिस तरह का जनमत आया है बीजेपी के फेवर में, 200 से अधिक सीटें, 294 सीट्स के जो असेंबली है उसमें इतनी बड़ी जो बहुमत आई है, किन उम्मीदों और किस विश्वास पर ये जनमत उनको मिला है, प्राप्त हुआ है, और भारतीय राजनीति के लिए आप इसको कितना बड़ा मील का पत्थर मानते हैं?
4: देखिए, एक तो 15 साल के जो शासन था ममता बनर्जी का, उसके खिलाफ, उनके विरुद्ध काफ़ी सारे समस्याएं थी. और भारतीय जनता पार्टी ने एक ही बात कही थी जो कि मूल मुद्दा जिसे आप पूछें, कि परिवर्तन लाएंगे हम पूरे प्रक्रिया में, उसमें मतलब बंगाल में, चाहे आर्थिक तौर से, चाहे वहाँ लॉ एंड ऑर्डर को ले, तमाम सारे मुद्दे जो कि जनता से जुड़े हुए थे. और जनता, और ये मत सोचिए कि ये सिर्फ 14 दिन का कैंपेन है, कि अगर आप देखें जब से लोकसभा ख़त्म हुआ उसके बाद से लगातार ये प्रयास चलता रहा
3: जी.
4: और विपक्ष के जो नेता हैं सुवेंद्र अधिकारी, वो भी सदन में, और वहाँ पे एक माहौल उन्होंने इस तरह का तैयार किया, और तो उस ये सब जुड़ता चला गया. और बंगाल इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि एक ज़माने में वामपंथियों का गढ़ माना जाता था. 34 साल तक उन्होंने लगातार 77 के बाद, जब तक ममता ने उनको हराया नहीं, तो वो जीतते रहे. तो ऐसे में उस किला को पहले ममता ने गिराया, अब ममता का किला को बीजेपी ने हिलाया.
3: जी बिल्कुल. सो 293 सीटें हैं यहाँ पे और भारतीय जनता पार्टी को 168 सीटों पर जीत प्राप्त हो चुकी है और 40 सीटों पर वह आगे चल रही है. सो जो प्रदेश है पश्चिम बंगाल, उसके भविष्य के लिए आप क्या, अब एक आशा है आपको, किस तरह के बदलाव आने की उम्मीद की जा सकती है?
4: देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जो परिवर्तन की बात की है, वो परिवर्तन तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं, और उसमें उनको लग रहा था कि भाई जैसे कहें कि सबसे बड़ा सुशासन, और भारतीय जनता पार्टी जहाँ जहाँ सरकार बनाई दी है वो डबल इंजन सरकार की बात करती है, और शायद वो एक बंगाल के नागरिकों ने जिन्होंने चाहा कि सरकार बदले, तो उसका परिणाम हमारे सामने है.
2: मिस्टर केतकर, माय क्वेश्चन वुड बी टू यू, द प्राइम मिनिस्टर टॉक्ड अबाउट पेइंग अ डेट टू श्यामा प्रसाद मुखर्जी, द मेंटोर ऑफ द भारतीय जनता पार्टी. ही टॉक्ड अबाउट द पब्लिक्स ट्रस्ट इन द परफॉर्मेंस पॉलिटिक्स. ही टॉक्ड अबाउट एक भारत श्रेष्ठ भारत. ही टॉक्ड अबाउट द डिफीट ऑफ फियर, पोलराइजेशन एंड अपीजमेंट. एंड वी ऑल्सो सॉ अ हिस्टोरिक नंबर ऑफ डिप्लॉयड पर्सनल इन द वेस्ट बंगाल इलेक्शंस. व्हाई वॉज दिस रिक्वायर्ड, और वॉज दिस चेंज ऑन द कार्ड्स?
5: सी वैभव, इफ वी सी द हिस्ट्री ऑफ बंगाल पॉलिटिक्स from 1937 pre-independence period, when Muslim League came to power, every election has been marred with violence. Every election, without any exception.
4: True.
5: In during Communist Party's rule, that got the state patronage, like Sohrawardi did during Muslim League government.

0: And
1: जनादेश 2026 जनादेश 2026
2: मीडिया वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्स ते डीटीएच दी आकाशवाणी पंजाब सेवा दा ए जलंधर केंद्र है। तुसी साडे प्रोग्राम वेव्स ऐप राही भी सुन सकते हो। रात दे साढ़े 9 बज चुके ने। आओ हुण सुणदे हां पंजाबी नाटक प्रमोशन। नाटक दे लेखक ने जसविंदर कौर, भाग लैण वाले कलाकार ने राजेश शर्मा, रजिंदर कुमार, कविता शर्मा, सुनील जोशी, पूनम कालरा, सुखविंदर सिंह, रीमा गोगुलानी, ते पेशकश है गुरविंदर सिंह। आओ सुनते हैं पंजाबी नाटक प्रमोशन।

0: मम्मी, ओ मम्मी, किथे रह गई हैं?
1: आई बीबी जी। हां जी, दसो।
0: तेनु किन्नी बारी क्या है कि मैनु बीबी जी ना क्या कर?
1: ना, बीबी जी ना आखा, ते और की बेबे जी आख्या करा?
0: शट अप, अनपढ़ गवार, इलिटरेट, मैनु मैडम कह के बुलाया कर, मैडम जी।
1: लो जी, साडा की है? असी ता नौकर जो होए, मैडम कह दिया करांगे, खुश?
0: गुड, नाले गल दस, इन्नी बन ठन के हर वेले पहला पौंदी रहनी है, तेनु होर कोई काम नहीं?
1: ओ बीबी जी, आय हाय, मैडम जी, पम्मी ने ता कोई कसौक पालिया होया, मैडम जी, मैं ता पढ़ाई हत्थो मार खागी, बस, वरना?
0: वरना?
1: अब वरना पम्मी ने फैशन दी दुनिया च अग ला देनी सी अग।
0: देखो तो सही, अंदर की रसोई च रख के आई है, किते अग ता नहीं लग गई, कुछ जलन दी स्मेल आ रही है।
1: ओ मैडम जी, तुसी आप ही ता गैस उत्ते भड़थे वास्ते बताऊ रख के आए सी, ओही सड़े होने ने।
0: ओफो, जा फिर जल्दी जाके गैस ऑफ कर।
1: ओ जानी आ, तुस ते एवें करवा जांदे हो।
0: उफ माय गॉड, डैड ने किस निखट्टू दे लड़ ला दिता मेनू। इन्ना नहीं कि एक माइक्रोवेव ही लिया देन। सोचिया सी नेशनल हाईवे च जे ही लगे हुए हैं, खूब कमाई करते होने हैं, पर किथे? इन्हां नूं ते हर वेले ईमानदारी दा भूत चमड़िया रहिंदे, ना आप खांदे हैं ते ना अपने अफसरां नूं खवांदे हैं, इस करके तो हाले तक प्रमोशन नहीं हुई, रह गए ना वही जे ते जे।
2: मैं क्या बबली डार्लिंग, की गल, बड़ा अपने जेई दा नाम जपदी पई है, आखिर इरादा की है?
0: इरादा है अपने पापा दे घर वापस चले जान दा।
2: की गल, सब सुख शांत है उथे?
0: उथे ते सब ठीक है, पर इत्थे कुछ ठीक नहीं है अरमान।
2: आखिर होया की है बबली?
0: हाले खुश होया ही नहीं। ओके, हुन होएगा, जद मैं अपने पेरेंट्स दे घर चली गई ना हमेशा हमेशा वास्ते। पता नहीं तुहाडे घर दे ने की सोच के तुहाडा नाम रखिया सी अरमान। देखो, उस बंदे दा नाम अरमान रख दिता जिदा लाइफ च कोई अरमान ही है नहीं, ना कुछ अच्छा खान दा अरमान, ना अच्छा पहनन दा अरमान, ना लग्जरी दा अरमान, ना कंफर्ट दा अरमान, बस करो ऑफिस, ऑफिस तो कर, बस डेली आ जांदे ने ओई खाली हाथ लटकांदे होए।
2: जे मेरा नाम अरमान ठीक नहीं है ना, ता नाम तेरा भी ठीक नहीं है बबली।
0: ओ किस तरह?
2: तेरा नाम बबली नहीं, यबली होना चाहिदा सी, यबली।
0: ओहो, हुन ता तुहानू मेरीयां गल्लां यबलियां लगदियां ने।
2: ते होर की, आ पैसे वालियां, स्टेटस वालियां, लग्जरीज वालियां तेरीयां गल्लां यबलियां नहीं, ता होर की हुंदियां ने? भई तेनू चंगा भला पता है कि मैं एक सिंपल जेई हां, जूनियर इंजीनियर, जिन्नी मेरी सैलरी है सारी दी सारी तेरे हाथे रख देना हरेक महीने।
0: जूनियर तो सीनियर भी बनो ना, इन्नी की सैलरी दे नाल बनदा की है?
2: देख बबली डार्लिंग, जो मर्जी हो जाए, मैं अपने असूलां नूं नहीं छड़ सकदा।
0: ते मैनू?
2: छड़ ते मैं तेनू भी नहीं सकदा जान, तू तां जान है मेरी।
0: रहन दे अपनी चिकनियां चुपड़ियां, हर वारी ना इसे तरह दियां गल्लां करके तुसी मेरा गुस्सा ठंडा कर दिंदे हो।
2: चल तैयार हो जा फटाफट, तेनू फलूदे वाली कुल्फी खवा के लियाना।
0: ओफ माय गॉड, सोचा सी मेरा हब्बी मेनू डेली नवे नवे फ्लेवर्स वाली आइसक्रीम खवाएगा, पर रहेगी ना किस्मत चोही फलूदे वाली कुल्फी।
2: हेलो, हां दास रामलाल, रोड रोलर फिर खराब हो गया? ओ यार, तेनू किन्नी बारी क्या भी एदी किसे सही मकैनिक को रिपेयर

味吧。哇，इतना डिलीशियस खाना तो मैं अपनी पूरी लाइफ से नहीं खाता। आप मिस्टर रहमान

0: हमें सज रहना होगा, नकारात्मकता हावी ना हो जाए। हमें सज रहना होगा, नकारात्मकता हावी ना हो जाए। कभी भी सकारात्मकता पर अंतर्द्वंद तो चलता रहेगा, युगों युगों तक, अनंत काल तक, निरंतर।
1: बहुत अच्छे,
2: अनंत काल तक निरंतर।
0: दूसरी कविता का विषय है पिता। पिता होते हैं पर्वत से, पर्वत से भी ऊंचा है केवल एक किरदार पिता का, औलाद ही होती है।
2: पर्वत से भी ऊंचा है एक किरदार पिता का,
0: औलाद ही होती है बस पूरा संसार पिता का। चाचे ताए बहुत से रिश्ते, नदियां झीलों की मानिंद, सब रिश्तों से ऊपर है सागर सा विस्तार पिता का।
1: बहुत अच्छे, बहुत अच्छे।
0: अपनी हसरतें दफन हृदय में, कर सकता जो जीवन भर, हम जो मांगे मिल जाता है, ऐसा है इकरार पिता का। पानी सा रिश्ता है उनसे, घुल मिल जाए इस कदर।
1: वाह वाह,
0: पानी सा रिश्ता है उनसे, घुल मिल जाए इस कदर, घनिष्ठ मित्र सा रहता है बच्चों से व्यवहार पिता का। डांट में भी जो शिक्षा देता, डांट में भी जो शिक्षा देता वो सच्चा मार्गदर्शक, जिंदगी को जीना सिखलाता, ऐसा है संस्कार पिता का।
2: पिता का
0: जीवन भर संघर्ष है करता, देखिए सर,
2: वाह वाह वाह,
0: जीवन भर संघर्ष है करता, आंधी आए या तूफान, जीवन भर संघर्ष है करता, आंधी आए या तूफान, मंजिल पर जब पहुंचे बेटा वो सपना साकार। लास्ट पैरा है, खारा पानी आंखों में रख, खारा पानी आंखों में रख, बेटी की जो करे विदाई, बस ऊपर से जो छलके, वो होता है प्यार पिता का, वो होता है प्यार।
1: बहुत तुम बहुत अच्छे, पिता को बहुत अच्छे ढंग से आपने
2: अंतर्ध्वंद और प्यार पिता की बात अभी आप सुन रहे थे सुभाष भास्कर जी से
0: जी।
2: और अब मैं जिस शख्स को दावत देने जा रहा हूँ वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, वो कविता भी लिखते हैं, नज़म भी लिखते हैं, गज़ल भी लिखते हैं। मेरी मुराद सैली बलजीत साहब से है। सैली बलजीत,
1: शुक्रिया जी,
2: स्वागत है आपका।
1: गज़ल के कुछ शेर प्रस्तुत कर रहा हूँ।
2: वाह वाह जी, स्वागत है।
1: गज़ल का मतलब देखिए,
2: अर्शाद,
1: जीना है तो जिंदगी को संवारना सीख,
2: वाह वाह वाह वाह,
1: जीना है तो जिंदगी को संवारना सीख, किसी के पांव का कांटा निकालना सीख, किसी के पांव का कांटा निकालना सीख। तो शेर देखना
2: जी,
1: कीमती जागीर है
2: जी
1: फिर मैसर नहीं होगी, कीमती जागीर है फिर मैसर नहीं होगी, घर के बुजुर्गों को पगले संभालना सीख।
0: बहुत वाह, बहुत
2: वाह, वाह, वाह।
1: कीमती जागीर है फिर मैसर नहीं होगी, घर के बुजुर्गों को पगले संभालना सीख। तो शेर है
2: जी,
1: दरख्त भी होते हैं बच्चों की मानिंद, दरख्त भी होते हैं बच्चों की मानिंद, बच्चों की तरह इनको पालना सीख, बच्चों की तरह इसको पालना सीख। तो शेर देखना, सियासत के शहर में सब चलता है,
2: वाह फिर कहिए,
1: सियासत के शहर में सब चलता है, खोटा सिक्का तो भी उछालना सीख,
2: खोटा सिक्का,
1: खोटा सिक्का तो भी उछालना सीख। तो शेर है, परिंदे खुद ब खुद आ जाएंगे जाल में, परिंदे खुद ब खुद आ जाएंगे जाल में, सलीके से उनको दाना डालना सीख, सलीके से उनको दाना डालना सीख। तो शेर देखना, इस शहर में रहने का ये हुनर है, इस शहर में रहने का ये हुनर है, इस शहर में रहने का ये हुनर है, आस्तीन में सांप तुम भी पालना सीख, आस्तीन में सांप तुम भी पालना सीख। तो शेर देखना, जीने का सलीका तुम सीख ही जाओगे, जीने का सलीका
2: तुम सीख ही जाओगे,
1: सीख ही जाओगे, ख्वाबों को हकीकत में डालना सीख,
2: ख्वाबों को हकीकत में डालना सीख।
1: तो शेर देखना
2: जी,
1: कितना हौसला रखते हो तुम क्या जानो, कितना हौसला रखते हो तुम क्या जानो, दुश्वारियों लाचारियों को टालना सीख।

0: मुक्तक है,
1: इरशाद
0: आपसे मुझको मोहब्बत है बहुत।
2: क्या बात,
0: आपसे मुझको मोहब्बत है बहुत, आपको मुझसे अदावत है बहुत।
1: वाह
2: वाह,
0: आपसे मुझको मोहब्बत है बहुत, आपको मुझसे अदावत है बहुत। अरे हमने कब मांगा वफाओं का सिला, हमने कब मांगा वफाओं का सिला, आपको फिर भी शिकायत है बहुत।
2: बहुत
0: आपको फिर भी शिकायत है बहुत। एक और है मुक्तक है, जब घटा आसमां पे छाई है, जब घटा आसमां पे छाई है तेरी जुल्फों की याद आई है।
1: याद आई है, वाह।
0: जब घटा आसमां पे छाई है तेरी जुल्फों की याद आई है, तू सितम तोड़ता रहा मुझ पर,
1: तू सितम तोड़ता रहा मुझ पर
0: खैर मैंने तेरी मनाई।
1: वाह वाह
2: वाह,
0: खैर मैंने
1: क्या अंदाज़
0: है,
1: वाह
0: मनाई है। एक और मुक्तक, एक दो पेशे खिदमत है, उसके बाद मैं गजल कहना चाहूंगा आपकी इजाजत से
2: जी।
0: ये गंगा है पावन गंगा, गंगा की बात चलती है आजकल बहुत पानी,
1: ये गंगा है
0: पावन गंगा, गंगा को अविरल बहने दो, ये गंगा है पावन गंगा, गंगा को अविरल बहने दो, गंगा से हो तन मन निर्मल, गंगा को निर्मल रहने दो,
2: गंगा को
0: निर्मल रहने दो। एक और मुक्त
1: ये
0: आपकी नजर, किसने चीर हरा द्रुपदा का, किसने चीर हरा द्रुपदा का, किसने लज्जा अपहृत कर ली, किसने चांद की सारी ठंडक अपने गोदामों में, किसने चांद की सारी ठंडक अपने गोदामों में। कहो तो धूप पर लिख दूं, आपकी नजर है सैली साहब,
2: तो धूप पर लिख,
0: कहो तो धूप पर लिख दूं, उतरती छांव पर लिख दूं, लिखूं रिश्मों की कलमों से हरित कचनार पर लिख दूं, कहो तो धूप पर लिख दूं, उतरती छांव पर लिख दूं, लिखूं रश्मों की रश्मि की कलमों से हरित कचनार पर लिख दूं, कहो तो बाल पर लिख दूं, कहो तो बाल पर लिख दूं, झुकाकर डाल पर लिख दूं, हवा के हाथ पर लिख दूं, समय के पांव पर लिख दूं, हवा के हाथ पर लिख दूं, समय के पांव पर लिख दूं, कहो तो मानसर जाकर कमल की पांत पर लिख दूं।
2: बहुत खूब,
0: कहो तो मानसर जाकर कमल की पांत पर लिख दूं, फूल की डाल पर लिख दूं, हरित कचनार पर लिख दूं।
1: बहुत अच्छे, बहुत अच्छे।
0: फूल की डाल पर लिख दूं, हरित कचनार पर लिख दूं, लिखूं सूरज के माथे पर, लिखूं सूरज के माथे पर, चांद के गाल पर लिख
1: दूं। क्या क्या उड़ान है, क्या?
0: लिखूं सूरज के माथे पर, चांद के गाल पर लिख दूं, लिखूं सुबह की चूनर पर, लिखूं सुबह की चूनर पर, सांझ के द्वार पर लिख दूं, लिखूं सुबह की चूनर पर, सांझ के द्वार पर लिख दूं, कहो उत्तुंग शिखरों पर हिमालय भाल पर लिख दूं,
1: हिमालय भाल,
0: कहो उत्तुंग शिखरों पर हिमालय भाल पर लिख दूं, पवन के वेग पर लिख दूं, घटा घनकोर पर लिख दूं। तो ये पंक्तियां सुनिएगी,
2: क्या बात,
0: तुम्हारा नाम प्यारा है महज इस ख्याल से लिख दूं।
2: ओ क्या बात,
0: तुम्हारा नाम प्यारा है
2: महज
0: इस ख्याल से लिख दूं। तो एक गजल छोटी सी, छोटे पैर की, मतलब हजर है, नागमणि को नाग खा गए, नागमणि को नाग खा गए, कारे बदरा राग खा गए, नागमणि को नाग खा गए, कारे बदरा राग खा गए, मलिक का खा गए हलवा पूरी, मलिक का खा गए हलवा पूरी,

0: विदुर के घर का साग खा गए, विदुर के घर का साग,
1: खा
0: अपना हिस्सा खाना ही था। आज की दुनिया अपना हिस्सा खाना ही था, औरों का भी भाग खा गए, हिंस
1: वाह
0: के हिस्से, अपना हिस्सा खाना ही था, औरों का भी भाग खा गए, हंस के हिस्से दाना दुन का, हंस के हिस्से दाना दुन का, हीरा मोती काग खा गए,
1: ओ
0: हम तो
1: वाह
0: हम बदनाम हो गए,
1: वाह,
0: हम तो हम
1: बदनाम हो
0: बदनाम
1: गए,
0: हो गए, वो तो सब बेदाग खा गए,
1: बेदाग खा
0: वाह
1: गए,
0: वाह,
1: है
0: वो
1: ना।
0: तो सब
1: खूब, बहुत
0: बेदाग खा
1: शिवर
0: गए।
1: जी, बहुत खूब।
0: तो ये मैं अपनी छोटी बहन की इस गज़ल के बाद मैं दूसरे दौर की ओर जाना चाहूँगा,
1: जी
0: और उसके दौरान भी मैं सुभाष भास्कर जी
1: मास्टर
0: से गुजारिश करना चाहूँगा
1: जी
0: कि वह अपनी कोई एक
1: जी
0: एक कविता, पहले दौर में दो दो कविताएं चली
1: जी
0: थी,
1: जी
0: अब मैं चाहूंगा कि वो एक कविता आप सबके सामने और हमारे सामने प्रस्तुत करें।
1: जी
0: सुभाष बस भास्कर
1: जी सो आजकल पंजाब
0: स्वागत
1: में
0: स्वागत।
1: नशे का जो चल रहा है उसी पर एक कविता है, पेश है।
0: जी
1: युद्ध नशे के विरुद्ध,
0: हाँ
1: एक युद्ध और लड़ना होगा,
0: हाँ
1: नशे के विरुद्ध खड़ना होगा।
0: वाह वाह वाह वाह,
1: एक युद्ध और लड़ना होगा, नशे के विरुद्ध
0: वृद्ध
1: खड़ना
0: खड़ना
1: होगा,
0: होगा,
1: लेकर मशाल हाथों में अब
0: हाँ
1: सीमा की ओर बढ़ना होगा,
0: बढ़ना होगा, हाँ
1: जोश से बिगल बुझाना होगा,
0: हाँ
1: निर्दोष जवानी को बचाना होगा,
0: हाँ
1: सीमा पर खड़े हैं जो प्रहरी, कंधा उनसे मिलाना
0: वाह
1: होगा।
0: वाह वाह वाह वाह वाह,
1: कसनी होगी लगाम हमको, ड्रोनों को मार गिराना होगा,
0: जी
1: चिट्टे के काले कारनामों को जड़ से हमें मिटाना होगा।
0: वाह वाह वाह वाह वाह वाह, बहुत अच्छी कविता, बहुत अच्छी
1: मौत के इन सौदागरों को,
0: जी,
1: मौत के इन सौदागरों को अच्छा सबक सिखाना
0: सिखाना
1: होगा,
0: होगा,
1: युवाओं को भी समझाना होगा,
0: हाँ
1: जागरूक इन्हें भी बनाना होगा।
0: हाँ
1: किस हद तक गिर गए ये तस्कर, किस
0: वाह
1: हद तक गिर गए ये तस्कर, देने लगे हैं दवाओं में जहर, गांव गांव और शहर शहर, रखनी होगी पैनी नजर, बदलाव हमें लाना होगा, नशा मुक्त समाज बनाना होगा, नशा मुक्त समाज बनाना
0: नशा
1: होगा।
0: मुक्त समाज बनाना होगा।
1: धन्यवाद जी,
0: तो
1: बहुत
0: भास्कर
1: अच्छा
0: जी
1: जी, बहुत
0: की इस
1: अच्छा।
0: कविता के बाद मैं अब दावत देना चाहूँगा एक बार फिर सैदी जी जी से कि वो अपनी कोई एक गज़ल या नज़म आप सबके, हमारे श्रोताओं के सामने प्रस्तुत करें।
1: शुक्रिया जी। दूसरे दौर में गजल के कुछ शेर स्वागत है जी।
0: प्रस्तुत कर रहा हूँ,
1: जी
0: मुलाहजा फरमाइए।
1: जी
0: गजल का मतलब देखिए, बुलंद आवाज में बोलिए।
1: बचा के कुछ वीरानी रख लेना तुम,
0: हाँ
1: बचा के कुछ वीरानी रख
0: हाँ
1: लेना तुम, आँख में कुछ पानी रख लेना तुम,
0: हाँ
1: आँख में कुछ पानी रख
0: रख
1: लेना
0: लेना
1: तुम।
0: तुम,
1: तो शेर देखना, वक्त की शाख से टूट जाती हैं,
0: वाह वाह
1: वक्त की शाख से टूट जाती हैं, कुछ यादें पुरानी रख लेना
0: रख
1: तुम,
0: लेना तुम।
1: कुछ यादें पुरानी रख
0: है
1: लेना तुम। तो शेर देखना,
0: जी जी रख
1: दाना दुन का भी है पिंजरा भी, दाना दुन
0: है
1: का भी है पिंजरा भी, एक चिड़िया रानी तू भी रख ला तुम,
0: वाह वाह
1: एक चिड़िया रानी रख लेना तुम। तो
0: वाह वाह
1: शेर है, यादें बचपन की
0: जी,
1: सताएंगी तुम्हें,
0: आह
1: यादें बचपन की सताएंगी सताएंगी
0: तुम्हें,
1: तुम्हें, चूड़ियों की निशानी रख लेना तुम,
0: वाह वाह वाह वाह,
1: चूड़ियों की निशानी
0: रख लेना
1: रख
0: तुम।
1: लेना तुम। तो
0: हाँ जी
1: शेर देखना,
0: जी अच्छा
1: नींद आ ही जाएगी बच्चे को,
0: जी
1: नींद आ ही जाएगी बच्चे को,
0: जी
1: साथ में एक कहानी रख लेना
0: रख लेना
1: तुम,
0: तुम, वाह वाह
1: साथ
0: वाह
1: में
0: वाह,
1: एक कहानी रख लेना तुम, 4 दिनों की महिमा होती है।
0: जी
1: शेर देखना,
0: जी
1: 4 दिनों की महिमा होती है,
0: हाँ,
1: संभाल के जवानी रख लेना तुम,
0: वाह वाह वाह वाह वाह,
1: 4 दिनों की महिमा
0: महिमा
1: होती
0: होती
1: है,
0: है,
1: संभाल
0: संभाल के
1: के
0: जवानी रख
1: जवानी
0: लेना,
1: रख लेना
0: वाह
1: तुम।
0: वाह
1: तो शेर है, दानिशमंदों की बस्ती में रहते हो,
0: वाह वाह वाह वाह, दानिशमंदों की बस्ती में रहते हो।
1: दानिशमंदों की बस्ती में रहते हो,
0: वाह
1: बातें कुछ सयानी रख लेना तुम।
0: वाह वाह वाह वाह।

0: कुछ सयानी रख लेना तुम। तो शेर है, बारिशें आएंगी सताएंगी भी तुम्हें, बारिशें आएंगी सताएंगी भी तुम्हें, साथ शामें सुहानी रख लेना तुम, साथ शामें सुहानी रख लेना तुम। चांद के लिए मचलेगा बच्चा जब भी, चांद के लिए मचलेगा बच्चा जब भी, थाली में पानी रख लेना तुम, थाली में पानी रख लेना तुम।
1: तो साहेब, दूसरे दौर की इस बारी में मैं अपनी बारी के दृष्टिगत के जरिए अपनी एक गजल छोटे बहर की पेश करना चाहता हूँ। उससे पहले दो मुक्तक आपकी नजर है, कुछ इस तरह से वक्त के तेवर बदल गए, कुछ इस तरह से वक्त के तेवर बदल गए, कल तक थे मेरे मेहरबान यक्सर बदल गए, कल तक थे मेरे मेहरबान यक्सर बदल गए, वो गली, भास्कर साहब
2: जी,
1: वो गली रह गुजर बनी जिनके सबब दोस्तों, वो गली रह गुजर बनी जिनके सबब दोस्तों, अफसोस उस गली से वो घर बदल गए, अफसोस उस गली से
0: घर बदल
1: गए।
2: क्या बात।
1: तो एक और कथा है, वफा की डगर पर जरा दूर चल के, वफा की शैली साहब, वफा की डगर पर जरा दूर चल के वो फिर रूठ बैठे हैं पहलू बदल के, वफा की डगर पर जरा दूर चल के वो फिर रूठ बैठे हैं पहलू बदल के, वो कर देंगे अफशां ये राज़े मोहब्बत,
2: क्या बात,
1: वो कर देंगे अफशां ये राज़े मोहब्बत, जो आंखों से निकलेंगे आंसू पिघल कर, वो कर देंगे अफशां ये राज़े मोहब्बत, जो आंखों से निकलें के आंसू पिघल कर। तो गजल है, बताए, पहले तो वो कभी कभी ही लूटा करते थे, पहले तो वो
0: कभी कभी
1: कभी कभी ही लूटा करते थे, लूट से पहले बैंक में हफ्ता भरते थे,
0: वाह वाह वाह,
1: लूट से पहले
2: बैंक में
1: पुलिस बैंक में हफ्ता भरते थे, आज स्नैचर लूट पीट कर घायल करते हैं, कल तक वो अलबत्ता थोड़ा दीन से डरते थे, तो एक समय अदना सिपाही की भी इज्जत होती थी, सब चोर लुटेरे उससे बेशक डरा भी करते थे। एक और छोटी गजल के दो चार
0: इरशाद,
1: उड़ गए थे जो खग आए हैं,
2: उड़ गए थे
1: जो खग आए
0: खग
1: हैं, भेष बदल के ठग आए हैं,
0: ठग आए हैं,
1: उड़ गए थे जो खग आए हैं, भेष बदल कर ठग आए हैं, बुझे चिरागों जैसे हैं ये, जितना जगना जग आए हैं,
2: जग आए हैं, क्या बात,
1: बुझे
0: जितना जगना
1: से जैसे हैं ये, जितना जगना
0: जग आए हैं,
1: जग आए हैं, जेलम रावी और चिनाब, जेलम रावी और चिनाब, लेंदे हिस्से रख आए हैं,
0: वाह वाह, क्या उड़ान,
1: जेलम
0: क्या बात है,
1: रावी और चिनाब लेंदे हिस्से रख आए हैं, जितनी छोटी बुद्धि इनकी, जितनी छोटी बुद्धि इनकी उतना छोटा कद लाए हैं,
2: वाह बहुत खूब,
0: बिल्कुल ठीक,
1: जितनी छोटी बुद्धि इनकी उतना छोटा कद लाए हैं, हंस को हिस्से के हीरे, हंसों के हिस्से के हीरे, काले को वे चुगाए हैं,
2: बहुत खूब,
1: हंसों के हिस्से के हीरे, काले को वे
0: चुगाए हैं, बहुत अच्छे,
1: कैक्टस वाले गमलों में ज्यो, कैक्टस
0: वाले गमलों में ज्यो,
1: फूल काशनी खिलाए हैं, कैक्टस वाले गमलों में ज्यो, फूल काशनी खिलाए हैं, नायक से धारण कर वस्त्र, नायक से धारण कर वस्त्र, खलनायक से खल आए हैं, नायक से धारण कर वस्त्र,

0: खलनायक से खलाए हैं आदम की बस्ती के अंदर, आदम की
1: बस्ती के अंदर।
0: बस्ती के अंदर खर दूषण भी चल आए हैं।
2: वाह वाह वाह वाह,
0: खाया मलिक का हीरा हलवा पूरी, साग विदुर का दल आए हैं, छोटे कद के ये अजगर हैं, पूरा शहर निगल आए
2: वाह वाह
1: हैं।
2: वाह वाह,
0: छोटे
2: निगल
0: कद
2: आए
0: के
2: हैं,
0: ये अजगर हैं,
1: पूरा
0: पूरा
1: शहर निगल
0: शहर
1: आए,
0: निगल
1: बहुत
0: आए
1: खूब।
0: हैं।
1: छोटी सी कविता, एक एक पेड़ माँ के नाम।
0: वाह वाह,
1: एक पेड़ अगर माँ के नाम लगाएंगे तभी तो पर्यावरण हम बचा
0: बचा
1: पाएंगे।
0: पाए।
1: आम और जामुन अगर पेड़ लगाएंगे, रसीले फल तभी तो खा हम पाएंगे।
0: वाह वाह
1: नींबू और मौसम्मी खूब उगाएंगे, गर्मी से तभी तो राहत पाएंगे।
0: जी,
1: आंवला हर बेहड़ा यदि लगाएंगे, बीमारियों से निजात इन्हीं से पाएंगे।
0: वाह
1: पहाड़ों पर भी पेड़ पौधे जब लाएंगे, हरे भरे पर्वत फिर से हो जाएंगे। कर
0: वाह
1: प्रयास जंगल को अगर बचाएंगे, फिर से पंछी उन पर चहचहाएंगे। मेघा फिर धरती पर जल बरसाएंगे, गीत खुशी में मिलकर।

0: निकल आए हैं,
1: ये अजगर हैं,
2: पूरा शहर निकल
1: बहुत आए हैं।
2: छोटी सी कविता, एक एक पेड़ माँ के नाम।
1: वाह वाह।
2: एक पेड़ अगर माँ के नाम लगाएंगे तभी तो पर्यावरण हम बचा पाएंगे। आम और जामुन अगर पेड़ लगाएंगे रसीले फल तभी तो खा हम पाएंगे। नींबू और मौसमी खूब उगाएंगे गर्मी से तभी तो राहत पाएंगे।
1: जी।
2: आंवला हर बहेड़ा यदि लगाएंगे बीमारियों से निजात इन्हीं से पाएंगे। पहाड़ों पर भी पेड़ पौधे जब लाएंगे हरे भरे पर्वत फिर से हो जाएंगे। कर प्रयास जंगल को अगर बचाएंगे फिर से पंछी उन पर चहचहाएंगे। मेघा फिर धरती पर जल बरसाएंगे गीत खुशी में मिलकर हम सब गाएंगे। गीत खुशी में मिलकर हम सब।
1: तो चलिए ये गीत खुशी के थे जो अभी गाए गए, अभी सुनाए गए हमारे आकाशवाणी की इस काव्य गोष्ठी में। हमारे पास तशरीफ फरमा हुए थे जनाब सैदी बलजीत साहब और श्री सुभाष भास्कर जी और मैं सिमर सदोष। मैं आपसे अब विदा होने की इजाजत चाहूँगा।
2: बहुत बहुत
1: शुक्रिया नवाजश। धन्यवाद।
0: शुक्रिया जी। बहुत बहुत
3: हुणे तुसी कवि गोष्ठी सुन रहे सी पागलन वाले कलाकार सन सैली बलजीत, सुभाष चंद्र ते सिमर सदोष। आकाशवाणी का यह जलंधर केंद्र है। लहू समात फरमाओ चंद गजलां। सब तो पहला पिनाज मसानी की आवाज़ च यह गजल समात फरमाओ।

0: आशा भोसले ते भुपिंदर सिंह दी गाई इस गजल दे नाल ही गजलां दा प्रोग्राम इत्थे ही खत्म करन दित्ती हो इजाजत। आकाशवाणी दा ए जलंधर केंद्र है, हुण तो कुछ ही पलां विच यानी रात 11 बजे साडे दिल्ली केंद्र तों सुनोगे हिंदी समाचार ते रात 11:05 तों सुनोगे अंग्रेजी समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। चार राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश के विधानसभा चुनाव की मतगणना जारी है। भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में जबरदस्त जीत हासिल कर इतिहास रच दिया है। पार्टी ने अभी तक विधानसभा की 293 सीटों में से 197 सीटें जीतकर स्पष्ट बहुमत हासिल कर लिया है। स्वतंत्रता के बाद पश्चिम बंगाल में पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। तृणमूल कांग्रेस को 68 सीटों पर जीत हासिल हुई है। वाम दल को एक सीट मिली है, अन्य को 4 सीटों पर जीत हासिल हुई है। मुख्यमंत्री और टीएमसी नेता ममता बनर्जी भवानीपुर निर्वाचन

0: जन क्षेत्र में भाजपा के शुभेंदु अधिकारी से 15,000 से अधिक मतों से हार गई हैं। नंदीग्राम सीट से भी शुभेंदु अधिकारी ने जीत दर्ज की। बहरामपुर सीट से कांग्रेस उम्मीदवार अधीर रंजन चौधरी चुनाव हार गए हैं। असम में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है। विधानसभा की 126 सीटों में से भाजपा और उसके सहयोगी दल 102 सीटें जीत चुके हैं। दूसरी ओर कांग्रेस को 21 सीटों पर बढ़त मिली है और इनमें से वो 19 सीटों पर जीत हासिल कर चुकी है। ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट को 2 सीटें मिली हैं। जालुकबारी निर्वाचन क्षेत्र से मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व सरमा चुनाव जीत गए हैं। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में विजय के नेतृत्व में तमिलगा वेत्री कड़गम टीवी के सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभर कर इतिहास रचने जा रही है। टीवी के ने 103 सीटें जीत ली हैं और वो 4 सीटों पर आगे है। टीवी के अध्यक्ष विजय ने अपनी दोनों सीटों परम्बूर और तिरुची में जीत दर्ज की। मुख्यमंत्री एम के स्टालिन के नेतृत्व में सत्तारूढ़ डीएमके के 56 सीट जीत चुकी है। AIADMK 45 सीट जीत चुकी है। कांग्रेस ने 2 सीटों पर जीत दर्ज की और भारतीय जनता पार्टी 1 सीट पर आगे चल रही है। कोलाथूर सीट से मुख्यमंत्री और द्रविड़ मुनेत्र कड़गम के उम्मीदवार एम के स्टालिन को तमिलगा वेत्री कड़गम पार्टी के बीएस बाबू ने 8,795 मतों के अंतर से हराया। केरल में सभी 140 सीटों के परिणाम घोषित हो गए हैं। यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट यूडीएफ ने 102 सीटों पर शानदार जीत दर्ज की है, जो सत्ता में उसकी निर्णायक वापसी का संकेत है। कांग्रेस ने 63 सीटें जीती हैं, जबकि इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग IUML ने 22 सीटें जीत ली हैं। पूरे राज्य में गठबंधन की स्थिति मजबूत है। सत्तारूढ़ मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी CPIM ने 26 सीटें जीती हैं। सहयोगी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी CPI ने 8 सीटें जीती हैं, जबकि केरल कांग्रेस को 7 सीटें मिली हैं। भारतीय जनता पार्टी को राज्य में 3 सीटें मिली हैं। 4 सीटें निर्दलीय उम्मीदवारों ने जीती हैं। पुदुचेरी में एन रंगासामी के नेतृत्व वाली अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस AINRC के तहत राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन NDA की सरकार फिर से बनने जा रही है। कुल 30 सीटों में से 29 सीटों के परिणाम आ चुके हैं। एन रंगासामी की AINRC और सहयोगी दलों को 17 सीटें मिली हैं। भाजपा ने 4 सीटें जीती हैं। AIADMK को 1 सीट मिली है, कांग्रेस को 1 सीट मिली है, DMK को 5 सीटें मिली हैं। 5 राज्यों की 7 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में भाजपा ने 4 सीटों पर जीत हासिल की है, जबकि कांग्रेस को 2 और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को 1 सीट मिली है। गुजरात की उमरेठ सीट पर भाजपा के उम्मीदवार हर्षद भाई गोविंद भाई परमार चुनाव जीत गए हैं। महाराष्ट्र की राहुरी सीट पर भाजपा के अक्षय शिवाजी राव करदिले को जीत मिली है। नागालैंड में कोरिडांग सीट पर भाजपा के दाओचियर इमचेन विजयी रहे हैं। त्रिपुरा में धर्मनगर सीट से भाजपा के जाहर चक्रवर्ती को जीत मिली है। कर्नाटक में बागलकोट सीट से कांग्रेस के उमेश हुलप्पा मेदी को जीत मिली है। कर्नाटक में जीत गए हैं। महाराष्ट्र में बारामती सीट पर उपचुनाव में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की सुनेत्रा अजीत पवार विजयी रही हैं। भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आज का दिन कई मायनों में ऐतिहासिक और अभूतपूर्व है। नई दिल्ली में भाजपा मुख्यालय में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने ये बात कही। श्री मोदी ने कहा कि ये चुनाव परिणाम लोकतंत्र की जीत है। IPL क्रिकेट में मुंबई में लखनऊ सुपर जायंट्स ने मुंबई इंडियंस को 229 रन का लक्ष्य दिया है। जवाब में ताजा समाचार मिलने तक मुंबई ने 17वें ओवर में 3 विकेट पर 198 रन बना लिए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय रेणुका। The Bharatiya Janata Party BJP has scripted history in West Bengal by securing an overwhelming mandate in the 294-member state assembly. The ruling BJP-led NDA has secured a historic third consecutive term in Assam. In Keralam, the United Democratic Front has swept the polls with 99 seats, signalling a decisive return to power. Puducherry is expected to witness the return of a National Democratic Alliance NDA government led by N. Rangaswamy's All India NR Congress AINRC. In West Bengal, BJP candidate Shubhendu Adhikari defeated West Bengal Chief Minister and TMC leader Mamata Banerjee.

बहुत ही प्यारा गीत सतविंदर बिट्टी की आवाज़ असीं सुनिया और उम्मीद करते हैं तुसीं भी पूरा पूरा आनंद माने होगा। इस गीत की फरमाइश सानू मनजीत कौर जी ने दिल्ली तो की सी, यानी कि उन्होंने प्रोग्राम सुगात का पूरा रंग ही बना दिता। इस तरह लग रहा है कोई फंक्शन चल रहा जी, कोई छोटा मोटा प्रोग्राम हो रहा है तो जिते आप सारे बह के रल मिल के इंजॉय कर रहे हैं, है ना जी। इस तरह दल्ला बात चलते रहनगियाँ, होर प्यारे प्यारे गीत भी सुनते रहोंगे। प्रोग्राम चल रहा जी सुगात, बस साढ़े नाल इस तरह जुड़े रहो। तो आओ फिर हम गलबात करते हैं जी प्रोग्राम के अगले कॉलर के नाल। हैलो, हाँ जी कौन बोल रहे हैं जी, किस जगह तो? थोड़ी आवाज थोड़ी कट रही है जी। हेलो, जी आज केड़ा की सुनना चाहोगे? हंसराय हंसदा गीत सिली सिली हवा, ठीक है। थोड़ी कॉल बहुत ज्यादा क्लियर नहीं आ रही, पर थोड़ी फरमाइश थोड़े तक जरूर जरूर पहुंचेगी जी। हंसराज हंस ते साथियों ने गाया हुआ है यह गीत। प्रोग्राम चल रहा जी सौगात, मैं थोड़ा आज दोस्त अमित इस गीत तो बाद फिर हाजिर होना जी।

बारिश हो रही है, मीह पै रहा है, बहुत खुशी की गल है क्योंकि पिछले गर्मी बहुत से उम्मीद है कि लोगों को काफी राहत मिली हुई। जी जी चलो प्रीतम जी बहुत चंगा लगा तुम्हें गलबात करके, हम दसो गीत क्या सुनना चाहोगे? सुरिंदर शिंदे का गीत सुनना चाहते हैं प्रीतम जी, पुत जट्टां दे, बहुत ही प्यारा गीत है जी। तो लो जी मैं ट्रैक भी कढ़ लिया बाहर, इन्हों गीत सुनवाने जी सुरिंदर शिंदा दी आवाज़ों में। प्रोग्राम चल रहा जी सौगात, इस गीत तो बाद मैं तुहाडे कोल तुहाडा दोस्त आर जे अमित दोबारा हाजिर हुंदा जी, तुसीं गीत नूं इंजॉय करो।

0: हेलो।
1: हेलो
0: हाँ जी, कौन सा बोल रहे हैं जी, किस जगह तो?
1: शर्मा सर, केरा कॉलोनी।
0: जी बहुत बहुत स्वागत है तरमा सागर जी, थोड़े अपने प्रोग्राम सुगात विच। की हाल चाल ने
1: बहुत बढ़िया सर, ये
0: जी?
1: तो कर
0: जी
1: रहे
0: शायद मौसम का हाल दसो, किदा दे ने?
1: सर। बढ़िया, मेर मेर तूफान चल रहा सर, तो बारिश हो रही थोड़ी।
0: बारिश हो रही है? ओहो, चलो चलो, मौसम थोड़ा खुशगवार हो गया हूँ फिर।
1: हो
0: ते इन्ने प्यारे मौसम तुम केड़ा गीत सुनाइए फिर?
1: गया
0: हाँ, असी अलड़पुण चखियां ला बैठे। ए जी सुरेश वाडकर, तरनजीत कौर का एक युगल गीत है जी। वाकई इस मौसम च बहुत जचदा, बहुत फबदा गीत है। तरमसकर जी, कॉल करने लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तुहाड़ी पसंद का गीत तुहाड़े तक पहुँच रहा है, असं उम्मीद करते हैं सन तुसीं दोबारा भी कॉल करोगे। धन्यवाद जी।

0: हेलो हेलो,
1: सर
0: हाँ जी जी कौन बोल रहे हैं? अपना नाम दसो।
1: ज्ञान सिंह
0: ज्ञान जी, बहुत बहुत स्वागत, थोड़ा प्रोग्राम स्वागत। की हाल चाल है
1: बहुत
0: जी? अपने बारे दसो, की काम कर दे हो?
1: बढ़िया।
0: अच्छा जी, वाह जी वाह, बहुत खुशी हुई इतना गलबात करके। तो दिने भी मौका मिलता रेडियो सुनने से, रात ही सुन पाते हो? दिने साढ़े प्रोग्राम सुन सकते हो कि नहीं, बिजी होंगे हो?
1: मैं
0: ठीक है जी, आज केड़ा गीत सुनना चाहोगे? रणजीत कौर, मोहम्मद सदीक दा।
1: चलूंगी चलूंगी।
0: अच्छा जी, वैसे भी मौसम गर्मी दे ना, तो पक्खी पुखी की लोड़ पैंदी रहनी है। चलो, थोड़ी पसंद है कि तक पहुंच रहा जी, कॉल करने बहुत बहुत शुक्रिया जी।

0: प्रोग्राम चल रहा जी सुगात ते तुसी अपनी पसंद दे पंजाबी गीत सुन रहे हो कॉल करके और वट्सएप मैसेजेस दे राही। कुछ खत सानू मिले ने जी जिन्हें साडे श्रोता बड़े प्यार नाल लिख के भेजदे ने, उहनां नूं भी प्रोग्राम विच जरूर जरूर शामिल करांगे। लेकिन पहलां असीं इक कॉलर नाल गलबात कर लईए। हैलो,
1: हैलो, नमस्कार जी।
0: हां जी, कौन साहब बोल रहे हो जी, किस जगह तों?
1: मैं छिंदर सिंह वारवाल, पिंड मोजन, जिला फाजिलका
0: जी। बहुत बहुत स्वागत है जी प्रोग्राम सुगात विच। की हाल चाल?
1: ਵਧੀਆ ਜੀ।
0: ਕਿਹੜਾ ਗੀਤ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੋਗੇ?
1: ਮਸਦੀ ਰਣਜੀਤ।
0: ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤੁਹਾਡੀ ਪਸੰਦ ਦਾ ਗੀਤ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਜੀ।

0: प्रोग्राम चल रहा जी सौगात पे साढ़े स्टूडियो के घड़ी मुताबिक, इसलिए 12:45 हो रहे हैं। प्रोग्राम का समा सिर्फ 15 मिनट हो रह गया जी। इस तो बाद प्रोग्राम जारी रहेंगे पर सौगात प्रोग्राम खत्म हो जाएगा। तो अगर तुम चाहते हो कि तुम भी प्रोग्राम में लाइव होना चाहते हो, अपनी पसंद का गीत सुनना चाहते हो, सानू कॉल करो 0181 3241 1 और यही नंबर मिला के देखते हैं साढ़े वेड़े कौन आए ने, उन्होंने गलबात करते हैं जी। हैलो
1: हेलो। हाँ जी, सत श्रीकाल जी।
0: सत श्रीकाल जी, कौन बोल रहे ने, किस जगह तो?
1: रणजीत बोलना जी, शंभू बॉर्डर तो।
0: रणजीत जी बहुत बहुत थोड़ा स्वागत है जी प्रोग्राम सुगात विच, की हाल चाल ने?
1: ठीक ठाक साहब जी, वधिया, तुसी अपने सुनाओ।
0: दिने भी प्रोग्राम सुनने का मौका मिलता है कि रात सुन पाते हो?
1: बस रात ही सुन दिने का डिफरेंट टाइम।
0: चलो चलो चलो ठीक है जी, ठीक है जी। अज केड़ा गीत सुनना चाहते हो? चलो कॉल करने शुक्रिया जी, थोड़ी पसंद का गीत तक पहुंच रहा है। सतिंदर सताज की आवाज़ में गाया हुआ है पंजाबी गीत।

प्रोग्राम चल रहा जी सुगात, और प्रोग्राम पेश करते करते बहुत अच्छा लग्या तुहाडे नाल गलबात करके, बहुत वधिया लगा। लेकिन घड़ी सुइयां कह रही जी कि समा समाप्ति दा, तो होर ज़्यादा आपां प्रोग्राम अगे नहीं खिंच सकते। बहुत वधिया लग्या तुहाडे नाल गलबात करके। प्रोग्राम की आखिरी पेशकश दलेर मेहंदी। इस गीत दे नाल ही अपने आज दोस्त नूं प्रोग्राम इत्थे खत्म करन दी इजाजत दिओ, पर तुसी किधरे जाना क्योंकि साडे बाकी दे प्रोग्राम जारी रहणगे। हसदे रहो, वसदे रहो, खुश रहो, खुशहाल रहो, चाहे जंदर रहो, चाहे फरीदाबाद रहो। बहुत जल्दी दोबारा मिलन दे वादे नाल इजाजत दिओ जी। धन्नवाद।

फरीदा खालक खलक मैं, खलक वसै रब माँ है। मंदा किसनो आखी है, जा तिस बिन कोई ना है। इस कथन तो पाव है, सारे जीव उस इको पिता परमेश्वर दी संतान हन। कोई भी चंगा जा माड़ा नहीं है। तांते फिर संदेश यही है कि उस अकाल पुरख दी रजा विच रह के सबनू सम दृष्टि नाल एक सम्मान समझना चाहिदा है। फरमान है, एक पिता एकस के हम बारिक, तू मेरा गुरहाई। सुन मीता जियो हमारा बल बल जासी, हर दर्शन देह दिखाई। सरवण करदे हां भाई अवतार सिंह ते उन्हां दे रागी जत्थे वल्लों गायन कीता होया ए शब्द।

हम नहीं चंगे बुरा नहीं कोई। इस शब्द दा गायन कीता सी भाई बलदेव सिंह ते उना दे रागी जत्थे ने। गुरबाणी मनुख मातर नू समदृष्ट होण दा संदेश दिंदी है। समदृष्टि तो भाव है सबनू एक समान समझना। फिर ना कोई वैरी लगता है, ना कोई बेगाना लगता है, सारे अपने मित्र ही लगते हैं। सबको मीत हम आपन कीना, हम सबना के साजन। जदों सतपुरशां दी संगत मिल जाती है तो फिर पराई तात विसर जाती है, सबना नाल बन आउंदी है। बिसर गई सब तात पराई, जब ते साध संगत मोह पाई। ना को बैरी नहीं बेगाना, सगल संग हम कौ बन आई। सरवण करदे आ भाई बलबीर सिंह ते उना दे रागी जत्थे वलों गायन कीता होया ए शब्द।

बिसर गई सब तात पराई, जब ते साध संगत मोह पाई। आप जी सरवण कर रहे सो पाई बलबीर सिंह ते उना दे रागी जत्थे वलों गायन कीता होया ये शब्द।

होता है इस भजन में। भगवान राम और भगवान कृष्ण दोनों का वर्णन एक साथ प्रत्येक पंक्ति में किया गया है।

पारथ पारथ गुर गुरु कहायो पान मथुरा मूरत सदा तेरे लाए चित सन्मुख रहो काल युग जहाज अर्जुन गुरु सगल श्रेष्ठ लग बेतर हो पान मथुरा मूरत सदा तेरे लाए चित सन्मुख रहो काल युग जहाज अर्जुन गुरु सगल श्रेष्ठ लग बे

0: मथुरा को प्रभ सर्व में अर्जुन गुर भगत के हे पाए रे ओ मिल राम सियो अंत न पावत देव सबे मुन इंद्र महाशिव जो करी फुन भेद ब्रंच विचार रे ओ हर जापना छाड्यो एक करी मथुरा जन को प्रभ दीन दयाल है संगत शिष्ट निहाल करी रामदास गुरु जग तारन को गुरजोत अर्जुन माए तरी जग और ना जाहे महातम में अवतार उजागर यान कियो तिनके दुख कोटिक दूर गए मथुराज ने अमृत नाम पियो ए पद्धत ते मत चूके रे मन भेद बपेद न जान बियो पर तछ हृदय गुरु अर्जुन के हर पूर्ण ब्रह्म निवास लियो।
1: जब लो नहीं पाग

सतगुर के माताणिया जुग जूथ समाने अनपौ नेजा नाम टेक जित भगत अघाणे गुरु नानक अंगद अमर भगत।

पिया अहन सहज सुभाई दर्शन परसे गुरु कै जन्म मरण दुख जाई होवै सिफत खसम दी नूर अर सहकुर सह चटिया

सज्जन सच्चा पाते साहु सिर साहांद साहु जिस पास बैठिया सोही है सबना दा वेसाहु सज्जन सच्चा पाते साहु सिर साहांद साहु जिस पास बैठिया सोही है सबना दा वेसाहु सतनाम श्री वाहे गुरु साहेब जी।

गौरमुख आख बखाणी, भगता की चाल सच्ची अति निर्मल, नाम सच्चा मन पाया, नानक भगत सोह है दर साचै जिनी।

सदा अखुट कदी नानक खुटै, हर दिया सहज सुभाया। हर जन ऊचे सद ही ऊचे, गुर कै सबद सुहाया।

एक ओंकार सतगुर प्रसाद राग सूही महला तीजा घर तीजा भगत जना की हर जियो राखै जोग जोग रखदा आया राम सो भगत जो गुरमुख होवै हौ मैं सबद जलाया राम।

दर्शन इशनान चौंकियां झंडे बुंगे जुगा जुग अटल धर्म का जयकार बोलो जी वाहे गुरु बोलो जे सिखा दा मन नीवा मत उची मत पत दा रखा आप वाहे गुरु हे अकाल पुरख अपने पंथ दे सदा सहाय दातार जियो श्री ननकाना साहेब अते होर गुरद्वारिया गुरधामा दे जिन्हां तों पंथ नूं भी छोड़िया गया है खुले दर्शन दीदार सेवा संभाल दादान खालसा जी नू बख्शो

समूह संगत अते टहलिया दी अरदास सतगुरु जी आओ सरबत साध संगत नो अपने दारों घरों सिखी सिद्धक भरोसा नाम दान बख्शना।

साम कह सितम बिर स्वामी सच में अच्छा साच रहे सब कुछ सट समा वैरिग कह रहे भरपूर राम नाम देवा मैसूर नाय लय पुराष्ट जाहे नानक तो मुखन त्रिपाहे जुज में जोर छली चंद्रावल कान कृष्ण जाद भया पार जात गोपी ले आया बिंद्रा बन में रंग किया कल मैं बेरथर बन हुआ नाव खुदाई लोह

नील वस्त्रण कपड़े पहरे तुर्क पठानियां मलकिया चारे वेद होए सत्यार पड़े गुण तिन चार विचार भाओ भगत कर नीत सदाए तो नानक मुखंतर पाए पौड़ी सतगुर विटो वारिया जित मिले खसम संभालिया जिन कर दर्शन अंजन दिया एनी नेत्री जगत निहालिया खसम छोड़ दूजे लगे डोबे सिरे बन जा रहा।